0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे है। संक्षिप्त समाचार के साथ उपस्थित है स्टूडियो में सुमेरा। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, सभी को मेरा मन नमस्कार और आदाब। फुटबॉल की इस बड़ी खबर से शुरू करते हैं। कल रात खेले गए चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की जबरदस्त जीत हुई। आर्सेनल के साथ मैच ड्रॉ गया 1-1 पॉइंट से, लेकिन पेनाल्टी शूट आउट के दौरान पीएसजी ने बाजी अपने नाम करके चैंपियन का खिताब जीत लिया है। आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो हर बच्चे को ये सीख देता है कि ना सिर्फ एक ही रोज़ माँ का सम्मान करना चाहिए या माँ को खुश करना चाहिए, बल्कि ये दिन याद दिलाता है कि माँ को रोज़ाना पलकों पर बिठाकर उसकी कुर्बानियों और कामरानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। माँ वो होती हैं जिसका दिल बेहिस इंतहाई मोहब्बत का वो ख़जाना है जिसकी ममता की रईसी हर पल बढ़ जाती हैं। सभी माओं को इस दिवस की शुभकामनाएं। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय बच्चे को लेने वाले परिवारों को गोद लेने वाले परिवारों के लिए नए कानूनी ढांचों पर गौर कर रहा है। कैसे प्लेटफॉर्म को कायम किया जा रहा है ताकि परिवार अपने तजुर्बे बांट सकें। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओयाना वोमारी ने कल फिनिक्स में इस पर बात की। सऊदी अरब की पाक जगहों में कई हफ्ते गुजारने के बाद हमारे करीब 1500 मर्शन हाजियों की हज मुकम्मल हो गई है। मैदान अराफात में एक दिन बिताने के बाद उन्होंने तमाम मरहले पूरे किए और अब अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इस एतवार से कुछ मर्शन हाजी वापस मर्शस आ रहे हैं। अगले 24 जून तक सऊदी एयरलाइंस और एमिरेट्स की कुल 12 उड़ानों में हमारे हमवतन मर्शस लौटेंगे। उनके खैर मकदम के लिए प्लेजेंस हवाई अड्डे पर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। विदेश में सेहत के मैदान में किए गए एक जायजे के नतीजे में ये पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला लाखों मरीजों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने एक नए डीएनए टेस्ट को विकसित किया जिससे पता चले कि किन मरीजों को इलाज से फ़ायदा होगा और किन के लिए इलाज बेअसर रहेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार 2/3 से ज़्यादा मरीज कीमोथेरेपी के प्रभावों से बच सकते हैं और उनका इलाज सिर्फ हार्मोन थेरेपी से ही किया जा सकता है। याद रहे कीमोथेरेपी से बहुत असरात हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने 4000 से ज़्यादा मरीजों के साथ ये अध्ययन किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Your weather forecast on RM2.
4: Radio Musti.

आम हालत उत्तर पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम को रह रहकर प्रभावित करेंगे और हमारे इलाके में हल्की हवा चलेगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह सवेरे बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी और कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ होगा, लेकिन दोपहर बाद पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम तथा सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षाएं भी होंगी। आज रात के दौरान घने बादल होंगे, पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्लेटों में बारिश हो सकती है। हवा सुबह सवेरे पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और लगुनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुबह के 6:05 हुए हैं और ये रेडियो मॉरिशस है। रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। अभी आप सुन रहे थे सुमहरा से आज के संक्षिप्त समाचार और मौसम का हाल। और रेडियो मॉरिशस पर हम आप लोगों के लिए बस यही प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय रहे, आज की सुबह आप लोगों के लिए शांत और मिठास से भरी रहे। और आज तो मातृदिवस है, मातृदिवस की मंगल कामनाएं हम अवश्य अपने दिल की गहराई से आपको नजर करेंगे। आज की सुबह माँ के आंचल की तरह आपको सुकून पहुंचाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। चलिए आरंभ करते हैं हमारी आपकी ये मुलाकात वैदिक वाणी कार्यक्रम के साथ। आर्य सभा मॉरिशस के आचार्य बद्री जी से सुनते हैं ये वार्ता।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीहिमा। प्रिय श्रोतागण, आर्यसभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वैदिक वाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, वैदिक संस्कृति में माता केवल जन्म देने वाली स्त्री का नाम नहीं है, अभितु वह जीवन की प्रथम गुरु, संस्कारों की आधारशिला, प्रेम की प्रतिमूर्ति, त्याग की मूर्ति तथा धर्म के बीज बोने वाली दिव्य शक्ति है। आधुनिक युग में वर्ष में एक दिन मातृदिवस मनाया जाता है, किंतु वैदिक धर्म की दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक और गहन है। वैदिक संस्कृति कहती है कि जिस माता ने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, धर्म का ज्ञान दिया, उसके प्रति सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं हो सकता। हमारे लिए तो प्रत्येक दिन मातृदिवस है, प्रत्येक क्षण मातृवंदन का अवसर है और प्रत्येक शुभ कर्म माता के चरणों को प्रणाम करके प्रारंभ होता है। यही कारण है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के 100 नामों का वर्णन करने के पश्चात द्वितीय समुलास में तत्काल कहा, मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। अर्थात

जिस मनुष्य को श्रेष्ठ माता, श्रेष्ठ पिता और श्रेष्ठ आचार्य प्राप्त हों, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ईश्वर के बाद सर्वप्रथम माता का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति में माता का स्थान अत्यंत ऊंचा और पूजनीय माना गया है। श्रोताओं, मातृदिवस के इस पावन अवसर पर यदि हम वैदिक मंत्र ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनीहिमाः का अध्ययन करें तो हमें माता के महान स्वरूप को समझने का अद्भुत अवसर प्राप्त होता है। यह मंत्र बाहरी और भीतरी शुद्धि की प्रार्थना है और माता का संपूर्ण जीवन भी इसी शुद्धिकरण का दिव्य अभियान है। श्रोताओं, इस मंत्र का भावार्थ है, हे परमात्मन, श्रेष्ठ गुणों वाले देव तुल्य मनुष्य मुझे शुद्ध करें, अपनी उत्तम बुद्धि और सदुपदेश से मुझे पवित्र करें, संपूर्ण प्राणी जगत तथा प्रकृति के उपकारी तत्व मेरे जीवन को शुद्ध और कल्याणकारी बनाएं। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, आप स्वयं भी मेरे मन, बुद्धि और आत्मा को पवित्र करें। श्रोताओं, सामान्यतः लोग शुद्धि का अर्थ केवल स्नान, स्वच्छ वस्त्र अथवा बाहरी सफाई समझते हैं, किंतु वेद कहता है कि वास्तविक शुद्धि मन, बुद्धि, विचार और आचरण की शुद्धि है। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ और कृतघ्नता भरी हो तो बाहरी स्वच्छता का कोई विशेष लाभ नहीं। माता का संपूर्ण जीवन इसी आंतरिक शुद्धि का विद्यालय है। एक बालक जन्म के समय कुछ नहीं जानता, वह बोलना नहीं जानता, चलना नहीं जानता, सही और गलत का भेद नहीं जानता। माता अपने प्रेम, त्याग और धैर्य से उसके मन को संस्कारित करती है। वह उसे सत्य बोलना सिखाती है, बड़ों का सम्मान करना सिखाती है, ईश्वर की प्रार्थना करना सिखाती है और सदाचार का मार्ग सिखाती है। इस दृष्टि से देखें तो माता इस मंत्र की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। वह अपने पुत्र, पुत्री को निरंतर पवित्र बनाने का प्रयास करती रहती है। श्रोताओं, वेदों में ज्ञान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। ज्ञान के बिना जीवन अंधकारमय हो जाता है, किंतु ज्ञान का प्रथम प्रकाश माता के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जब बालक बोलना सीखता है तो सबसे पहला शब्द प्रायः माँ होता है। जब वह चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है। जब वह अच्छा बुरा समझना सीखता है तो माता उसके जीवन की प्रथम शिक्षिका बनती है। श्रोताओं, विद्यालय का शिक्षक कुछ वर्षों तक शिक्षा देता है, किंतु माता गर्भावस्था से ही शिक्षा देना आरंभ कर देती है। गर्भ में पल रहा बालक भी माता के विचारों और भावनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में माता के आचरण, भोजन, विचार और व्यवहार पर विशेष बल दिया गया है। यदि माँ सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, विदुषी और चरित्रवान है तो उसके बच्चों में भी वही गुण विकसित होते हैं। इसीलिए माता को प्रथम गुरु कहा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितृन माता गौरवेणातिरिच्यते। अर्थात 10 उपाध्यायों से एक आचार्य श्रेष्ठ है, 100 आचार्यों से एक पिता श्रेष्ठ है और 1000 पिताओं से भी माता गौरव में बढ़कर हैं। श्रोताओं,

यह श्लोक माता के महत्व को अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इसका आशय यह है कि पिता अथवा आचार्य का सम्मान कम है, यदि यह बताना है कि माता के उपकार इतने विशाल हैं कि उनका मूल्यांकन करना असंभव है। श्रोताओं, माता अपने शरीर का रक्त देकर गर्भ में बच्चे का निर्माण करती है।

उसके सुख दुख को अपने सुख दुख मानती है। इस प्रकार माता का प्रेम निस्वार्थ और निष्कलंक होता है। श्रोतागण, वैदिक साहित्य में माता का स्वरूप केवल जन्मदात्री माता तक सीमित नहीं है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की अनेक माताएं होती हैं। उनमें प्रमुख जन्मदात्री माता, जिसने शरीर प्रदान किया, गुरु माता, जो ज्ञान और संस्कार प्रदान करती है, भू माता, जो अन्न, जल, औषधि और जीवन उपयोगी साधन देती है, गो माता, जो पोषण, स्वास्थ्य और कृषि व्यवस्था का आधार है, वेद माता, जो आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। इन सभी माताओं के प्रति कृतज्ञता रखना वैदिक धर्म का आवश्यक अंग है। श्रोतागण, जन्मदात्री माता शरीर का पालन करती है, गुरु माता बुद्धि का विकास करती है, भूमि माता जीवन का आधार प्रदान करती है, गो माता स्वास्थ्य एवं संरक्षण करती है और वेद माता आत्मा का कल्याण करती है। इसलिए वैदिक संस्कृति में मातृत्व एक व्यापक और दिव्य अवधारणा है। श्रोताओ, पुनन्तु मा देव जनाः मंत्र का प्रथम भाग कहता है कि देवतुल्य श्रेष्ठ जन मुझे पवित्र करें। इस संसार में माता से बड़ा देवतुल्य व्यक्तित्व कौन हो सकता है। माता अपने बच्चे के दोषों को मिटाने का प्रयास करती है, उसे उत्तम संस्कार देती है और उसके जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगी रहती है। जब बच्चा झूठ बोलता है तो माता उसे सत्य बोलना सिखाती है। जब वह आलस्य करता है तो माता उसे परिश्रम का महत्व बताती है। जब वह बुरे मित्रों की संगति में पड़ता है तो माता उसे सावधान करती है। जब वह निराश हो जाता है तो माता उसे साहस देती है। इस प्रकार माता वास्तव में देवजन की भूमिका निभाती है। वह अपने बच्चों का शारीरिक ही नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी करती है। श्रोताओ, पुनन्तु मनसा धियः मंत्र का दूसरा भाग कहता है, श्रेष्ठ मन और बुद्धि वाले व्यक्ति मुझे पवित्र करें। माता का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह बच्चे के मन और बुद्धि का निर्माण करती है। एक छोटा बालक मिट्टी के समान होता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, उसी प्रकार माता बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देती है। पुनन्तु विश्वे भूतानि, वैदिक दृष्टि में माता केवल अपने बच्चों तक सीमित नहीं रहती, उसका हृदय समस्त प्राणियों के लिए करुणा से भरा रहता है। माता जब अपने बच्चे को भोजन कराती है तो उसे यह भी सिखाती है कि भूखे को भोजन देना चाहिए। वह बताती है पशुओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जात वेदः पुनीः माः मंत्र के अंत में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हे सर्वज्ञ परमात्मा, मुझे पवित्र कीजिए। श्रोताओ, वैदिक धर्म में प्रतिदिन 5 महायज्ञ करने का विधान है। इनमें से एक पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का वास्तविक अर्थ मृतकों को भोजन अर्पित करना नहीं है, बल्कि जीवित माता पिता गुरुजन तथा वृद्ध जनों की सेवा करना है। श्रोताओ, आज संसार के अनेक देशों में वर्ष में एक दिन मातृदिवस मनाया जाता है। लोग अपनी माता को उपहार देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और सम्मान व्यक्त करते हैं। यह अच्छी परंपरा है, किंतु वैदिक दृष्टि इससे कहीं आगे जाती है। वैदिक संस्कृति कहती है माता का सम्मान केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, जिससे जीवन भर हमारा पालन किया उसके प्रति सम्मान भी जीवन भर होना चाहिए। अतः मातृदिवस के अवसर पर हमें केवल उत्सव मनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन अपनी माता का सम्मान करेंगे।

0: उनकी सेवा करेंगे, उनकी भावनाओं का आदर करेंगे और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को जीवन में धारण करेंगे। यही वास्तविक मातृ वंदना है, यही सच्चा पितृयज्ञ है और यही इस वैदिक मंत्र का व्यवहारिक स्वरूप है। माता के चरणों में श्रद्धा, सेवा में समर्पण, वाणी में मधुरता और व्यवहार में कृतज्ञता ही सच्चा मातृ दिवस है। वैदिक संस्कृति का संदेश मातृ देवो भव अर्थात माता को देवतुल्य मानो, क्योंकि वही जीवन को पवित्र, संस्कारित और सफल बनाने वाली महान शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति, धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी, और आज आप सुन रहे थे आचार्य बद्री जी को।
2: MBC रेडियो 24 hours a day।
1: इस समय 6:20 हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ओकुले के निवासियों को सूचित करता है कि फेर्डिनांड स्ट्रीट, लापेरो स्ट्रीट, कोंगुयो के एक भाग में और आसपास के इलाकों में, आसपास की गलियों में कल सोमवार 1 जून को मरम्मत कार्यों की वजह से सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये भी मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।

इस समय सुबह के 6:21 हुए हैं और आज तो मातृ दिवस है। आज मातृ दिवस के अवसर पर आइए माँ के दुलार, उनकी ममता और प्यार का मूल्य जरा हम पहचाने, बल्कि इस मूल्य पर थोड़ा हम ठहर कर विचार करें। क्या माँ के साथ बिताए पलों के जितना मूल्यवान कोई पल दिखा है हमें? चलिए मिलके सोचें इस बात पर और माँ की बातों पे गौर करें जो हमेशा मार्गदर्शक बन के चलती रहती है हमारे साथ। माँ की बातें हमेशा हमारे मन में रहती है, माँ की बातें हमेशा हमारे दिमाग में रहती हैं। चलिए इन्हीं बातों पे ज़रा गौर करें हम।

माँ की बातों का ख्याल रखते चलें, माँ की भावनाओं का ख्याल रखते चलें। मातृ दिवस की मंगल कामनाएं आप तक हमारे मन से जो पहुंच रही हैं वो मंगल कामनाएं आपको पूरा दिन खुशहाल रखे। और अभी तो हम सुन रहे हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़। इस गाने के साथ ही हम थोड़ी देर आपसे जुदा होंगे। आप सुन पाएंगे आज का समाचार बुलेटिन जिसे लेकर सुमहरा आएंगी। तो अभी आप इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ मेरी माँ प्यारी माँ,
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्कार आदाब। मैं 2026 का ये आखिरी दिन है। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें पेश हैं। चैंपियंस लीग में पारी सेंट-जर्मेन की हुई जीत, पेनल्टी शूटआउट के दौरान आर्सेनल ने बाजी हार ली। ये खिताब लगातार दूसरे साल के लिए पीएसजी के नाम हुआ। इंतहाई मोहब्बत का वो खजाना, माँ तुझे सलाम, आज मातृ दिवस याद दिलाता है कि हर इंसान की जिंदगी में माँ का होना कितनी बड़ी बात है। रोज उसकी कद्र करना, उसकी ममता का आदर करना सभी औलाद की जिम्मेदारी। सऊदी अरब में इस्लाम का पांचवा फर्ज अदा करने के बाद इस इतवार से कुछ मुर्शिद हाजी वापस मुर्शिद आ रहे हैं। उनके खैर मकदम के लिए प्लेजोंस हवाई अड्डे पर कुछ खास इंतजाम। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेहत के मैदान में किए गए एक जायजे के नतीजे में यह पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला लाखों मरीजों को कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं। वैज्ञानिकों ने एक नए डीएनए टेस्ट को विकसित किया है। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में किया गया। नमस्कार आदाब। फुटबॉल की इस बड़ी खबर से शुरू करते हैं। कल रात खेले गए चैंपियंस लीग में पारी सेंट-जर्मेन की जबरदस्त जीत हुई। आर्सेनल के साथ मैच ड्रॉ गया 1-1 पॉइंट से, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट के दौरान पीएसजी ने बाजी अपने नाम करके चैंपियन का खिताब जीत लिया। गैब्रियल के स्पॉट किक ने मैदान में कमाल दिखाया। पारी सेंट-जर्मेन लगातार दूसरे साल के लिए चैंपियंस लीग का कप घर ले गया है। आज मातृ दिवस मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन जो हर बच्चे को ये सीख देता है कि ना सिर्फ एक ही रोज माँ का सम्मान करना चाहिए या माँ को खुश करना चाहिए, बल्कि ये दिन याद दिलाता है कि माँ को रोजाना पलकों पर बिठाकर उसकी कुर्बानियों और कामरानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। माँ वो होती है जिसका दिल बेहिस, इंतहाई मोहब्बत का वो खजाना है जिसकी ममता की रईसी हर पल बढ़ जाती है। वो अपने बच्चे पर अपने प्यार को नचावर करने में कभी झिझकती नहीं है, ना बदले में कुछ मांगती है। ये दिन ना सिर्फ जन्म देने वाली माओं का है, बल्कि हर उस वालिदा का नाम है जो किसी न किसी तरीके से ममता के एहसास रखती हैं। माँ, अम्मी, माता, वालिदा, अम्मा, मम्मी, नाम तो अनेक हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत की हद को कभी मापा नहीं जा सकता। पूजा सुकालू की ये खास रिपोर्ट।
1: ओ मेरी माँ,
2: तू मेरा लाडला।
3: माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। वो उसे बोलना, चलना, अच्छे बुरे का अंतर समझाना और जीवन के मूल्यों को अपनाना सिखाती है। बच्चे के सुख दुख, सफलता असफलता और हर चुनौती में माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है।
4: तू कितनी

0: कड़ी होती है। अपने पति के साथ मिलकर वो परिवार की नींव को मजबूत बनाती हैं और घर में प्रेम, सम्मान और सामंजस्य का वातावरण बनाए रखती है।
1: वो सुना हो लड़का जब बोल दे या जो का जीवन अच्छा लगता कपार दुखाता उस दिन माँ के जनिया नींद नहीं लगी रात की तो अन्नी सन पोता बुआ पर हाली से पूछी कुछ खैले बेटी बेटा तनी सन कुछ खैला कपार दुखाता को दवाई पीला एगो माँ के दिल होकर आवाज निकला था उफुफमाल नहीं रही हो उस जन्म दिल बाबू जाना था हई धरती जो ना कितना कुछ संभालन।
0: सास और ससुर के साथ एक माँ का रिश्ता भी परिवार की एकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो उनका सम्मान करती है, उनकी देखभाल करती है और उनके अनुभवों से सीख लेकर परिवार को आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार देवर और ननद के साथ भी माँ का व्यवहार परिवार में अपनापन बढ़ाने में सहायक होता है। ये केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास, सुरक्षा, त्याग और अटूट प्रेम का संबंध है।
2: चंदा ने पूजा तारों से, तारों ने पूजा हजारों है, सबसे प्यारा कौन है? मामा, मेरी मामा।
0: बच्चे बड़े हो जाए, अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, लेकिन माँ का स्नेह और चिंता कभी कम नहीं होती।
3: उड़ा गुलाल, माई तेरी चून
0: मातृ दिवस हमें याद दिलाता है कि माँ का योगदान अमूल्य है। ये अवसर हमें उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक सुंदर माध्यम प्रदान करता है।

0: जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय बच्चे को गोद लेने वाले परिवारों के लिए नए कानूनी ढांचों पर गौर कर रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म को कायम किया जा रहा है ताकि परिवार अपने तजुर्बे बांट सके। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अरियाना वमाही ने कल फिनिक्स में इस पर बात की। क्लोडे जेफ्रा गादेवादू, यचना मिश्रा।
1: 23 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद गायतों और कोहिन ने 7 साल पहले अपने दिल और अपने घर के दरवाजे 2 बच्चों के लिए खोले। बच्चे चुने नहीं जाते, जो मिले वही। मेरी बेटी को जैसे मैंने देखा, मैं जान गई कि वही है। उसने हाथ थामा और नहीं छोड़ा। 19 महीने की थी, मैंने उसे गेंद दिया जो 1.5 साल तक उसने अपने साथ ही रखा शेल्टर में। 23 साल के वैवाहिक जीवन के बाद बच्चे से माँ शब्द सुनना एक अलग ही एहसास है। ये सोच समझकर लिया गया फैसला था, जिसका उद्देश्य इन बच्चों को एक स्थिर, सुरक्षित और प्यार भरा पारिवारिक वातावरण देना था। सुबह काम पर जाने से पहले उनको मोटरसाइकिल की सैर कराता हूँ, शाम को वापस आता हूँ तो वे राह तकते हैं, देर हो जाती है तो इंतजार करती हैं। इस शनिवार उन्होंने एक दिवसीय गतिविधि के दौरान अन्य फॉस्टर माता पिता के साथ अपने अनुभव बांटे। खेलों और मनोरंजन के पलों से परे ये उदारता, प्रेम और नई शुरुआत की एक प्रेरणादायक कहानी है। ये पहल पालक परिवारों की भूमिका को भी महत्व देने का अवसर प्रदान करती है। अब तक 129 बच्चों को 99 फॉस्टर परिवारों में रखा जा चुका है। उप प्रधानमंत्री ने अन्य परिवारों को भी इस पहल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हमें विश्वास है कि बच्चे की जगह परिवार में है। आखिरी विकल्प शेल्टर है। खेद की बात है कि जहां बच्चों को कम समय तक रहना था, वही शेल्टर 18 साल तक उनका बसेरा बन जाता है। हम अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। हम माता पिता और अधिकारियों के साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे स्थिति को बदला जाए, अन्य लोगों को फॉस्टर परिवार बनने के लिए प्रोत्साहित कर सके।

0: qui.
1: Yo, la situation et invite plus ben parents, comment dire, assume cette responsabilité, ben famille d'accueil.
0: दिन का समापन खुशी और उत्साह के माहौल में हुआ, लेकिन एक बात स्पष्ट रही, कभी कभी एक साधारण सा निर्णय कई जिंदगियों को एक साथ बदल सकता है।
2: माओं को समर्पित आज के इस खास दिन के मौके पर SOS चिल्ड्रंस विलेज मॉरिशस ने एक बड़े जश्न का इनेकाद किया। खुशियों का माहौल रहा, उन माताओं को सराहा गया जो रोज़ अपना घर छोड़कर यतीम यानी अनाथ बच्चों को अपनी गोद देती हैं। बच्चों के लिए एक गहवारा जैसी हैं जो उनकी परवरिश में बड़ा अहम किरदार निभाती हैं। इन माओं की बदौलत परिवार के प्रेम से वंचित ये बच्चे ममता से महरूम नहीं हैं। अंजू राम गुलाम, करुणा लालू।
3: SOS चिल्ड्रंस विलेज मॉरिशस में खुशी और उत्सव का माहौल, जहां केयरर्स को सम्मानित किया गया। वे महिलाएं जो बच्चों की मां कहलाई जाती हैं, फोटो सेशन, सेल्फी, हल्की फुल्की बातचीत और भाषणों के बाद बारी आती हैं पुरस्कार वितरण की। ये वे गुमनाम नायिकाएं हैं जो दूसरों के बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। वे बच्चों के छोटे छोटे दुखों को सहलाती हैं, उनके आंसू पोंछती हैं, बुरे सपनों के बाद उन्हें सांत्वना देती हैं और उन्हें वो सब प्रदान करती हैं जिसके हर बच्चे को अधिकार हैं।
4: Vous pensez c'est surtout la patience et l'amour parce que c'est un travail qui nous besoin de faire le choix. C'est pas juste un travail, nous choisir de nous dire bon, nous faire libre comme ça, mais c'est persévérance et beaucoup de enfin bienveillance.
5: Qui vous compte dans ce travail?
6: Tout mon compte. Gezot, resozot, zot, abizot, amenzot.
3: ये भी महिलाएं हैं जो प्रतिदिन बिना किसी अपेक्षा के अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करती हैं।
7: Bonne qualité visa pour faire maman chez SOS village.
8: Gentillesse, bien tranquille, patience.
9: Il y a des hauts, des bas, mais c'est moi à la longue mon récit qu'on m'a dit comprend ben caractère chaque enfant.
10: Tu as un garçon qui s'appelle William, petit pont. Il a l'âge de 12 ans, fait 4 ans depuis l'inalé, il a 18 ans l'inalé. Mais c'est un joli parcours avec William, parce que William, c'est un garçon, enfin, comme dire, ça me l'est qu'un gros, parce qu'il est extraordinaire. Ils ont dit, me fier des lits, puis travailler dans l'hôtel.
3: Une dil ki maon ko, jo touté hué, bachpan ko samarti hain, bachon ko phir se jivan ke moulya sikhati hain, और उन्हें भविष्य पर विश्वास करना सिखाते हैं। हम सलाम करते हैं।
2: PMSD के लीडर ने कल पोर्टली में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया ताकि देश की स्थितियों पर वो टिप्पणी कर सकें। ज़ेवियर लुजुवाल के मुताबिक अगले बजट में आवाम की खरीद ताकत को अहमियत दी जानी चाहिए, फिजूल खर्चियों के खिलाफ कदमों का प्रावधान भी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने वैट को बढ़ाने के संदर्भ में सरकार को चेतावनी दी है। मिगन पुन्ना बनायकैन, करुणा लालू।
3: राजनीतिक मंच पर लंबे समय की अनुपस्थिति के बाद ज़ेवियर लुजुवाल आज प्रेस के सामने आए। PMSD के लीडर ने मौजूदा संदर्भ में सरकार की तरफ से आपात कदम उठाए जाने की इच्छा जताई। उन्होंने लघु उद्योगों के लिए VAT की सीमा बढ़ाने की मांग की। उनके अनुसार वर्तमान 3 मिलियन रुपए की सीमा अनुचित है। PMSD के लीडर ने उन प्राथमिकताओं का उल्लेख किया जिन्हें भावी बजट में ध्यान में रखना चाहिए।
11: Que c'est un budget de la dernière chance. Parce que la population, sous patience, c'est une limite, pas un problème urgent. Vous avez besoin de dire aux autres, low and order, pouvoir d'achat, gaspillage. Ça ne va pas attendre plus longtemps. Depuis longtemps, nous avons causé des importations parallèles. Qui fait à Maurice un pan seul pays, quand on a un monopole, l'eau, importation, van marque. Tout ce que vous trouvez là, presque tout, du moment où il représente sa marque là, Maurice, il prend un peu son voisin pour te dire. Et monopole bizarre cassé tout sauf pour médicaments.
3: कानून और व्यवस्था के संबंध में उन्होंने अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए पुलिस को ज्यादा साधन प्रदान करने की मांग की। उन्होंने मॉरिशस में पेंशन प्रणाली में गहरा बदलाव लाने की

0: इच्छा जताई। ज़ेवियर डी जुवाल ने जूनियर मंत्री और गणराज्य के उपराष्ट्रपति के पदों को हटाने की भी मांग की। उन्होंने वीएटी बढ़ाने की सभी पहल के खिलाफ सरकार को आगाह किया। प्रेस के सवाल के जवाब में उन्होंने की रेट बढ़ाई जाने पर खेद जताया और कहा कि वो एमएसएम के संपर्क में नहीं रहा, न ही लेबर पार्टी और पीएमएसडी के बीच कोई नज़दीकी रही है।
1: सऊदी अरब की पाक जगहों में कई हफ्ते गुजारने के बाद हमारे करीब 1500 मुर्शन हाजियों की हज मुकम्मल हो गई है। मैदानी रफात में एक दिन बताने के बाद उन्होंने तमाम मरहले पूरे किए और अब अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हज की अदायगी करने से इस्लाम में लाजमी पांचवा फ़र्ज पूरा हो गया। हमारे हाजियों ने खुदा की मेहरबानी पर शुक्र का इजहार किया क्योंकि उनके लिए ये तजर्बा ताउम्र याद रहेगा। शहजाद गुहन और अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर ये विवरण।
0: इस साल लगभग 1500 मौर्शनों ने हज का फर्ज अदा किया। माउंट अराफात में अहम चरण के बाद, जो मगफिरत और इबादत का सबसे बड़ा निशान समझा जाता है, हाजियों ने मुजदलिफा और मीना में निर्धारित रस्म मुकम्मल किए। पिछले कुछ दिनों के दौरान उन्होंने शैतान का प्रतीक माने जाने वाली स्तंभों पर प्रतीकात्मक रूप से कंकर मारने की रस्म अदा की, ईद अल अधा के अवसर पर कुर्बानी दी तथा काबा के चारों ओर तवाफ किया। ये सभी अनुष्ठान इस रूहानी यात्रा की पूर्णता का प्रतीक हैं। मौर्शन हाजियों का पहला दल इस रविवार 31 मई के दोपहर मौर्शस पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही इस खास रूहानी सफ़र को मुकम्मल करने वाले 1500 हाजी की स्वदेश वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
1: जी हाँ, इस इतवार से कुछ मुर्शन हाजी वापस मुर्शस लौट रहे हैं। अगले 24 जून तक सऊदी अलायंस और इमिरेट्स की कुल 12 उड़ानों में हमारे हमवतन मुर्शस लौटेंगे। उनके खैर मकदम के लिए प्लेजोंस हवाई अड्डे पर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। कुंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का तेजी से फैलाव हो रहा है। मेडिसिन सांस फ्रोंटियर ने चेतावनी दी है कि अब वहां हालत चिंताजनक बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अदानोम ने कुंगो राज्य इतुरी का दौरा किया, जहां वायरस का सबसे बड़ा असर है। अभी 1000 से ज्यादा शक्की मामलात हैं और 246 लोगों की मौत हो चुकी है। उगांडा में 9 मामलों की पुष्टि की गई है और 1 मौत दर्ज है। सेहत के मैदान में किए गए एक जायजे के नतीजे में ये पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला लाखों मरीजों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने एक नए डीएनए टेस्ट को विकसित किया, जिससे पता चले कि किन मरीजों को इलाज से फ़ायदा होगा और किन के लिए इलाज बेअसर रहेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार 2/3 से ज़्यादा मरीज कीमोथेरेपी के प्रभावों से बच सकते हैं और उनका इलाज सिर्फ हार्मोन थेरेपी से ही किया जा सकता है। याद रहे, कीमोथेरेपी से थकान, उल्टियां, झड़ते हुए बाल, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, फर्टिलिटी मसले पैदा हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने 4000 से ज़्यादा मरीजों के साथ यही अध्ययन किया, जिन्हें हाल में ही अपनी बीमारी के बारे में पता चला और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा की है। ये मरीज़ यूके, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड से हैं।

और अब मौसम की बात। उत्तर पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे और हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह सवेरे बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। कुछ जगहों में कोहरा छाया रहेगा, आसमान साफ होगा। दोपहर बाद पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। आज रात के दौरान घने बादल होंगे, उत्तर और सेंट्रल प्लेटों में वर्षा होगी। हवा आज सुबह उत्तर पूर्व उत्तर की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

आज के समाचार बुलेटिन की बड़ी खबरें पेश हैं। चैंपियंस लीग में पेरिस से अजमेक की हुई जीत, पेनाल्टी शूटआउट के दौरान आर्सेनल ने बाजी हार ली, ये खिताब लगातार दूसरे साल के लिए पीएसजी के नाम हुआ। इंतहाई मोहब्बत का वो खजाना माँ तुझे सलाम, आज मातृ दिवस याद दिलाता है कि हर एक इंसान की जिंदगी में माँ का होना कितनी बड़ी बात है। रोज उसकी कदर करना, उसकी ममता का आदर करना सभी औलाद की जिम्मेदारी। सऊदी अरब में इस्लाम का पांचवा फर्ज अदा करने के बाद इस इतवार से कुछ मुर्शिद हाजी वापस मुर्शिद लौट आ रहे हैं, उनके खैर मकदम के लिए प्लेजांस हवाई अड्डे पर कुछ खास इंतजामात। और सेहत के मैदान में किए गए एक जायजे के नतीजे में ये पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तिला लाखों मरीजों को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं। वैज्ञानिकों ने एक नए डीएनए टेस्ट को विकसित किया है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने 4000 से ज़्यादा मरीजों के साथ किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में। हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार और आदाब। अब शोक समाचार सुनिए। Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

Bois d'Oiseau, Royal Road, Suriname, mai. 57 साल की, 57 years old, श्रीमती पुष्मावती सिबालक, श्रीमती पुष्मावती सिबालक, पैदाइशी नाम रामप्रसाद, जो मधु के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज सुबह 10 बजे, आज सुबह 10 बजे इनके पति वेदानंद सिबालक के घर बुआ द्वाजू रॉयल रोड सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुरीनाम की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। गोपाला लेन मेबर्ग में 79 साल की, 79 ईयर्स ओल्ड, श्रीमती कृष्णावती दीनू, श्रीमती कृष्णावती दीनू, पैदाइशी नाम सिसागौर, जो कृष्णा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह 10:30 बजे, आज सुबह 10:30 बजे इनके बेटे दुर्गेश दीनू के घर गोपाला लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट ब्रोक्यूस रिविया दे क्रेओल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। रॉयल रोड रिविया जोंपर में 56 साल के, 56 ईयर्स ओल्ड, जनाब अब्दुल बशीर निर्मल, जनाब अब्दुल बशीर निर्मल, जो बाशिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज सुबह 10 बजे, आज सुबह 10 बजे इनके घर रॉयल रोड रिविया जोंपर से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट दे लास्को का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। बासन रोड हाईलैंड्स में 75 साल के, 75 years old, जनाब अब्दुल रहीम हुसैन अली, जनाब अब्दुल रहीम हुसैन अली, जो चिबाई के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा कल रात 8 बजे इनके घर बासन रोड हाईलैंड से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया गया। हाईलैंड्स में शाम्बेल लेन वाकवा में 49 साल के, 49 years old, श्री सतीश गोपी, जो विनंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह 10 बजे, आज सुबह 10 बजे ओम शांति हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलेब्रियों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। पिछी कॉन्ग गोंगुब में 53 साल के, 53 ईयर्स ओल्ड, श्री दीपक चतुरी, जो मोंगोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज दो बजे इनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के घर पिचिकाओं गोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोंगुब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर 84 मोंसिग्नोर लीना वेन्यू कैट्रो बोन में 63 साल के, 63 ईयर्स ओल्ड, श्री हरिदत्त गोकुल, जो उमेश मौशंगातो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनके घर

नंबर 84, नंबर 84 मोनसिय्योर लीन एवेन्यू क्याट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. क्याट्रोबोन रोड बोनाकोय में 56 साल के 56 years old श्री अजय भिखारी, श्री अजय भिखारी जो सुदेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है अर्थी आज 11 बजे. आज 11 बजे इनके घर क्याट्रोबोन रोड बोनाकोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन काउंडेमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 AM. जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 55 साल के 55 years old श्री ऋषि पिरू जो अजय मौशों केबाब के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज 10 बजे. आज 10 बजे इनकी पत्नी शर्मिला पिरू के घर जगदम्बी रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 10 AM. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.

0: सुबह का नजराना में आपका स्वागत करते हैं। सुबह का ये नजराना होता है बहुत ही लाजवाब सा नजराना आपको मिला है, आप भगवान को जरूर शुक्रिया कहिएगा। चलिए जरा, हम इस समय 7:02 हुए हैं, रेडियो मॉरिशस से ये हम सुनते हैं आज का स्पोर्ट्स रिव्यू लेकर आ रहे हैं अरविंद बिसेसर।
1: सभी का प्यार भर नमस्कार, स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसी से पारी यूरोपियन चैंपियंस लीग की चैंपियन टीम पारी सेंट जर्मेन लगातार दूसरी बार के लिए पेनाल्टी शूटआउट तक जाना पड़ा। मैच ड्रो गया 1-1। काई हावर्ट्स का गोल फर्स्ट हाफ में, फिर डेम्बेले ने इक्वलाइज किया पेनाल्टी पर। एजे और गैब्रियल आर्सेनल के लिए पेनाल्टी मिस कर गए। आर्सेनल के डिफेंस ने पारी सेंट जर्मेन के अनगिनत प्रयासों को नाकाम किया, पर पेनाल्टी पर पारी सेंट जर्मेन की टीम चैंपियन बनी। आर्सेनल के लिए हार्ट ब्रेक, तो पारी सेंट जर्मेन के लिए यूरोप में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में से एक। केवल दो टीमें बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत पाई हैं, रियल मैड्रिड और पारी सेंट जर्मेन। आर्सेनल का खिलाड़ी गैब्रियल पेनाल्टी में नहीं स्कोर कर पाया, पहली बार के लिए उसने पेनाल्टी ली पर चूक गया। मैच में गैब्रियल का लाजवाब परफॉर्मेंस रहा, चट्टान बनकर पारी सेंट जर्मेन के प्रयासों का सामना करता रहा। यूरोप में इंग्लैंड का हैट्रिक पूरा नहीं हो पाया, पारी सेंट जर्मेन का चैंपियंस लीग डबल पूरा हुआ। ब्रावो पारी, शांज़ेलिज़े और टूर एफेल सजाए जा रहे हैं ले शैंपियंस के स्वागत के लिए। लिवरपूल ने मैनेजर आर्ने स्लॉट को कहा, भाई साहब अब जाओ। स्लॉट सैक्ड बाय लिवरपूल। अपने पहले सीजन में लिवरपूल को चैंपियन बनाया, पर वो यर्गन क्लॉप की टीम थी। आर्ने स्लॉट लिवरपूल

0: लिवरपूल का न था, न है और न रहेगा। साला ने कहा था कि लिवरपूल को एक अटैकिंग मूड वाली टीम चाहिए, ऐसे में बोर्नमाउथ का इराओला फेवरेट बन गया है लिवरपूल का नया मैनेजर बनने के लिए। आर्ने स्लॉट को विश्वास था उसे और एक मौका दिया जाएगा, पर क्लब के अधिकारियों ने फैंस और खिलाड़ियों को सुना। चैंपियन बनने के बाद चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए अंतिम मैच तक तड़पना पड़ा, ये लिवरपूल वाले स्वीकार नहीं कर पाए। सीजन में एक भी ट्रॉफी नहीं, पांचवा पोजीशन मैनचेस्टर यूनाइटेड से नीचे, आर्ने स्लॉट को निकालना जरूरी था। कौन आएगा, बोर्नमाउथ से इराओला या पेरिस सेंट जर्मेन से लुइस एनरिके, देखते हैं। रहीम स्टर्लिंग पुलिस हिरासत में, ड्रग ड्राइविंग के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके लैम्बोर्गिनी मोटोवे से टकरा गया और क्रैश कर गया, बेल पर रिलीज किया गया उसे। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचों में इक्वाडोर ने 2-1 से सऊदी अरब को हराया। साउथ कोरिया 3, त्रिनिदाद 0, स्कॉटलैंड 4, कुरासाओ 1, जमैका 0, नाइजीरिया 3 और जिम्बाब्वे ने इंडिया को 1-0 से हराया। टेनिस फ्रेंच ओपन, कोको गोव भी फ्रेंच ओपन से बाहर हो गई। डिफेंडिंग चैंपियन कोको गोव को अनास्तासिया पोटापोवा ने हराया। टेनिस के 3 दिग्गज आउट हो गए यहां, जोकोविच, सिना और अब कोको गोव। कल कोबोली, पारी ओगा अलियासिमे, ओसाका सबालेंका, फिर चाफोए, इन सभी की जीत हुई। आज कोस्ट्रिक का मुकाबला श्वातिक से, विटोलिना, बेंसिच, देयोंग, वेरेज, रूड, फोनसेका और मेंसिच, रूबलेव, ये कुछ महत्वपूर्ण मैच हैं। क्रिकेट आईपीएल 2026 का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आसानी से टाइटंस को हराया था। फाइनल अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इधर मॉरिशस की ओहेली अलवक्स लैंकोल अफ्रीका की वेटेटे चैंपियन बनी। आइवोरी कोस्ट में ओहेली गोल्ड मेडल जीत पाई। और एथलेटिक्स में एक और नया नेशनल रिकॉर्ड, इस बार 400 मीटर में राशेल क्लोपफेनस्टाइन ने रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये रिकॉर्ड पहले सौंद्रा गोविंदन के नाम था जो 1992 ने बना था, अब राशेल क्लोपफेनस्टाइन ये अपने नाम कर गई। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। पेरिस सेंट जर्मेन लगातार दूसरी बार के लिए चैंपियंस लीग जीत गया और लिवरपूल ने यर्गन क्लॉप को अलविदा कहा। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: तो अभी आप सुन रहे थे अरविंद विशेषर जी की प्रस्तुति में आज का स्पोर्ट्स रिव्यू, आज का स्पोर्ट्स मैगजीन। और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों को इस पे बहुत ही गर्व हुआ होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 7:07 हुए हैं सुबह का नजराना शो जो हम पेश कर रहे हैं आपके लिए। इस शो में आप लोगों को हम बहुत सारी बातें ऐसी बताएंगे जिससे आपका मन भी खुश होगा और जिन बातों पे कुछ शेयर करने का मन आपका भी करेगा। जी हाँ, सुबह का ये नजराना है और आप लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। हर किसी के लिए आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। अपनी माँ को बहुत प्यार देना है। माँ चाहे आपके साथ हो ना हो, पर माँ की बातें, माँ का प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। चलिए हम आप लोगों के नाम करते हैं ये गाना और आपकी माँ के नज़र के नाम करते हुए ये गाना आप तक पहुंचाते हैं। ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये एहसास जो माँ के आँचल के में बहुत ही सारा समाया रहता है।

0: माता जी की आंखों में फिक्र अपने बच्चों की ही होती है। बस चलिए हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, ताकि माँ की आंखों से, माँ के दिमाग से, माँ के दिल से फिक्र की बात निकाल दें। इस समय 7:14 हुए हैं।
1: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। आज हम मातृ दिवस मना रहे हैं। माँ को धन्यवाद करना और उनका सम्मान करना क्यों जरूरी है, आइए विचार करें। मातृ दिवस का अर्थ है माँ का दिन। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं, माता गुरुतरा भूमेरु, भूमि से भी अधिक भारी माँ है। एक विधवा माँ अकेले ही अपने बेटे का पालन कर रही थी। बेटा स्कूल में पढ़ता था। एक दिन मुख्य अध्यापक ने एक पत्र लिखा और लिफाफे में पत्र डालकर लड़के को दिया और कहा, यह चिट्ठी तुम अपनी माँ को देना। शाम को उस लड़के ने अपनी माँ को पत्र दिया। माँ ने पत्र पढ़ा तो बेटे ने उससे पूछा, इस पत्र में क्या लिखा है माँ? माँ ने उत्तर दिया, बेटा मुख्य अध्यापक ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत तेज है, अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो अध्यापकों को विश्वास है कि वह अपनी पढ़ाई में सबसे आगे आएगा। लड़का खुश हुआ कि अध्यापकों की दृष्टि में वह तेज है और अपनी पढ़ाई में एकदम आगे आ सकता है। यह जानने पर लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। आगे चलकर वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। लेकिन उसके बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ के चल बसने पर उसके कमरे का सामान बटोरते हुए बेटे की नज़र उस पत्र पर पड़ी जो मुख्य अध्यापक ने लिखा था। बेटा चिट्ठी पढ़ने लगा तो चकित हो गया। उसमें लिखा था, आपका बेटा बहुत कमज़ोर है, अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो अध्यापकों को डर है कि वह पढ़ाई में एकदम पिछड़ जाएगा। माँ ने बेटे को इसका बिल्कुल उल्टा बताया था। असल में बेटे की योग्यता पर अध्यापकों को नहीं अपितु स्वयं माँ को विश्वास था। माँ के विश्वास की शक्ति के कारण ही कोई बच्चा कुछ बन पाता है। इसीलिए महर्षि व्यास ने कहा, नास्ति मातृ समगति ही, माँ के समान कोई सहारा नहीं। और उपनिषद कहती है, मातृ देवो भव, माता देवता होती हैं। एक अध्यापक ने कक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा, सुनो बच्चों, कल जब तुम स्कूल आओगे तब अपने साथ स्वर्ग से एक मुट्ठी मिट्टी लेते आना। छात्रों ने अध्यापक के इस निर्देश को सुना। अगले दिन सुबह कक्षा के आरंभ होते ही अध्यापक ने प्रश्न किया, आज कौन सा विद्यार्थी अपने साथ स्वर्ग से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आया है? एक लड़का उठा और उसने अध्यापक को एक लिफाफा देते हुए कहा, गुरुजी, इस लिफाफे में स्वर्ग की मिट्टी है, आप इसे खोलकर देख लीजिए। अध्यापक ने लिफाफा खोला, उसके भीतर झांका और फिर लड़के से कहा, इसमें धरती की मिट्टी है, स्वर्ग की मिट्टी कहाँ है? लड़के ने उत्तर दिया, गुरुजी, सुबह मेरी माताजी और मेरे पिताजी आंगन में खड़े होकर सूर्य को नमस्कार कर रहे थे। मैं उनके पास गया तब मुझे देखते ही पिताजी ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम जीवन में हमेशा खुश रहना। माताजी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और वे मुझे प्यार करने लगी। जब अपने माता पिता के पांव छूने के लिए मैं नीचे झुका तब मेरा मन बहुत प्रसन्न था और मुझे लगा कि जहाँ पर माता पिता का आशीर्वाद है वहीं स्वर्ग है। माताजी और पिताजी जिस स्थान पर खड़े

0: रखे उसी स्थान से एक मुट्ठी मिट्टी इस लिफाफे में डालकर आपके लिए लाया हूँ। मेरे लिए तो यही स्वर्ग की मिट्टी है। श्रोताओं, माता पिता से मिलने वाला सुख स्वर्ग का सुख होता है। हम हमेशा अपने माता पिता के पास रहें, उनका आशीर्वाद पाकर स्वर्ग के सुख का अनुभव करें और सदा प्रसन्न रहें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: और एक का कोट हमारे सामने आया जो हमें बहुत अच्छा लगा और जिसे हम आपको आपके साथ शेयर करना हम बहुत खुशी की बात समझते हैं। कहा है किसी ने कि मैं रात भर जन्नत की सैर करता रहा यारो, सुबह आंख खुली तो देखा सर माँ के कदमों में था। बस वही तो जन्नत है हमारे लिए, सबसे प्यारी जन्नत, सबसे अच्छी जन्नत।
1: झलकियां
0: झलकियां आपके लिए एक झलक हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों की। चलिए जरा रेडियो मॉरिशस पर कौन से कार्यक्रम है इस बात की चर्चा करें हम। फिलहाल तो आपके लिए हम पेश कर रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम और 8 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। 8 बजे आप सुनिएगा आज के भोजपुरी समाचार, उसके बाद हम पेश करेंगे पैगाम आपके नाम। बेशक आज मातृ दिवस है, आज आप अपने विशेष अपनी मम्मा तक ज़रूर पहुँचाइएगा और उन सब के साथ उन सब तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिनको आप माँ का दर्जा देते हैं। तो पैगाम आपके नाम कार्यक्रम हम 9 बजे तक पेश करेंगे, जिसके बाद आप संक्षिप्त समाचार सुन पाएंगे और फिर आप सुन पाएंगे एक स्पेशल प्रोग्राम मदर्स डे पर, यानी कि मातृ दिवस पर लेकर आएंगी डॉक्टर अलका दनपत। 10 बजे के संक्षिप्त समाचार होंगे, उसके बाद उर्दू प्रोग्राम निसार लेकर आएंगे। 11 बजे होगा आज का तमिल प्रोग्राम सुंदरम जी पेश करेंगे, जिससे पहले आप संक्षिप्त समाचार भी सुन पाएंगे। फिर 12 बजे राजेंद्र की प्रस्तुति में होगा आज का तेलुगु प्रोग्राम। 1 बजे होगा शीरिश की प्रस्तुति में आज का मराठी प्रोग्राम। 2 बजे चाइनीज प्रोग्राम जिनके प्रस्तुति में होगा और 3:30 बजे आप गुजराती कार्यक्रम सुनिएगा रत्ना जी की प्रस्तुति में, पूजा लेकर आएंगी। 4 से 5 बजे तक आप और हम कार्यक्रम, 5 से 6 बजे तक तो हर पसीन कार्यक्रम। फिर 6 बजे आप सुनिएगा आज का समाचार बुलेटिन। 6:30 बजे चाइनीज प्रोग्राम होगा होंग होंग की प्रस्तुति में और 7 बजे सुनिएगा आज का तमिल प्रोग्राम कलाईवानी मुरुगन की प्रस्तुति में। वंदना पेश करेंगे आज का तेलुगु प्रोग्राम और ये प्रोग्राम आप शाम के 7:30 बजे से 7:50 तक सुन पाएंगे और फौरन बाद आप सुनिएगा गीत गंगा प्रोग्राम, आज का मराठी प्रोग्राम शीरिश की प्रस्तुति में। फिर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम आप रोशनी की प्रस्तुति में 8:10 पर सुनिएगा। 8:40 पर महफिल शब आज का उर्दू प्रोग्राम समीर की प्रस्तुति में सुनीता लेकर आएंगी भोजपुर पूरी तड़का 9 से 11 बजे तक और रात्रि के 11 बजे से रात्रि के 12 बजे तक सुनहरे पल कार्यक्रम, पुराने गीतों का प्रोग्राम, पुरानी दुनिया की सैर आप कीजिएगा गिनीशा के साथ। सुबह का ये नजराना है, नजराना ये मोहब्बत का है, नजराना ये प्यार का है, नजराना ये दोस्ती का है। चलिए आज ये नजराना थोड़ी ममता भरी भी है, चलिए माँ के आंचल की हम सराहना करें, माँ की हथेलियों की सराहना करें। माँ को ढेर सारा प्यार आज ठहर कर जरा सा दे। वैसे तो हर रोज़ प्यार आशीर्वाद पाते हैं हम, प्यार देते हैं हम, आदर देते हैं हम, आज थोड़ा ठहर जाएं हम, आज थोड़ा हम स्पेशली प्यार दें माँ को। चूम लेना उसकी हथेलियाँ किसी आगाज़ से पहले, सुना है माँ हथेली में दुआएं रखती हैं। रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो माँ ही है जो धूप में भी छांव जैसी है।

सबसे खूबसूरत और सबसे अनमोल रिश्ता है माँ का इस संसार में। निस्वार्थ प्यार, ममता और त्याग शब्दों में तो माँ बयां नहीं करती, पर हाँ अपने एक्शन में, अपने कार्यों में ज़रूर बयां कर देती है। माँ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ममता, त्याग और आशीर्वाद का सागर है। कहा जाता है ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को एक जरिया बनाया है। सुबह उठने से पहले रात के सोने तक हमारा ख्याल तो माँ ही रखती है, और माँ का ख्याल रखना हम भी, हमारी तरफ से भी एक बहुत अच्छा सा जरिया हो जाता है माँ की तरफ अपना प्यार बढ़ाने का। वह हमारी सबसे पहली शिक्षक होती है। अच्छे बुरे हालातों में सही राह चुनना, संस्कार पाना, ये सब माँ के आंचल तले बहुत ही आसान हो जाता है। उनका आशीर्वाद ही हमारे लिए ढाल बनकर हमें हर मुश्किल का सामना कराने में ताकतवर बनाती है। चलिए ज़रा हम ये कहें कि माँ के साथ हम जितने पल बिताते हैं वो सोने जैसा पल होता है। इस पल में अगर माँ हमें इतना आशीर्वाद देकर हमें अपनी राह चुनने को प्रोत्साहित करती है, तो ये माँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ममता की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

0: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,
1: प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
2: देख, तेरे लिए मैंने खास बनवाया है, और ये मेरे लिए।

0: ताकि मैं तुझसे हमेशा जुड़ी रहूं।
1: सेम
0: एग्जैक्टली सेम।
1: किसी दिन इस खून का बदला लूंगी तुझसे।
0: मैं उसे अपने घर लेके जा रही हूँ। बदला क्या लेगी, बदले में जान मांग ले, दे दूंगी।
2: ले चले डोलियों।
3: रविवार 31 मई को MBC 3 पर दोपहर के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म फिलहाल 2002 की ये मूवी तबू और सुष्मिता सेन पर फिल्माई गई फिलहाल।
2: और
4: चलिए जरा रॉक करें मम्मी के साथ। मम्मी जी, जिस तरह से आप ना सारा काम करती हैं, अपनी सारी जिम्मेदारी निभाती हैं, उनको तो हम सुपर मॉम ही कहेंगे।

तो रेडियो मॉरिशस पर सुबह का ये नजराना है, इस नजराने को आप ज़रूर कबूल फरमाइएगा। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं। और चलिए आज भी एक छोटी सी कहानी। और आज तो मदर्स डे है, फिर मदर को ही हम याद करेंगे, क्यों नहीं माँ को ही हम नज़र करेंगे ये कहानी, बल्कि बच्चों को भी नज़र करेंगे ये कहानी। इनफैक्ट तीन दोस्त थे, केशव, राहुल और लकी। मातृ दिवस कैसे मनाया जाए इसकी प्लानिंग चल रही थी उनके बीच। कुछ खास गिफ्ट खरीद कर इस बार माँ को अलग सा सरप्राइज देने की प्लानिंग चल रही थी उनकी, पर कोई अच्छा आइडिया आ ही नहीं रहा था। इतने में कल्पना मैडम, बच्चों की मैथ्स टीचर, आई। उनको भी अपने डिस्कशन में बच्चों ने शामिल किया। तब कल्पना मैडम ने उन्हें समझाया, अगर आप लोग माँ के लिए कुछ सुपर स्पेशल करना चाह रहे हो तो गिफ्ट खरीदने का आइडिया तो आप ड्रॉप ही कर दो, कुछ ऐसा काम कर दो जिससे मम्मा को सुकून मिले, कोई भारी सा उनका बोझ हल्का हो जाए। कल्पना मैडम तो चली गईं, बच्चे सोचते रहे ऐसा हम क्या कर सकते हैं। फिर केशव को ख्याल आया कि सुबह ऑफिस जाने से पहले मम्मा ब्रेकफास्ट और लंच के चक्कर में बहुत भाग दौड़ करती है, हमें तो चैन से ब्रेकफास्ट कराए देती है और खुद चलते भागते ब्रेकफास्ट करती है। चलो कल सुबह से ही मैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी में माँ को हेल्प करूँगा। राहुल को लगा कि बात तो सही है और उसने रात के खाने के बाद किचन समेटने में माँ की हेल्प करनी चाहिए। उधर लकी को एहसास हुआ कि घर की साफ सफाई से माँ थक जाती है और उसने साफ सफाई में हाथ बटाने की ठानी। मदर्स डे में एक हफ्ता बाकी था, बच्चों ने अपनी तरफ से वो सब किया जो उन्होंने सोचा था और एक हफ्ते के बाद ऐसा करने के बाद तीनों दोस्तों के घरों में हंसी की किलकारियां बढ़ीं। उनकी माँ की आंखों में ज्यादा सुकून नजर आया, माँ की बातों में अधिक चहक महसूस हुई उनको। उनको महसूस हुआ, उनको एहसास हुआ कि दुकान के गिफ्ट में वो बात नहीं जो माँ का साथ निभाने में है। तो मातृ दिवस की मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से हर बच्चे को, हर माँ को, हर परिवार को, हर पापा को,

इस समय 7:53 हुए हैं। हमारा आपका साथ रेडियो मॉरिशस पर है और रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों के लिए हम पेश करें हैं सुबह का नजराना। नजराना ये मोहब्बत का होता है, नजराना ये दोस्ती का होता है। आपके साथ दोस्ती बढ़ाए रखने में जो खुशी मिलती है वो अलग सी खुशी होती है। मातृ दिवस पर हम माँ पर, माँ के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं और कुछ अच्छा ही, सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं। और ऐसे में हर रोज़ हम माँ के आंचल के तले ही तो उनका आदर करते हैं, माँ के आंचल के तले ही तो उनसे प्यार पाते हैं, उनकी ओर प्यार बांटते हैं। सूरज की पहली किरण में जो आशा होती है, कड़ी धूप में जो घनी छांव चाहिए होती है, हवा में जो हिंडोले होते हैं, पानी में प्यास बुझाने की जो ताकत होती है, वही माँ के अंदर होती है। सारा कुछ माँ के अंदर होता है, तभी तो माँ को हम जिंदगी का दर्जा देते हैं।

बस इसी गाने के साथ हम थोड़ा सा रोकेंगे सुबह का नजराना प्रोग्राम को। आप 8 बजे सुनिएगा आज के भोजपुरी समाचार सुमहरा की प्रस्तुति में। उसके बाद मिलते हैं पैगाम आपके नाम शो में।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्ते और सलाम, फजर के 8 बजल बा। आवाजा समाचार सुनचा। फुटबॉल चैंपियंस लीग में कल रात के आर्सेनल और पेरिस सेंट-जर्मेन के बीच जबरदस्त मैच हुआ था। आर्सेनल के साथ मैच ड्रॉ रहेला एगो एगो पॉइंट से, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट के दौरान पीएसजे बाजी अपन नाम कर लेबा। आज मातृ दिवस मनावल जाता एगो ऐसा दिन जो न हर बच्चा के ई सीख देवत वन जा कि ना सिर्फ एक ही रोज़ माँ का सम्मान करे के पड़ल या माँ के खुश करे के पड़ल, बल्कि ई दिन याद दिलाले बा कि माँ के रोज़ाना पड़कों पर बिठा के ओकर कुर्बानी और कामरानी के फरामोश नहीं करे पड़ल। माँ ऊ बा जेकर दिल बेहिस इंतहाई मोहब्बत के ऊ खजाना है, जेकर ममता के रईसी हर पल बढ़ता। ऊ अपन बच्चा पे अपन प्यार के निछावर करे में कभी झिझकते नहीं बा, ना बदले में कुछ मांगे बा। ई दिन ना सिर्फ जन्म दे होला माँ के है, बल्कि ऊ माँ के नाम है जो कर किसी ना किसी तरीका से ममता के एहसासात रखेला। सब माँ के हई दिन के शुभकामना। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय बच्चा लोग के गोद लेवे होला परिवार खातिर नवा कानूनी ढांचा परी गौर करता। एगो ऐसा प्लेटफॉर्म कायम करता ताकि परिवार लोग अपन तजुर्बा बांट सकेला। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या नवमागी काल फिनिक्स में ई बात बोलन। पीएमएसडी के लीडर काल पोटली में गो प्रेस सम्मेलन बुलाई लेबा ताकि देश के स्थिति पर टिप्पणी करे सकेबा। जावियर लुजुवाल के मुताबिक अगला बजट में आवाम के खरीद ताकत के अहमियत दे चाहिला, फिजूल खर्ची के खिलाफ कदम के प्रावधान भी प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज इतवार से कुछ मुर्शनहाजी वापस मुरीस आवेला। अगले 24 जून ले सऊदी एयरलाइंस और एमिरेट्स के कुल 12 उड़ान में हमनी के हमवतन मुरशस लौटेबा। उनकर खैर मकदम खातिर प्लेजों हवाई अड्डा पर खास इंतजाम करल गर रहल बाते। विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एबोला के तेजी से फैलाव होता, मेडिसिन पहुंचे चेतावनी दे देबा कि अब हुआ हालत चिंताजनक बाते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अदानम पूर्वी कोंगो राज्य इतुरी के दौरा करलन बाते, जहां वायरस के सबसे बड़ा प्रभाव बाते। ता इराहर समाचार, नमस्ते और सलाम।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: गोपाला लेन मेबर्ग में 3/19 बरिस के स्वसंजीवनी वों श्रीमती कृष्णावती दीनू, श्रीमती कृष्णावती दीनू पैदाइशी नाम सिसागौ जन कृष्णा के नाम से जस्ती जाना जातरा लेन गुजर गल हवन। इनकर माती आज 10 बज के आधा इनकर बेटा दुर्गेश दीनू के घरे गोपाला लेन मेबर्ग से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पॉइंट ब्रोक्यूस रिविया दि क्रियोल के शमशान भूमि ले जावल जाए। Cremation today at 10:30 AM. Royal Road Rivière du Rempart met du courrier sur la barisque 56 ans. Janab Abdul Bashir Nirmol, Janab Abdul Bashir Nirmol, Jun Bashir ke naam se jasti.

जात्रलन इंतकाल करकल हवन जनाजा आज 10 बजे इनकर घरे रॉयल रोड रिविया जोंपो से उठा के दफनाए खातिर पौधे लास्काओ के कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टूडिया तैनियम शाम्बेल लेन वाकुआ में दुकुरी नौबरिस के 49वां श्री सतीश गोपी जनविनन के नाम से जस्ती जान जात रलन गुजरकल हवन इनकर माती आज 10 बजे ओम शांति हाईलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आले भैयाओं के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 10 AM पिचिकॉँ घोंगो में दुकुरी 13 बरिस के 53वां श्री दीपक चतुरी जन मोंगोल के नाम से जस्ती जान जात रलन गुजरकल हवन इनकर माती आज दो बजे इनकर माँ लक्ष्मी चतुरी के घरे पचिकाँ घोंगोब से उठा के अंतिम संस्कार खातिर घोंगोब के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डे 2 PM नंबर 84 मोसिंग युआलिन अवेन्यू 4 बॉन में 3 कोरी 3 बरिस के 63 ans श्री हरिदत्त गोकुल जन उमेश मौशोंगातो के नाम से जस्ती जान जात्रालन गुजरकल हवन इनकर माती आज ग्यारह बजे इनकर घरे नंबर 84 मोसिंग युआलिन अवेन्यू 4 बॉन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 11 AM जगदम्बी रोड गुडलैंड में 2 कोरी 15 बरिस के 55 ans श्री ऋषि पीरू जन अजय मौशो के बाप के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजरकल हवन इनकर माती आज 10 बजे इनकर पत्नी शर्मिला पीरू के घरे जगदम्बी रोड गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे 10 AM 4 बो रोड बोनाकोय में 2 कोरी 16 बरिस के 56 ans श्री अजय बिकारी जन सुदेश के नाम से जस्ती जाना जात्रालन गुजरकल हवन इनकर माती आज ग्यारह बजे इनकर घरे 4 बो रोड बोनाकोय से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौदे मास्क के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 11 AM बोआडवाजो रॉयल रोड सुरीनाम में 2 कोरी 17 बरिस के 57 ans श्रीमती पुष्मावती सिबालक पैदाइशी नाम राम प्रसाद जन मधु के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजरकल हवन इनकर माती आज 10 बजे इनकर पति वीरानंद सिबालक के घरे बोआडवाजो रॉयल रोड सुरीनाम से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुरीनाम के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टू डी एट 10 AM शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने संवेदना प्रकट करत हैं जा बातें।

0: 819 kilowatts. This is Radio Mauritius.
1: माँ,
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
1: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
3: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
1: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अब वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

इस समय 8:14 हुए हैं और हमारा आपका साथ रेडियो मॉरिशस पर है। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आज का दिन आपके लिए ममता की छाँव में बीत रहा होगा। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय होगा और आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही आशीर्वाद वाला होगा। आप अगर माँ हैं तो आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारी दुआएँ मिलेंगी और बच्चे हैं आप तो आपको बहुत सारे आशीर्वाद भी मिलेगा, प्यार के साथ साथ, ममता के साथ साथ। और बहुत ही स्पेशल रहेगा आज वैसे भी हम

हमेशा माँ का आदर करते हैं, हम हमेशा माँ का ख्याल रखते हैं, और आज थोड़ा सा ठहर कर यानी कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग में रखकर माँ के साथ बैठ जाते हैं थोड़ी गपशप करने के लिए, थोड़ा प्यारा पल बिताने के लिए। तो मातृ दिवस की मंगल कामनाएं आप सबों को। हम लेकर आए हैं पैगाम आपके नाम कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत

ऐसों को मैसेज भेजना चाहते हैं, जिनको आप माँ का दर्जा देते हैं उनको मैसेज भेजना चाहते हैं, बेशक इसमें शामिल कीजिएगा। और हाँ, बर्थडे विशेस भी आप इसमें शामिल करिएगा। और जो भी इवेंट हो आपके परिवार के बीच, आपके दोस्तों के बीच, उसमें आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, उसके कारण, उसके लिए कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, पैगाम आपके नाम शो आपके लिए यहीं हाजिर है। हमारा साथ सुबह से दे रही है माला सुमारू जी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे और हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। और इधर अफ्रीका फ्लैग से हैं अनीता जी, उन्होंने हमें मैसेज भेजा है कि बहुत प्यार भेज रही है वो अपने पूरे परिवार को, मातृदिवस की शुभकामनाएँ हर माता के लिए उन्होंने भेजी है। और उन्होंने अपनी बहू मनीषा, अशीमा को, बहन शोभा, अनुराधा, लक्ष्मी को, भतीजी वृंदा, अंजू जो कि यूके में है उनको, और उनकी बहू की माँ लता, इन लता को, इंद्रानी जी, इंद्रानी भाभी को, अमृता, शीला, कविता के लिए, सभी फ्रेंड्स के लिए मंगल कामनाएं भेजी हैं, पूरी फैमिली के लिए मंगल कामनाएं भेजी हैं। सो चलिए, हैप्पी मदर्स डे की कामनाएं हम हर किसी के लिए करते हैं। और उधर हैं सूरज शर्मा सजादा जी, हमारे साथ हैं सुबह से, और उन्होंने सभी माताओं को मंगल कामनाएं भेजी हैं, अपने पूरे परिवार को मंगल कामनाएं भेजी हैं। इधर हैप्पी मातृदिवस की शुभकामना भेजी गई है मामा दिव्यानी गजाधर जी को, जो प्लेन मान्यों रहती है, उनकी बेटी रानी की तरफ से, बेटी वीना, उमा, इंदिरा, सरिता की तरफ से, बेटे राज की तरफ से, कवि, युवराज, कृष्टि, दिव्या और लिटिल नाती नचेश्विका तुलसी की तरफ से, जो मौदार बैग की रहने वाली हैं। हैप्पी मदर्स फादर्स डे टू लवली मामा कृष्टि, पापा युवराज, तुलसी परिवार के लिए, दादा राज के लिए और कवि के लिए, दादी रानी के लिए, नानी हेमा, रेणुका, नाना केविन, मौसी शिखा के लिए, और ये है फ्रॉम नातिन चेष्विका तुलसी और मोदाल बे, बहुत प्यार भेज रही है चेष्विका जी अपने पूरे परिवार को।

तो चलिए ज़रा हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, और हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए हमें मैसेज भेजा है त्रिवेणी जी ने गुडलैंड से। उनका कहना है कि उनकी नातिन श्रीनीति लक्सवी पुनुसामी का जन्मदिन है आज, और प्यारी सी गुड़िया 1 साल की हो रही है। प्यारी सी ये गुड़िया श्रीनीति लक्सवी पुनुसामी रहती है बनमेया, और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके पूरे परिवार के सदस्य, उनकी मामा देवी ना, पापा संदीगैन, चाचा सुबेन, दादी शीला देवी, फुफुपो नीलम, फूफा विनोद, नानी जिसिक, नानी त्रिवेणी, महेश्वरी सिंधु, नाना अनिल, नाना अजय और अनिल, मौसी दीक्षा, प्रीतिला, मामू कुनल, मामी आयुषी, बहन खुशी, अनाया एंजल, भाई आयुष केशव, और उन्होंने जन्मदिन की मंगल कामनाएं पूरे मुनुसामी परिवार की तरफ से, मोहन परिवार की तरफ से, मात्या परिवार की तरफ से प्यारी सी गुड़िया श्रीनीति लक्सवी को भेजी है। पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार प्यारी सी गुड़िया को। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, और उम्मीद करते हैं कि तुमको प्यारा सा जीवन मिले, बहुत प्यार।

आज इस ममतामयी दिन पर हर किसी के मन में शांति रहे, हर किसी के मन में खुशी रहे। कुछ लोगों की माताएं उनके साथ हैं, कुछ लोगों की माताएं उनके साथ नहीं हैं। फिर भी माता अगर साथ में नहीं है तो उनका आंचल हमेशा हमारे सर के ऊपर रहता है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए तत्पर रहता है और उनकी दुआएं तो हमारे साथ हमेशा रहती हैं। बिताए हुए उनके साथ जो पल होते हैं उन पलों को हम भुला नहीं सकते और आज उन पलों पे गर्व करने का मौका है। आंसू बहाने के बदले आप उन पलों पे गर्व कीजिएगा जो आपने अपनी माता के साथ बिताया है। माता जी को बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके मन में खुशी होगी उन पलों को सोचकर, आपकी आंखों में चमक होगी उन पलों को सोचकर। चलिए जरा हम मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं और मैसेज मिला है अनीता जी का। अनीता जी ने मौदाल पे ऐसे भेजा है मैसेज ये कि कभी किसी माँ का बच्चा उससे मुख ना मोड़े, कभी किसी माँ का बच्चा उनका साथ न छोड़े, यही दुआएं हर माँ के लिए हैं उनके दिल में। और अनीता जी ने मौदाल पे ऐसे करुणा अमृता के लिए, इटू गोगा परिवार के लिए

मातृ दिवस की मंगल कामनाएं भेजी हैं। और मैसेज हमें आया है विश्वानी दुमन जी का भी, जो वाकवा की रहने वाली है। उनका ये कहना है कि मातृ दिवस की मंगल कामना हर माँ को डिजर्व, हर माँ डिजर्व करती है। सो हमारी पूरी टीम के लिए भी और सभी माताओं के लिए भी उन्होंने मंगल कामनाएं भेजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वानी जी। और इधर हमारा साथ दे रही है माला जी, माला झरी जी ने हमें मैसेज भेजा है कि आपको और जितनी भी खुशियां मिले वो बहुत कम है, आपको ढेर सारी खुशियां मिलती जाए ऐ माँ, हर बार आपको, हर पल आपको एक न एक खुशी अवश्य मिले। यही है दुआ माला झरी जी के दिल में अपनी माँ के लिए। तो चलिए, सभी माताओं के नाम माला जी ने एक गाने की फरमाइश की है, सो चलिए उन लोग सभी माताओं के लिए दुआओं का ये गुलदस्ता माला झरी जी की तरफ से। और साथ ही साथ मंगल कामनाएं माताओं को भेजी है विशाल, विक्रम, विकेश ने, और साथ ही साथ कुशल और लव कुश ने।

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

मातृदिवस की मंगल कामनाओं के साथ बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मातृदिवस बहुत स्पेशल दिवस होता है और माताओं को थोड़ा स्पेशल फील कराने का ये सुनहरा मौका होता है। स्पेशल तो हमेशा मदर्स होते हैं, लेकिन आज हम वक्त अपना निकाल कर हर काम को अलग रख कर हम माँ की सेवा में लग जाते हैं, माँ को स्पेशल फील कराने में लग जाते हैं, इसीलिए तो इसको स्पेशल डे कहा जाता है। चलिए हम ज़रा सुदेवी जी की का मैसेज पढ़ते हैं। वाकवा की सुदेवी जी ने बताया है कि मालेगा के मम्मा अनुषा पापा किरण, मम्मा यशना पापा नीरज, मम्मा सत्यभामा इंदिरा इंद्रानी, ललिता और सुनीता, शोभा भी साथ में है, मम्मा शोभा भी साथ में है। सभी बच्चों की तरफ से इनको मातृ दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं और थैंक यू वेरी मच हमारी पूरी टीम को भी विश करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेवी जी। पूरे राम रतन परिवार, राम गुलाम कुवाऊ कुशल हृदय परिवार की तरफ से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, अ वेरी जॉयफुल मदर्स डे आप सबों को। इधर चांदनी पुरुषोत्तम जी ने बैतानिया से हमें लिखा है कि स्पेशल ओकेजन ऑफ मदर्स डे में आप हमारी मम्मा को बहुत सारा प्यार भेज दीजिएगा हमारी तरफ से। सो चांदनी पुरुषोत्तम जी की तरफ से उनकी मम्मा सीता चौधरी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और अपने लेट पापा प्रेम को भी बहुत सारा प्यार भेजा है, दिल की गहराई से प्यार भेजा है चांदनी जी ने। और अपनी लेट मम्मा इन लो यानी कि उनकी सासू माँ थर्मावती जी को बहुत सारा आदर, बहुत सारा प्यार भेजा है चांदनी पुरुषोत्तम जी ने। और वैसे उन्होंने अपने बच्चों की तरफ से अपने आप को भी बहुत विशेष भेजे हैं, यू डिज़र्व इट चांदनी जी, आपके बच्चों की तरफ से। और ये विशेष सभी माओं की ओर भी जाते हैं चांदनी जी की तरफ से। इधर देवी जी हमारा साथ निभा रही हैं और हैप्पी मदर्स डे इस सभी माताओं को विश कर रही हैं और शुभ मातृ दिवस की मंगल कामनाएं माता जी विद्यावंती को, जिनको शुभकामनाएं मिल रही हैं उनके सभी बच्चों की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आदर। उनके बच्चे हैं स्वस्थ, उनके बच्चे ये चाहते हैं कि वे स्वस्थ रहें और खुश रहें और उनकी यही मनोकामनाएं हैं कि उनके मन में संतुष्टि हमेशा रहे। सुनील सुनीता हैं उनके बच्चे, सुधीर पूर्णिमा सीता संदीप प्रिया श्रवण श्यामल दुषिका श्रेय शुभम शान शर्विन और भावना, सभी माता पिता को शुभकामनाएं मिलकर दे रहे हैं, स्पेशली अपनी माता को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और सभी माताओं को सलाम किया है इन सब बच्चों ने जो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत मेहनत करते हैं। फ्रॉम बिहारी परिवार एंड सूरत परिवार, अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।

0: एक स्थिति विशेषज्ञ हूँ।
1: तो पैगाम आपके नाम प्रोग्राम चल रहा है रेडियो मॉरिशस पर। इस वक्त हम सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं और सभी माताओं को प्रणाम करते हैं। पैगामों का ये गुलदस्ता है माताओं के नाम भरा हुआ। आप अगर मैसेज बर्थडे का भेजना चाहते हैं तो बेशक आप बर्थडे का भी भेज सकते हैं। कोई भी खुशी का मौका है हो उसके लिए भी भेज सकते हैं। डोंट थिंक कि ये है सिर्फ मातृ दिवस के अवसर पर। आप हमारे पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में मातृ दिवस की मंगल कामनाओं की बौछार कर रहे हैं। इससे ममतामयी प्रोग्राम बन गया है ये। चलिए ज़रा हम आशा जानू जी का मैसेज पढ़ते हैं। कुटेज से आशा जानू जी ने अपनी मम्मा को और अपने पिताजी को मदर्स डे फादर्स डे की मंगल कामनाएं भेजी है और उनकी स्वीट लवली माता जी के नाम बहुत सारा प्यार, पापा के नाम बहुत सारा आदर भेजा है उन्होंने। और शुभम की तरफ से ऋषभ, आशा, आरती, राज और पूरे जानू परिवार की तरफ से माता जी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। और पापा सूरज को वे तो मिस कर ही रहे हैं, ईश्वर के पास हैं पर ऊपर से आशीर्वाद ज़रूर देते रहते हैं अपने बच्चों को। ईश्वर उनको बहुत सुखी, बहुत शांत रखे, यही है दुआ आशा जी और उनके पूरे परिवार की। इधर हमें मैसेज मिला है वाशिकी से ज्योति, स्वस्ति, विकास, मुनि और पूर्णिमा का। उन्होंने अपनी मम्मा लीलो को हैप्पी मदर्स डे का विश भेजा है, बहुत सारा प्यार मम्मा को दिया है उन्होंने। उनकी यादों में सिमट जाने का मज़ा उन लोगों को बहुत आता है और बहुत प्यार भेजा है मम्मा लीलो जी को इन सब बच्चों ने। कमला दीनू जी रहती है मौताबा, उन्होंने मैसेज भेजा है शुभकामनाओं का, मातृ दिवस की मंगल कामनाएं उनकी मम्मा दिव्या के लिए, बेटी आरोही को और सीता जी को, सभी बच्चों की तरफ से सतीश बोयखब जो परदेश में हैं उनकी तरफ से, मम्मा स्वेना को, छोटे रियांश की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं उनकी मम्मा को, बहन भाइयों की तरफ से, सभी पूरे परिवार की तरफ से वेरी हैप्पी मदर्स डे उनकी मम्मा को, रामधनी परिवार, दीनू परिवार और राम जमन परिवार की तरफ से मातृ दिवस की मंगल कामनाएं। और कमला दीनू जी ने मौताबा से हम साथ साथ हैं फिल्म के गाने की फरमाइश तो नहीं की है, चलाने की गुजारिश की है, तो चलिए ज़रा हम वो गाना हमारी लिस्ट में है। कमला जी उन्होंने ये गाना मांगा है क्योंकि इन सभी परिवार के सदस्यों को ये गाना बहुत पसंद है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे और सभी माताओं के नाम करते हैं ये गाना, सभी पिताओं के नाम करते हैं ये गाना। ममता जहाँ पर आगे रहती हैं, पिता का त्याग, पिता का हार्डवर्क हमारे सर के साथ साथ रहता है, हमारे सर के ऊपर रहता है, हमें हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है। प्रणाम माताओं को, प्रणाम पिता।

0: संसार बसता है।
1: माँ मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा।
2: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं,
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
2: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो बस हम अंत में पेश करना चाहेंगे हमारे ये जो मैसेजेस हैं सिमी मीला राजा राजेश की तरफ से, उनकी मामा प्रेमा सन्यासी को मंगल कामनाएं। रोदिना शिवना लोना की तरफ से, उनकी मामा मीला रामस्वामी जो कथोबोन पालमा रहती हैं, उनको मंगल कामनाएं मातृ दिवस की। और साथ है हमारे अनुपमा देका जी जो कथोबोन की रहने वाली हैं, उनके हस्बैंड का आज बर्थडे है और उनके हस्बैंड अपनी मामा को मिस कर रहे हैं जो भगवान के घर हैं, और बस यही दुआ है कि सुख शांति उनको मिले। अनुपमा जी अपनी मामा को मिस कर रही हैं जो इंडिया में है। कहना है उनका कि माँ है तो सब है, माँ बिन पूरी दुनिया अंधकार, कदर करो माँ की, जिस दिन नहीं होगी दुनिया बेकार लगेगी। माँ तेरे जाने का गम तो बहुत है, एक शिकायत भी है उस भगवान से जिसने मुझसे तुमको छीन लिया। ये उनके हस्बैंड की तरफ से उनकी मामा के लिए मैसेज। और आज हम फरीदा फतलू जी की तरफ से, उनकी माँ सफीक, उनकी माँ के नो माफ़ कीजिएगा फरीदा फतलू माता जी के लिए सफ़ीक जीशान और सुलमा की तरफ से जो कनाडा में रह रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं मातृ दिवस की प्रस्तुत करते हैं। बस खुशियों का ये पल है, इन खुशियों के पलों को आप समेट लीजिएगा और ऐसे में अपनी माँ को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आदर दीजिएगा। साथ में हो या न हो माता जी, उनके साथ बिताए पलों को अपने मन में समाकर उनका आशीर्वाद जरूर पाते रहिएगा। मातृ दिवस की मंगल कामनाएं आप लोगों के लिए। सुबह के 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है, आपके साथ इतना समय बिताया हमने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ममतामयी छाँव का एहसास हुआ हमें, इतने सारे विशेष आए माताओं के लिए। तो 9 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, उसके बाद एक विशेष कार्यक्रम मातृ दिवस के अवसर पर डॉक्टर अलका धनपत से आप जरूर सुनिएगा। हमारी आपके अगली मुलाकात तक शुभ दिन, शुभ संडे, शुभ मातृ दिवस, नमस्कार।

0: एक ही रोज माँ का सम्मान करना चाहिए या माँ को खुश करना चाहिए, बल्कि ये दिन याद दिलाता है कि माँ को रोजाना पलकों पर बिठा कर उसकी कुर्बानियों और कामरानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। माँ वो होती हैं जिसका दिल बेहिस इंतहाई मोहब्बत का वो खजाना है जिसकी ममता की रईसी हर पल बढ़ जाती हैं। वो अपने बच्चे पर अपने प्यार को नछावर करने में कभी झिझकती नहीं है, ना बदले में कुछ मांगती हैं। ये दिन ना सिर्फ जन्म देने वाली माओं का है, बल्कि हर उस वालिदा के नाम है जो किसी ना किसी तरीके से ममता के एहसासात रखती हैं। माँ, अम्मी, माता, वालिदा, अम्मा, मम्मी नाम तो अनेक हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत की हद तो कभी मापा नहीं जा सकता। माओं को समर्पित आज के इस खास दिन के मौके पर SOS चिल्ड्रंस विलेज मॉरिशस ने एक बड़े जश्न का इनेकाद किया। खुशियों का माहौल रहा, उन माओं को सराहा गया जो रोज़ अपना घर छोड़कर यतीम यानी अनाथ बच्चों को अपनी गोद देती हैं, बच्चों के लिए एक गहवारा जैसी हैं जो उनकी परवरिश में बड़ा अहम किरदार निभाती हैं। इन माओं की बदौलत परिवार के प्रेम से वंचित ये बच्चे ममता से महरूम नहीं हैं। सभी माओं को मातृदिवस की शुभकामनाएं। PMSD के लीडर ने कल पोर्ट लुई में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया ताकि देश की स्थितियों पर वो टिप्पणी कर सके। ज़ावियर लुक जुवाल के मुताबिक अगले बजट में आवाम की खरीद ताकत को अहमियत दी जानी चाहिए, फिजूल खर्चों के खिलाफ कदमों का प्रावधान भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने VAT को बढ़ाने के संदर्भ में सरकार को चेतावनी दी है। सऊदी अरब की पाक जगहों में कुछ हफ्ते गुजारने के बाद हमारे करीब 1500 मुर्शन हाजियों की हज मुकम्मल हो गई हैं और इस इतवार से कुछ मुर्शन हाजी वापस मुर्शस आ रहे हैं। अगले 24 जून तक सऊदी अलायंस और इमिरेट्स की कुल 12 उड़ानों में हमारे हमवतन मुर्शस लौटेंगे। उनके खैर मकदम के लिए प्लेजों हवाई अड्डे पर कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। विदेश में सैद के मैदान में किए गए एक जायजे के नतीजे में ये पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला लाखों मरीजों को कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने एक नए DNA टेस्ट को विकसित किया जिससे पता चले कि किन मरीजों को इलाज से फायदा होगा और किन के लिए इलाज बेअसर रहेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार 2/3 से ज्यादा मरीज कीमोथेरेपी के प्रभावों से बच सकते हैं और उनका इलाज सिर्फ हार्मोन थेरेपी से ही किया जा सकता है। याद रहे, कीमोथेरेपी से थकान, उल्टियां, झड़ते हुए बाल, कमजोर इम्यून सिस्टम, फर्टिलिटी मसले पैदा हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने 4000 से ज्यादा मरीजों के साथ यह अध्ययन किया जिन्हें हाल में ही अपनी बीमारी के बारे में पता चला और जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा की है। ये मरीज UK, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड से हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रुद गोबियों में 90 साल के 90 years old जनाब अब्दुल हसन नाजिर अली। जनाब अब्दुल हसन नाजिर अली जो बायासन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज 11 बजे के घर रॉयल रुद गोबियों से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टू डेट 11 AM। शोक में दुबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: This is Radio Mauritius.
2: 您好
3: ，Assalamu alaikum.
4: Welcome to Mauritius.
5: Namaskar.
6: Shodharandiri ki hrudaya purvaka namaskaram.
7: Ungal anaivarukkum vanakkam.
8: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
9: Ma.
10: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
9: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
11: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
10: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
9: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी MBC रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
10: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

रूप से जुड़ने जा रहे हैं और माँ सचमुच विशेष होती है। कभी कभी लगता है क्या साल में एक ही दिन माँ के साथ होना चाहिए? नहीं भाई नहीं, माँ तो बहुत प्यारी चीज़ है। दुख हो सुख हो माँ ही याद आती है। पहली कमाई मिलती है, याद आता है माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बीमारी आती है, ओ माँ कह के आदमी अपने दुख को हल्का करता है। माँ शब्द में जादू है श्रोताओं, और मॉरिशस ने इस माँ शब्द को बचा कर रखा है। मॉम, मम्मी, मम्मी, अम्मा, पता नहीं कितने शब्द हैं, लेकिन यह माँ शब्द इतना प्यारा है, जैसे ही बच्चा कहता है माँ, माँ के कानों में घुंघरू बजने लगते हैं। तो श्रोताओं, इस प्यारे से शब्द को सहेजिए और प्यार से अपनी माँ को आज जरा बुलाकर तो देखिए। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, एक दिन केवल माँ को गिफ्ट देकर ऐसा मत सोचिए कि आपने मदर्स डे बहुत अच्छे से मना लिया। मदर्स डे या माँ उपहार की भूखी नहीं है, वह प्यार चाहती है, वह मान चाहती है, वह जो पकाती है आपके मुंह से बस इतना चाहती है कि कोई बोले, वाह माँ आज मज़ा आ गया ये खाना खाकर। अफसोस, हम बाहर के खाने से इतना जुड़ गए हैं कि हम कभी कभी अपनी माँ से कहते हैं, माँ तुमने क्या बनाया है। आप नहीं समझ पाते जब आपके मुंह में दांत भी नहीं थे, आपकी माँ कैसे खाने को पीस कर पतला करके एक एक चम्मच कहानियों के साथ आपके मुंह में डाला करती थी। उन हाथों को सहेजिए, किसी दिन वे फिसल जाएंगे तो बस आंखों में केवल नमी ही रह जाएगी।

श्रोताओं, मातृ दिवस हम मनाते हैं माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। तो आप कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे? केवल जाकर गिफ्ट देंगे और माँ ने खाना पकाया है, आप आनंद से खाएंगे, गप्पे मारेंगे और शाम को वापस आएंगे? नहीं भाई, नहीं। आज माँ को प्यार से गले लगाइए, उसके हाथ को एक बार चूमिए तो सही, उसे एक बार सबके सामने सम्मानित तो कीजिए, एक बार उसकी पहचान को तो देखिए। तब देखिए माँ के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी उसका रंग कुछ और ही होगा। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, माँ केवल अपने 2, 4, 6 बच्चों की माँ नहीं होती। कभी कभी माँ के भीतर इतना गौरव आ जाता है, आत्मसम्मान, वीरता, कुछ करने की हिम्मत, कि वह कभी कभी जगत माता हो जाती है, वीरांगना हो जाती है, देवी हो जाती है, संत बन जाती है। वह भी तो माँ के ही रूप है कि पूरी दुनिया को वह अपना समझने लगती है। इसीलिए माँ का जो विस्तृत रूप है वह महादेवी, दुर्गा, काली, लक्ष्मी के रूप में दिखने लगता है। तो अपनी माँ को उसी रूप में हम देखें और उसका सम्मान सदैव करें।

श्रोताओं, झांसी की रानी, वह भी एक माँ थी। अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर उसने अपना युद्ध लड़ा और अपने बच्चे के हक के लिए अंतिम सांस तक लड़ती रही। यह भी एक माँ की ही प्यास थी। जहाँ एक ओर अपने बच्चे को हक दिलाना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर अपनी झांसी को भी दुश्मन के हाथ में नहीं सौंपना चाहती थी। यह माँ का एक महान रूप है जिसे सदियों तक पूरी दुनिया याद करेगी। और अंग्रेज गवर्नर तो उस समय के लिख कर गए कि उन्होंने अपने जीवन काल में, अपने इतिहास में, किसी युद्धों की कहानी में ऐसी किसी महिला को नहीं देखा जो 20-21 वर्ष की थी और पुरुषों से अधिक बहादुरी से, आत्मविश्वास से लड़ती थी। इसे कहते हैं माँ की शक्ति।

श्रोताओं, माँ के साथ कुछ पल जीने ही पड़ते हैं और जीने चाहिए। माँ के साथ बैठना, थोड़ी बात करना, लेकिन आजकल क्या है, मोबाइल ने हमें नकली बना दिया है। मुपे ना लेता हूँ, टाइम नहीं है, समय नहीं है, ऐसा बोलकर हम अपने आप को झुठलाते हैं। हमारे पास समय नहीं है क्या? अभी कोई कह दे हमें कि चलो आज रात को डिनर पर जाना है, देखिए हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो है ना समय, लेकिन जिस माँ ने हमको इतना बड़ा किया, हमारा ध्यान रखा, उसके लिए हम कहते हैं कि समय नहीं है। श्रोताओं, थोड़ा समय निकालिए, कभी कभी माँ के साथ बैठिए, उसके दर्द को समझिए। उसकी बढ़ती उम्र का दर्द भी है, उसे सुनना चाहिए। यह है मातृ दिवस।

श्रोताओं, माएँ आंधियों से भी लड़ जाती हैं, माएँ दुश्मनों से लड़ जाती हैं, अपने बच्चे को बचाने के लिए वे स्वयं मरना पसंद करती हैं। और तो और, माओं ने हमेशा अपने बच्चों को संभाला है, वह उनके लिए ढाल बनकर खड़ी रही हैं। कोई गैर उनके बच्चों को कुछ बोले, कोई माँ बर्दाश्त नहीं करती है, तो हमें भी तो उसे सम्मान देना चाहिए। यदि कोई उसके बारे में कुछ बोलता है तो हमें भी उसकी ढाल बनना चाहिए, क्योंकि अब हम जवान हैं, वह बूढ़ी हो रही है, उसको सहायता चाहिए, उसको मदद चाहिए। तो श्रोताओं, माँ का रूप अनेक तरह से है।

श्रोताओं, घर में बचत माँ करती है, वह लक्ष्मी रूपा है। बच्चों को नया भविष्य देती है, वह सरस्वती रूपा है। वह समाज की बुराइयों से बच्चों के लिए लड़ जाती है, वह दुर्गा रूपा है। तो श्रोताओं, वह जो शक्ति का रूप है, सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, यहाँ तक कि वह कभी कभी काली और चंडी भी बन जाती है और इस समाज से लड़ जाती है। इस रूप को हमें सम्मानित करना चाहिए और हमेशा उसके इस रूप के प्रति नतमस्तक होना चाहिए।

श्रोताओं, मीरा बचपन में एक बारात को देख रही थी। माँ से पूछा, माँ क्या है? माँ ने कहा, एक विवाह हो रहा है, दूल्हा आ रहा है। उसने कहा, माँ मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ ने उसे गिरधर की मूर्ति पकड़ा दी। सारा जीवन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई रे। मैं तो कहूँगी मीरा बाई को अध्यात्म का रास्ता दिखाने वाली पहली गुरु उसकी माँ ही थी, जिन्होंने उन्हें गिरधर का परिचय कराया। और जीवन भर मीराबाई पायो जी मैंने राम रतन धन भायो गाती रहीं, और पूरी दुनिया में उनकी भक्ति ऐसी भक्ति है कि मीरा जैसा और कोई है ही नहीं।

सुनीति ने यही अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, पिता की गोद ढूंढते हो? असली गोद ढूंढो, जिस पर से तुम्हें कोई कभी उतार ही नहीं पाएगा। बस बालक जंगल में निकल गया उस प्रभु की खोज में। आगे नारद मुनि मिले, उन्होंने कहा, बेटा बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ध्रुव ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने कहा है गोद ढूंढनी है तो उस प्रभु की ढूंढो, वह गोद असली गोद है। तब वे तपस्या में बैठे और उन्हें ध्रुव तारा का सम्मान मिला। तो श्रोताओं, कौन था प्रेरणा देने वाला? माँ सुनीति ना। माएँ जब प्रेरणा देती हैं, उनका एक एक शब्द बच्चों के कानों में काम करता है। मैं सभी माताओं से भी कहूँगी, आप ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए, आपका एक एक शब्द बच्चों पर प्रभाव डालता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो बरसों बाद वह संस्कार रूप में निकलता है। जिस तरह से माएँ बात करती हैं, जिस तरह से माता समाज में व्यवहार करती है, परिवार में जैसे रहती है, बच्चा वह सब सीखता है। तो मेरा सभी माताओं से भी निवेदन है कि कृपया अपने आप को संभालिए, अपना व्यवहार, अपनी जबान, अपना बोल, अपनी डांट, अपना प्यार, इसे बहुत समझकर सोचकर बोलिए, क्योंकि बच्चा चाहे या ना चाहे वह गुण उसके भीतर आ ही जाते हैं और माँ के कहे वाक्य को वह कभी भुला नहीं पाता है।

तो श्रोताओं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज मातृ दिवस है, आज हम अपनी माँ के चेहरे पर देखें कितनी हंसी, कितनी मुस्कुराहट हम ला सकते हैं। उसे सम्मान दीजिए पूरे परिवार में, उसे पहचान दीजिए पूरे परिवार में, उसके अस्तित्व, उसके गुणों को उभारिए। उसे भी लगे कि हाँ, मेरे बच्चे मुझे, मेरा जो मैंने इतना किया है, मुझसे प्यार कर रहे हैं। प्यार वस्तुओं में नहीं है, प्यार बोलने में, शब्दों में, व्यवहार में होता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर अपनी अपनी माँ के हाथ को एक बार दबाएं, पकड़ें, प्यार से प्यार करें और उसको एक बार गले लगा कर कहें कि माँ, तू जैसा कौन होगा जिसने मुझे जीवन दिया। बस इसी के साथ अलका धनपत को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेरा से। सुमेरा आपको नमस्कार, आदाब।
1: नमस्कार रादाब। जिसकी दुआओं में जन्नत की हवा है आज उसे सलाम। माँ की कदर करना, माँ का आदर करना हर बच्चे की जिम्मेदारी है। आज एक ऐसा दिन जो हर बच्चे को ये सीख देता है कि ना सिर्फ एक ही रोज़ माँ का सम्मान करना चाहिए या माँ को खुश करना चाहिए, बल्कि ये दिन याद दिलाता है कि माँ को रोज़ाना पलकों पर बिठा कर उसकी कुर्बानियों और कामरानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। माँ वो

0: होती हैं जिसका दिल इंतहाई मोहब्बत का वो ख़जाना है जिसकी ममता की रईसी हर पल बढ़ जाती हैं। वालिदा, माँ, अम्मी, माता, अम्मा, मम्मी, नाम तो अनेक हैं लेकिन उसकी मोहब्बत की हद तो कभी मापा नहीं जा सकता। सभी माओं को आज के दिन की शुभकामनाएं। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय बच्चे को गोद लेने वाले परिवारों के लिए नए कानूनी ढांचों पर गौर कर रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म को कायम किया जाएगा ताकि परिवार अपने तजुर्बे बांट सके। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगया नावामागी ने कल फिनिक्स में इस बात की पुष्टि की। पीएमएसडी के लीडर ने कल पोटली में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया ताकि देश की स्थितियों पर वो टिप्पणी कर सके। जावियर जुवाल ने वाट को बढ़ाने के संदर्भ में सरकार को चेतावनी दी। इसके अलावा अगले बजट में आवाम की खरीद ताकत को अहमियत देने तथा फिजूल खर्चों के खिलाफ कदमों का प्रावधान के प्रावधान को प्राथमिकता देने के बारे में बल दिया। विदेश में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बोला का तेजी से फैलाव हो रहा है। मेसांफोसिया ने चेतावनी दी कि अब वहां हालत चिंताजनक बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अदानुम ने पूर्वी कोंगो राज्य इतुरी का दौरा किया जहां वायरस का सबसे बड़ा असर है। अभी 1000 से ज्यादा शक्की मामलात है और 246 लोगों की मौत हो चुकी है। उगांडा में 9 मामलों की पुष्टि की गई है और 1 मौत दर्ज है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड गोबियो में 90 साल के 90 years old जनाब अब्दुल हसन नाजिर अली, जनाब अब्दुल हसन नाजिर अली जो बायासन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज 11 बजे इनके घर रॉयल रोड गोबियो से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

मौजूद सामईन, अभी आपने सूरा मुल्क की तिलावत समात फरमाई। सामईन, ईद तो गुजर गई मगर ईद की खुशियां अब भी जारी व सारी हैं। आज भी कहीं बिरयानी दम पर हैं, बिरयानी की खुशबू हवा में घूम रही है, मेहमानों की आमद व रफ्त हो रही है। आज भी बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मामू खालू चचा से ईदी मिल जाएगी। खैर, मजाक अपनी जगह, ये बड़ी खूबसूरत लम्हात होते हैं, घरों में अपनों का आना जाना, चाय के साथ कह कहे लगाना, बचपन की यादें, पुरानी बातें, हंसी मजाक, फिर भी दिल नहीं भरता। सामईन, इसीलिए अपनों के साथ वक्त गुजारिए, खुशियां बांटिए। यही छोटे छोटे लम्हात जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां बन जाते हैं। आइए सामईन, पैगामात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पाई से हमें एक पैगाम मौसूल हुआ है। मोहतरमा नाजिया फरमाती हैं कि गुज़िश्ता जुम्मे को उनके वालिद मरहूम तौहीद दस्त मोहम्मद को इंतकाल हुए। 15 साल गुज़र चुके हैं और उनके वालिद के लिए इस आले सवाब की दरख्वास्त और साथ ही साथ उनकी वालदा मरहुमा रफीना दस्त मोहम्मद के लिए भी इस आले सवाब की फरमाइश। तो हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रब कायनात, मरहूमीन को अपनी मगफ़िरत, अपनी रहमत और अपनी दायमी नेमतों में जगाता फरमाए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये ईद हमें सिखा गई कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। जिस दस्तरखान पर गरीब का हिस्सा ना हो, शायद उसकी बरकत का जायका मुकम्मल नहीं होता। जिस खुशी में किसी ज़रूरतमंद की मुस्कुराहट शामिल ना हो, वो खुशी कुछ अधूरी महसूस होती है। सामईन, इसी वजह से इस्लाम ने कुर्बानी को इबादत के साथ साथ सखावत से भी जोड़ दिया, ताकि इंसान सिर्फ इबादत गुजार ना बने बल्कि इंसान दोस्त भी बने।

0: इकबाल करता है। आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। पोविदा से मोहतरमा शमीमा और उनके शौहर अली वजद अली की तरफ से एक ख़ास पैगाम। मोहतरमा शमीमा कहती हैं कि उनकी अम्मी और सास का इंतकाल हो चुका है, उनके लिए इस साल सवाब की दरख्वास्त। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, गुनाहों को माफ़ फरमाए और उन्हें जन्नत के बाग़ों में से एक बाग बनाए। और आखिर में उन्होंने एक कलाम की फरमाइश की है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये कलाम काफ़ी ख़ासा अहमियत का हामिल है और बहुत सारे लोग इस कलाम की फरमाइश करेंगे। तो ये अगला कलाम ये ख़ास कलाम कारी नेमुल हक की आवाज़ में मुलायजा फरमाइए।
1: दोस्तों, ये कलाम मैं अपनी वालदा की नज़र कर रहा हूँ।

मोहतरम सामईन, उम्मीद करते हैं कि आपने ये कलाम पसंद फरमाया होगा। ये कलाम ख़ास तमाम माओं के नाम। आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। मोताई ओगी से मोहतरमा शिरीन हमें लिखती हैं कि आज उनके बेटे नवाज़ और बहन नसरीन की सालगिरह है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको नेक ख्वाहिशात की तकमील और ख्वाबों की ताबीर अता फरमाए, आपको हमेशा खुश रखे और हर कदम पर अपनी हिफाजत अता फरमाए। आमीन। अगला पैगाम कातबोन से हमें मौसूल हुआ है। कातबोन से शबनीस पियाबक्स और रेशमा अब्दुल्ला की तरफ से उनकी वालदा मरहूमा मुनिजा पियाबक्स के लिए इसाले सवाब और ख़ास उनके अब्बू के लिए भी मरहूम रशीद पियाबक्स के लिए इसाले सवाब की दरख्वास्त। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूमीन को अपनी बेपाया रहमत के साए में जगाता फरमाए, उनकी लग्जिशों को दरगुजर फरमाए और उनकी कब्रों को नूर सकीनत और दायमी रहमत का गहरा

सामईन कराम, ईद सिर्फ हमारे घरों की खुशियों का नाम नहीं, ईद उस मुस्कुराहट का भी नाम है जो किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर नज़र आती है। शायद किसी यतीम बच्चे के लिए गोश का एक छोटा सा हिस्सा, किसी बेवा माँ के लिए एक सलाम, किसी मोहताज के लिए चंद मोहब्बत भरे अल्फाज, यही असल ईद है। क्योंकि इस्लाम ने खुशी को सिर्फ अपने लिए नहीं सब के लिए पसंद फरमाया है। सामईन, अगला पैगाम हमें प्लेंदी पापाई से मौसूल हुआ है मोहतरमा महनाज की तरफ से। इसाल सवाब ख़ास उनकी अम्मी मरहुमा रशीदा वालिद मरहूम रहीम मुजिया और सास मरहुमा आयशा बज्जू के लिए। तो हम दुआ करते हैं कि अर्रब कायनात मरहूमीन को अपनी मग़फ़िरत, अपनी रहमत और अपनी दायमी नेमतों में जगह अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगला पैगाम हमें वाकुआ से मौसूल हुआ है मोहतरमा शहनाज की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम, मेरी माँ तो नहीं मगर उसकी यादें ज़िंदगी भर दिल को भरा देती हैं। ये कमी तो रहेगी, उसका कोई दूसरा तो नहीं बिलयकीन। इस आले सवाब मेरी माँ और सभी मरहूमीन के लिए। तो हम दुआ करते हैं तमाम मरहूमीन के लिए, अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें बेहतर जगह अता फरमाए। आमीन।

सामईन ज़ीवकार, ईद हमें एक खूबसूरत सबक देकर जाती है, वो ये है रिश्तों को जोड़ना, नाराज़ दिलों को मिटाना, बिचरों को मिलाना और मोहब्बत के चराग जलाना। अगर इस ईद पर किसी ने किसी को माफ़ किया, किसी ने किसी को गले लगाया, तो यकीन जानिए यही सबसे बड़ी ईद है। सामईन, आज के लिए आइए चंद आखिरी पैगाम सुनते हैं। तेगूज से मोहतरमा शमीम बानो इसेल जी हमें लिखती हैं कि इसेल जी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं, ख़ास कर जो इस फैमिली से इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला हुज्जाज कराम के सफ़र को आसान फरमाए और उनके हज को कबूल फरमाए। बिलखसूस उनकी अम्मी मरहुमा नाजमुन इसेल जी और उनकी खाला के लिए इस साल सवाब। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूमीन की मगफिरत फरमाए। अगला पैगाम न्यू ग्रोव से मोहतरमा फ़ातिमा हमें लिखती हैं कि हम रोज़ अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, मेरे माँ बाप नहीं हैं, अल्लाह ताला आपके वालिदैन की मगफिरत फरमाए। और आखिरी पैगाम हमें लावेनिया से मौसूल हुआ है। आज जनाब जिलानी बाबा साहिब की सालगिरह है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लंबी उम्र अता फरमाए, रहमत भरी बरकत भरी। तो आइए ये कलाम आप सभी के नाम।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी आखिरी कलाम के साथ हमारी आज की बज़्म अक़ीदत नशरियात अख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद है आपने आज के प्रोग्राम को ज़रूर पसंद फरमाया होगा। आपके पैगामात और दुआओं का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ हमसे जुड़ते रहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की कुर्बानियों, इबादतों और दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हमारे दिलों को हमेशा अपनी मोहब्बत से आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन्हीं दुआया कलिमात के साथ निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार है। दिल नादा को रुख्सत होना गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। वादा है कि अगले इतवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मुत्याल स्वरालू, मुत्याल स्वरालू। ముత్యాల స్వరాలు

little pretty angel. My heart's broken. Find her for me.

下面呢，让我们一起来收听，今天汉语普通话好歌送给您的节目。好，下面是第一首。

好，听众朋友，接下来为大家送上的是巩越的祝酒歌。好，下面大家一起来收听。

好，听众朋友，一首悠扬动听的，有回心转意之后呢，接下来让我们一起来欣赏《好梦有梦好甜蜜》。

好，听众朋友，接下来为大家送上的是刘欢的老歌《少年壮志不言愁》，好，大家一起来收听。

好，听众朋友，一首悠扬的《少年壮志不言愁》之后，接下来为大家送上的是，香港已故著名歌星梅艳芳带给我们的《下辈

听众朋友，接下来为大家送上的是刘德华给我们带来的《一起走过的日子》。好，下面让我们一起来欣赏。

नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए इस समय शाम के 4:05 हो चुके हैं। इस रविवार को साथ निभा रही हैं पूजा हम और आप। कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं। एक ऐसा रिश्ता जो जन्म से पहले शुरू हो जाता है, एक ऐसा प्यार जो बिना किसी शर्त के मिलता है, एक ऐसा दिल जो अपने बच्चों के लिए हर दर्द सह लेता है, वो है माँ। कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए कई बार इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। लेकिन शायद यह बात अधूरी है, क्योंकि माँ केवल भगवान की बनाई हुई नहीं, कई बार माँ खुद भगवान का रूप बन जाती है। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। जब बच्चा रोता है तो माँ की आंखें भीग जाती हैं, और जब बच्चा मुस्कुराता है तो माँ की पूरी दुनिया खिल उठती है। हम बड़े तो हो जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारे दोस्त बदल जाते हैं, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, माँ की दुआएं। वो हर सुबह हमारे लिए प्रार्थना करती हैं, चाहे हम उसके पास हों या उससे हजारों किलोमीटर दूर। कभी आप लोगों ने गैर किया है, घर में सब सो जाए तो माँ आखिर में सोती हैं, और सुबह सबके जागने से पहले उठ जाती हैं। उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, उसे कोई वेतन नहीं मिलता, और उसे कोई पुरस्कार भी नहीं मिलता, फिर भी वह अपने कर्तव्य निभाती रहती हैं मुस्कुराते हुए। माँ की सबसे बड़ी खूबी यह नहीं कि वह हमें जन्म देती हैं, बल्कि यह है कि वह हर दिन हमें नया जीवन देती हैं। जब हम हार जाते हैं तो वही हौसला बनती हैं, जब हम टूट जाते हैं तो वही सहारा बनती हैं, जब पूरी दुनिया हमारी गलतियां गिनती हैं तो माँ हमारी अच्छाइयों ढूंढती हैं। आज मातृ दिवस पर एक पल रुक कर सोचिए, कितनी बार अपनी अपनी माँ से कहा है कि माँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, कितनी बार आपने उसका हाथ पकड़ कर उसका हाल पूछा है, कितनी बार आपने उसका उनकी थकान को महसूस किया है। आज के दौर में सब कुछ बदल रहा है, तकनीकी बदल रही है, रिश्तों में मायने बदल रहे हैं, जिंदगी जीने का तरीका बदल रहा है, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या हम अपनी माँ की कीमत भूलते जा रहे हैं? तो आज मातृ दिवस पर आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं 4028085 पर। आप सभी का इंतजार है हम और आप कार्यक्रम में। चलिए तब तक के लिए आप सभी के नाम ये प्यारा सा नगमा।

सब कुछ मिल जाता है पर माँ नहीं मिलती। कहा जाता है माँ वो घर है और उसकी आंचल

0: वो सुकून है जिसमें कोई भी सर रख कर सोता है या अपने दुख सुनाता है, तो मान लीजिए दुख कम हो जाता है। चलिए आज मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे एमबीसी टीम की ओर से, और कुछ लोग जो हैं लाइन पर हैं, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या विचार है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: सब चल रहा है, भगवान के छू से और सब सुटालों के छू से सब चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है
0: जी,
1: धीरे धीरे बोल धीरे धीरे चल।
0: हाँ जी,
1: तो माँ एगो बड़ा एगो बहुत बढ़िया चले ले वो हैला है ये टोपिकवा पराशक्ति धरती माँ चाहे ला करा रिस्पेक्ट करेगी, सब आदमी के चाहे ला रिस्पेक्ट करेगी। हाँ सिर्मो ये जब कैसे को माले है गोले घुमा के हमरे तो मन माँ बाप नहीं बासी मो हम भी नहीं हम सागर के ला हमने जब नहीं सकला बोले कहाँ जाके उकरा ढूंढ के निकालब। मतलब इतना लाभ पोस्ट रहा हमार फैमिली लोग संगे सब बहुत पोस्ट रही सर कोपे के रही सर ओकरा देख ली सब मलाद रहल सब देख ली सब बराबर देख ली सब डेंजर जुड़े और ओकर एगो लेके बहुत बड़ा लेके है वही पहला डिसीजन ले रहा है वो घर में जब खाए रोटी कपड़ा और मकान नहीं रहला तब माँ बाप के बोलेला कि नहीं भाई सब आने के चाहेला। समझ लो और वो घर में वो कुलो निकालते है वो चीनी करेला वो जब माँ चल जला तो फिनी धला कमजी को जो बोल सर घर वाप जाने घने होता और अथी अथी रोटी कपड़ा और मकान है पहला देखेला अगारी अपन लड़का लोग के पेट भर डोला तब पीछे से माँ बाप लोग खा ला वो कहीं नहीं कितना जस्ती कमती रही थे सब खाते हो डेनियल है वो लोग खा ला और है जितना पुआ है सब वही अति करेला और बहुत करेला हमने के हम एगो मांग करते कि कमे नहीं बा माँ नहीं बा तो ओकरा चाह नहीं बुलाई के एगो आदमी से कहला मिलियोने हो मिल्च मिलियोने हो पमी लपड़ी हुई जुमान हो मैं सिर्फ माँ के सब चाहला देखे के क्या मैं मला ढोगल बा गिर गल बा तो चाहला अकरा देखे के सेवा करे के जब हमने जन्म ले ली से छोटा रही से तब माँ बाप ने हमने के सेवा कर ले बा ना तो जब अभी माँ माँ बाप गिर गल बा नहीं बताते कैसे भूला जी बोकरा है। हाँ तो अच्छी हाँ हई स्वाइया चाहला करे के लाज में और हम एक मांग कर रहे थे कि आश्रम नहीं चाहला माँ के डाले के कहीं आश्रम में डलब एगो माँ रहला था एगो बरकत है घर में बहुत बड़का बरकत है। समझ लो और हबी के लिए पोख हम देखल मुरीर भर घूमल है सकेला आवाज बड़ी जो भगवान अच्छी के बेली के सकेला हम पहुंची हो आई दिशा में ले सकेला तो हबी हम ढेर प्लास में देखले है आगे आगे बेलसी और बेटा चलता पीछे पीछे माँ बाप चलता तो है हम ने हम नाम कौन सा ये लका है। हाँ अभी आदमी को मजे भाई बेल्फी और बेटा अथी लोग सब अभी बीजू खोजत सब पैसा खोजत घर खोजत है माटी खोजत सब तो हम एगो मांग कर मटिया उ दे बेटा बेटी के दे मैं सिर्म आगे माँ के देख तब पीछे माटी के देखिए घर देखब और बीजू है ये हमारे एगो संतेश और सब कोई के सब श्रोता लोग के अथी हमेशा करत है और है एगो बहुत बहुत बढ़िया टॉपिक है तो चलते रहो और अच्छी दिया चलते रहो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे श्रोताएं जो हैं वो लाइन पर हैं, तो सभी थोड़ा थोड़ा सा बोलिए ताकि सभी को मैं अवसर दे पाऊँ। तो चलिए अभी हरीश जी को मैं सुनती हूँ। हेलो
2: नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार हरीश जी, कैसे हैं आप?
2: क्या कहूँ, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, सभी को लिए
0: आपको भी।
2: क्योंकि मेरे मेरे विचार से माँ है तो कैसे माँ हुई, पहले पिता था, बिना पिता के माँ नहीं हो सकता, ये जो परिवार के नियम है। तो आज मदर्स डे है क्योंकि हम मना रहे हैं द वर्ल्ड मदर्स डे ना, मैं हमको भूलना नहीं चाहिए एनी मदर कैन नॉट बिकम ए मदर विदाउट ए फादर, दैट शुड बी ए पुरुष, ये तो एक सच्चाई है। एक दूसरी बात मैं कहूंगा पूजा जी, हमको माँ

ऐसा है कितना बड़े कितना इम्पोर्टेंट हो हमारे जीवन में, हमको भगवान से तुलना नहीं करना चाहिए। डोंट कंपेयर भगवान गॉड विद अवर मदर, क्योंकि भगवान मेरे विचार से है, मेरे

0: कमी है, कहाँ कुछ क्या हो रहा है,
1: क्या हो रहा
0: हमारे
1: है
0: हमारे दिल में, हमारे मन में क्या हो रहा है, भगवान जानता है।
1: जानता।
0: और एक बार, और वो ओमनीपोटेंट, वो चाहे कुछ भी आप मांगे, उसके शक्ति है वो करने के लिए। ओमनीपोटेंट, तो ये सब माँ में नहीं है। माँ एक सिंबल है, माता जी एक सिंबल है, तेंदरेस जो कहते हैं, तेंदरेस, लामू, कॉम्पैशन en français, patience, nous connais, patience qui ça veut dire, mais maman il y a un symbole de patience. Sacrifice, sacrifice. Maman, जितना sacrifice करता है, मैंने अपने experience में, अपने बचपन में, जवानी में, ये हमने देखा है, कितना sacrifice माता जी करते हैं, हमारी माँ करती है, क्योंकि जब हम लोग आशीष में थे तो मेरे पिताजी गुजर गए, तो जब तक हम काम नहीं किए तो मेरा मेरा मेरी माता जी ने हमको देखभाल किया, वही घर संभाला, तो सक्रीफाइस। तो अब लास्ट लास्ट थिंग अभी से पूजा, वो उसके सहन शक्ति को हम दाद देते हैं, उसकी शक्ति है जो सपोर्ट, चाहे कितने भी दुख हो वो सपोर्ट करने की शक्ति है। तो एक बात मैं कहूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहूंगा, अनुभव, पूजा जी, जब भी हमको प्रमोशन मिलता था अपने काम में, दफ्तर में, पहली पर्सन, पहली व्यक्ति जो जो हमको जानते, वो प्रमोशन के बारे में जानती है, वो थे मेरी माँ। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो 2020 में वो 103 होती, 1 फरवरी, 103 years। तो व्हेन आई गॉट होम, जब हम घर वापस आते हैं, तो हमको प्रमोशन मिल गया, तो हमको उसको गोदी में उठा देते हैं, वो थोड़ा छोटी छोटी थी, नाती छोटी नाती थी, तो हमको मुझे लेवड़ी दमो ले बा चलमो मुझे कोता। तो जो एक्सपीरियंसेस हमारे माता जी के, हमारे मेरे और मेरे माता जी के जो रिश्ता था, तो ये कहूंगा कि आज वो है भी नहीं, नहीं भी है, लेकिन उसके जो संस्कार हमको दिया है, कैसे परिश्रम करना है, वो परिश्रम करती थी, जिबुआ लाती थी, काबरी देखती थी, घास खाती थी, ये सब करती थी, तो मेरे लिए, हाँ, परिवार के लिए, तो ये हम कभी नहीं भूलेंगे।
1: बहुत बहुत ये जो है ये हमेशा यादें रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। और भी लोग हैं, चलिए आप सभी थोड़ा थोड़ा सा बोलिए, ताकि मैं सभी को मौका दे पाऊँ। आप लोगों से निवेदन है, आइए एक और श्रोता को हम सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: हाँ, अच्छा है, तो अच्छा हुआ ना। हम डालबे से बोला थे, संगीता।
1: आपका स्वागत है संगीता जी, आपका क्या विचार है? आप थोड़ा थोड़ा सा बोलिए, ताकि मैं सभी को मौका दे पाऊँ। चलिए,
2: सबसे पहला बताए, तू अपन माता पिता से बहुत प्यार कर लेना पूजा जी।
1: हाँ,
2: देखा, मंदिर में भगवान रहेला, घर में हमारी माँ, मंदिर में जब भगवान नहीं लौकेला, लेकिन घर में माँ स गुरु जी ने सही बता क्या बोले ला। हाँ, अभी बड़ी बड़ी बड़ा दिन बाटे, सब कोई बड़ा खुशी बा। हाँ, हमारे बेटा लगा, देखा, हमारे तो पति नहीं बा, अकेले हैं। हमारे बेटा अल्फीर के हमरा बोला था, ते माम बोन फेस मामा, हम तो हमारा वाई छोड़ गल, मई मम्मी तो मामा, मम्मी तो पापा, हम ही है ये वो लोग के ना। देखा, हमारा बड़ा बेटा बा, हमारा हमारे गोदी में गोर रखने वाला, जुनो हमरा पूछ गया था, सही कहता के बा, तो अब हम पढ़े ला बोला दवाई के दे, हमारे बेटा वो कुछ भी वो बूढ़ा भी हो जाए, हमारे लेके है ना आगे के। देखा, माता पिता हमने के सब छोड़ के चल गए, अब हमने के बहू बा, हमने के पत्तू, हमने के बेटी, वो लोग अब माँ बनल बा, अब हमने के चाह ला का बोले ला। हाँ, अब हमने ले जाते ऐसे। हाँ, तो ये बोले थे सब माता लोग के, माता अभिनंदन बोला था सब माँ लोग के। हाँ, माता पिता भी, पिता भी है वंजा। हाँ, सब कोई खातिर आज बड़ी बड़ा दिन बा, आज सब कोई खुशहाली मनावा था का बोले ला। अब जगह माँ बाता खुशी हो के चाहे का बोले ला,
1: चाहे ला पिता भाता। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपके इस विचार के लिए,
2: आपको भी
1: अच्छा शुभ संध्या आपको। चलिए एक और श्रोता को हम सुनते हैं। श्यामा जी नमस्ते, प्रणाम।
3: प्रणाम आपको भी पूजा।
1: प्रणाम,
3: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
3: खुशी की बात।

0: साथ है, आपने इस प्रोग्राम का संभाला है, आपसे कुछ सुनते हैं ना। सभी माताओं को सत नमन और आपको भी नमन।
1: आपको भी।
0: तो मेरा विचार ये है पूजा, बड़ा निराला बड़ा ही पावन मन भावन एक नाता, एक तरफ है सारी दुनिया एक तरफ है माता। नारी मान सम्मान की मूर्ति है पूजा, हाँ त्याग तपस्या की देवी है। माँ बाप के बिना घर आंगन सुना सुना लगता है, अधूरा लगता है, घर आंगन निर्जन वन के समान होता है। माँ निर्माता है, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करती है। माँ जननी है, प्रकृति है, रक्षक है, शिक्षक है, पालक है, पथ प्रदर्शक है। माँ अपना सारा जीवन अपने बच्चों की सेवा में निछावर कर देती है। माँ बाप के बिना बच्चे हमेशा भटक जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के सुधारक हैं, भटकने से बचाते हैं, बुरे संगत से बचाते हैं, अच्छी बातों पर, अच्छी राहों पर ले जाते हैं। एक माँ ही है जो अपने बच्चों पर अपना सारा प्यार सारी ममता लुटाती है। घर का खंभा तो पिता है ना, रीढ़ की हड्डी है ना पिता। माँ के आंचल के में शीतल छाया है, माँ अपने बच्चों की उंगली पकड़ कर चलना सिखाते और पिता अपने कंधे पर अपने बच्चे को बिठाकर सारी दुनिया दिखाता है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो पिता अंगारों पर चलकर कड़ी धूप में अपने आप को तपाते हैं। पिता बच्चों को पालने के लिए आंधी तूफानों से लड़कर घर लौटते हैं और माँ रसोई में अपने आप को तपाती है पर उफ नहीं करती है। समय आने पर पिता को अवकाश मिलता तो है पर माँ को कभी अवकाश नहीं मिलती है। अपने बच्चों की सेवा में अपना सारा जीवन बिता देती है पूजा, आपको तो पता है। माँ की तुलना तो धरती माँ से की गई है, गंगा माँ से भी की गई है, क्योंकि उनका हृदय पवित्र है, विशाल है ना। मेरा यही कहना था पूजा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको तहे दिल से मैं मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलती हूँ।
0: आपको भी बराबर
1: धन्यवाद।
0: ओके, शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी। चलिए एक और श्रोता को हम सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
2: नमस्कार पूजा जी।
1: नमस्कार जी।
2: गला थोड़ा खराब है।
1: कोई बात नहीं,
2: ये मैं कह रहा हूँ आपको मातृ दिवस अभिनंदन।
1: आपको भी
2: पूरी एम्बेसी टीम को। जबकि मैंने रहा एक होम में, जैसे लोग ने कहा अभी एक आश्रम में जाकर माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो नहीं समझते कि पहले भगवान तो हमारे घर में है, वही हमारे भगवान है, हमारे माता, हमारे पिताजी, उनकी पूजा करो, उनकी पैर की दर्शन करो, तब जाके आपको सुकून मिलेगा। ना कि मंदिर जाओ, सभी जगह जाओ, सभी इलाका जाओ, फूल पान ये सब लेकर जाओ, पूजा करो, पूजा, ये सब पूजा व्यर्थ है। जब बाप को, माँ बाप को नहीं पूछा तो क्या पूछा, क्या पूजा है इसकी, समझते। देखो तो यही अभी जब तक वो जवान था कर सकते थे आपके लिए, उसने किया, माँ बाप ने किया, बहुत परिश्रम से आपको इतना बड़ा किया, घर द्वार सब बनाया, लेकिन अगली अंतिम जब वो 60 साल का हो गया तो उनको जाकर छोड़ेंगे हम वहां पर, हो आश्रम में। आश्रम में मैं रहा हूँ, मैंने देखा किस तरह से वो जुल्म सहते वहां पर। वो क्या अपने बच्चे को याद नहीं करते, अपने को बच्चे को याद नहीं करते वहां पर, वो नहीं रोते, उसका दिल नहीं दुखता, कहते हैं ना, कहते हैं माँ बाप का दिल जिसने दुखाया आकाश में वो भगवान को भी रुलाया। ये सही है, जब माँ बाप का दिल दुखाया तो आकाश में भी भगवान को आपने रुलाया, तो क्या पूजा है, पूजा आपकी व्यर्थ है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक उन लोगों को एक एग्जाम्पल, एक अंश नहीं मिला, एक ये कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास है धन दौलत ये सब,

0: पते क्या कहते हैं, जाकर माँ बाप को डालते हैं वहां पर, वहां पर वो बहुत झूठ रहते हैं। 4 बजे सवेरे वो लोग उठाते हैं आपको। औरत किसने कहा? महर्षि दयानंद ने कहा, और आपने वो आश्रम का नाम रखा है, ये प्लीज नोट कीजिएगा, आश्रम का नाम रखा है आर्य सभा मॉरिशस। और क्या आर्य सभा मॉरिशस की तरह चल रहे हैं वो? नहीं, मैंने रहा 3 हफ्ता, मैंने रहा वहां पर, मेरे पैर बीमार से मैंने गया कुछ केयर के लिए, लेकिन केयर नहीं गया वहां पर। 3 औरत जो है जो मर्दों को नहाती, ये कहाँ का नियम है? महर्षि ने कहा 3 औरतों मर्दों को नहाओ, उसको नंगे करो, उसका कुछ ये सब चेंज करो, ये सही है? मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये अगर इस पर हम ध्यान नहीं डालेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा नोट करो, इसको आप आगे तक ले चलिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जैसे कि मातृ दिवस पर आपने ये प्रोग्राम किया, अच्छी है, लेकिन नहीं सोचते, कोई नहीं सोचते कि ये माँ है, ये बाप है, ये हमारे भगवान है। अंतिम समय तक जब वो आया, अंतिम समय में अब आज नहीं काल तो वो चले जाएंगे, तो क्या है, हम उनकी सेवा करें? और उसने हमारी जिंदगी भर हमारी सेवा की, जिंदगी भर, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको।
1: धन्यवाद आपको भी। चलिए राधा जी को हम सुनते हैं। राधा जी नमस्ते।
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार आपको
2: जी। मैं आपको, सभी को मैं मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, और जो हमारे तकनीकी सहायक है उनको भी, सभी को। मैं ये कहूँगी कि मातृ दिवस आती है केवल एक दिन के लिए नहीं, हमेशा माता पिता को याद रखना चाहिए, भले ही वो आज तो नहीं है हमारे साथ। जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं, ऐसे ही हम प्रतिदिन अपने माता पिता को हम याद करें, स्मरण करें। और कोई भी बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए पूजा जी, इतने बड़े ओहदे पर भी वो चला जाए, माता पिता के लिए वो उनका बेटा उनकी बेटी ही रहती है। वो उनको अब उनके ओहदे से नहीं पहचानती, बल्कि अपने बच्चे से उन्हें उनको पहचानती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि सब लोग सम्मान दें अपने माता पिता को, उनका आदर सत्कार करें, जब तक हैं तो उनका मान रखें, जब नहीं होंगे तब ये ख्याल आएगा कि मेरी माँ होती तो ऐसा करते वैसा करते, लेकिन जब हैं, अभी हमारे सामने हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी आपसे कि

नहीं, हम तो यही जाने इससे बड़ी, ओ हम तो यही जाने इस

0: से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, मुझे इतना ही कहना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: शुभ
1: राधा जी,
0: संध्या पूजा
1: शुभ
0: जी,
1: संध्या
0: बहुत शुभ
1: आपको भी,
0: संध्या, शुभ रात्रि
1: धन्यवाद
0: आपको भी। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तो चलिए आशा जी हैं लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। नमस्कार आशा जी,
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी। मैं
1: नमस्ते, आप कैसी हैं?
2: अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं? ठीक।
1: मैं भी ठीक हूँ आशा जी, बताइए आपका क्या विचार है।
2: सबसे पहले मैं समस्त माताओं को मातृ दिवस और पितृ दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और खास तौर पर अपनी माता को सच सच प्रणाम करती हूँ। और पूजा जी, देखे ना, ये जो मातृ दिवस जो सिर्फ एक दिन का नहीं होता, ये तो हर रोज का होता है। और ये जो उपहार लेना देना ये जो होता है, ये जो बच्चों के माँ को प्रसन्न करने के लिए ये तो करते ही रहते हैं। पर क्या हमने ये कभी सोचा है कि माँ को क्या चाहिए? माता पिता को बच्चों का समय चाहिए। जिन माता ने जब बच्चे छोटे थे तो बच्चे नहीं सोते थे, तो अपनी निंजा भी निछावर के देती थी। माँ बच्चे जहाँ उनको वे निंजा से जाग जाते रोते, तो माँ अपना सुख नहीं देखती, अपनी नींद नहीं देखती, माँ बच्चों को संभालती। आज वो तनहा है।

0: अकेली है, वो नहीं सोती है, तो क्या हमने कभी पूछा है कि माँ तुम क्यों नहीं सो रही हो? हम बाहर जाकर कभी खाने को मन नहीं करता है तो हम बाहर जाकर खा लेते हैं, पर क्या हमने पूछा है माँ से, माँ क्या तुमने खाना खाया है, तुम क्या कर रही हो? क्या हमें पल भर के लिए अपने माता पिता के गम बांटने के लिए उनको अपना समय, अपना कीमती अनमोल समय दिया है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो बातें हैं ना पूजा जी। और कभी कभी ऐसा होता है आज के जो हम नए पीढ़ी होते हैं, माता पिता जो हमें सीख देते हैं, हमें कुछ बात सिखाने के लिए टोक देते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं, पर जब हम छोटे थे तो हमारी शरारतें, हमारे नखरे वो जब उठाते थे तो वो तो हम पर गुस्सा नहीं करते थे, वो तो चिड़ापन नहीं करते थे। छोटे से छोटी बातों को, हमारे सपनों को पूरे करने के लिए वो अपना सारा सुख त्याग देते थे। तो आज वो हमें कुछ सिखा रहे हैं तो इसमें हमारी ही भलाई है। इसे मैं ये संदेश देना चाहूँगी समस्त श्रोताओं को कि हम ये कह सकते कि हम भाग्यशाली हैं कि आज हमारे यहाँ हमारे माता पिता है। सोचते जिनके पास ये अनमोल रत्न नहीं होते तो वो कितना रोते हैं, कितना दुखी रहते हैं। तो यदि आपके पास है, आपके पास यह अनमोल रत्न, तो उसके संभाल कर संजो कर रखे, और कुछ नहीं तो उनकी सेवा में ही अपना सुख, जी उनकी सेवा ही में आपका सुख है, इसी बात को समझ कर अपने जीवन को जाए। और पूजा जी अगर आप अनुमति देंगे तो एक छोटी सी कविता माँ पर कह सकती हूँ?
1: अवश्य कहिए।
0: माँ शीतल निर्मल फूलों से भी कोमल माँ, पावन जीवन ममता की सरोवर माँ, सुंदर सूरत ममता की मूरत, करुणा की दौलत माँ, स्नेह की गंगा बहाते, प्यार से जीवन सवासे, लार दुलार करती अपनी खुशियां भी हम पर लुटाती माँ, बच्चों के लिए जीती है हर पर, आंखों से नहीं करती है ओझल, सर पर रखती ममता का आंचल माँ, लोरी गा गा के सुलाए, सुख के पलने में हमको झुलाए, अपनी निंदा भी हम पे वारी जाए माँ, प्रथम विद्यालय है माँ की गोद, त्याग और तपस्या की करुणा स्रोत, जुबान से निकलती है माँ जब भी लगती है हमको चोट, पक पक हमें संभालती माँ, अंधेरे की जोत में दिया है माँ, मेरे मित्रों में सबसे पहले तू ही आती है माँ।
1: बहुत बहुत सुंदर आशा जी, और आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता के।
0: पुनः फिर आप सभी को कहूँगी मातृ दिवस अभिनंदन।
1: आपको भी। तो चलिए और भी लोग हैं लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। हेलो
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार धनी जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप अच्छी है ना?
1: मैं ठीक हूँ। अच्छा
2: जी, आज का दिन महान दिन है और माँ एक शक्ति है। ये जानते हो पूजा जी, हम इतना भूल जाते हैं कि भगवान ने जब इंसान को पैदा किया, इस सृष्टि को रचा, तो हमें एक वरदान दिया है। अगर ये शक्ति है हम में, इंसान में, आपकी आवाज़ फिर से आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है मेरे ही पास, मैं जाने क्यों, ये छोड़ दीजिए। तो भगवान ने एक वरदान दिया है इंसान को, ताकि ये दुनिया बनी रहे। परंतु हम आज की माताएं और पहले की माताएं, इंसान ही में फर्क है, आज के इंसान बदल गया है। तो साथ साथ सिर्फ माँ पर कहूँगा, आज की कुछ माताएं, जब माँ के विषय पर बोल रहे हैं, तो आज के कुछ माताएं है भी जो निर्दयी भी है। जानते हैं, इतना कहूँगा मैं कि उन बच्चों के पिता से बिन सोचे समझे बच्चों का क्या होगा, वो तलाक ले लेते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो यही कहूँगा कि कुछ माताएं हैं आज के समय में कि निर्दयी भी है, सिर्फ वाह वाह करके हम बोलेंगे। तो उन बच्चों से पूछिए जो दुखी है, जिनके माँ उनको छोड़कर चली गई। और मैं कहूँगा ये कि भगवान ने हर चीज को

0: जोड़ा से बनाया है, सिर्फ माँ नहीं है, पिता भी है, बाप भी है। अगर बाप ना रहे तो माँ माँ नहीं बन सकती। ये सच है, मानिए मेरी बात, और सच्चाई है। माँ बनने के लिए पिता भी होना चाहिए
1: जी,
0: ये सच है, इतना ही कहूंगा। सोचने की बात है आगे में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी,
0: जी।
1: और आपको कहेंगे शुभ संध्या। आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनसे हम बात करते हैं। हेलो,
2: हेलो बुआ जी,
1: नमस्कार। वीना जी, कैसी हैं आप?
2: मैं एकदम ठीक हूँ आज के दिन, और प्रसन्न भी हूँ और दुखी भी हूँ। प्रसन्न हूँ कि आज सभी माताओं का दिवस है। वैसे तो दिवस मातृ दिवस, पितृ दिवस, अगर हम माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो रोज ही मातृ दिवस पितृ दिवस होना चाहिए। तो एक लाइन में सुनाती हूँ, फिर आगे बोलती हूँ।

0: ये सही बात है कि माता के समान प्रेम करने वाला कोई नहीं होता है संसार में। ऐसे तो सभी लोग होते हैं, लेकिन मातृत्व जो है ना, माता का जो प्यार है वो अलग ही है। उसकी तुलना हम किसी और से और चीज से नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि माता निर्माता भवती। उपनिषद में एक सूक्ति आती है कि वो निर्माण करने वाली है, वो सृजन करने वाली है, और उनकी तुलना धरती माता से की जाती है। क्योंकि धरती माता हमारी माता है, वो कितना कुछ सहन करती है। तो माता भी ऐसी ही है, उन पर कितने दुख आंधी तूफान आता है वो सब सहन करती है। और क्या होता है कि ये भी कहा गया शास्त्रों में कि पुत्र कपुत हो सकता है, यानी कि पुत्र जो कपुत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। माता माता ही हर अवस्था में। देखियो, माँ गरीब हो अमीर हो, गंदी हो कैसे बोलते हैं, दुराचारी हो या दुराचारी हो, अपने बच्चे के लिए वो माँ ही होती है। पूजा जी, वो कुछ भी करके अपने बच्चे को कभी दुख में नहीं देख सकती। उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपना जी जान लगा देती है। ये तो कहती, उन लोगों से पूछना चाहिए जिनकी माएं नहीं है। हमारी भी तो माँ संसार से चली गई है, अब उनकी याद कमी लगती है, लेकिन क्या करें, ये तो संसार का नियम है, जो आया है वो तो जाएगा ही। तो मैं इतना ही कहूंगी, सभी को सुन रही हूँ, सभी अच्छे अच्छा अच्छा विचार दे रहे हैं। तो अपनी माता पिता का कभी त्याग न करें, कभी अपमान न करें, क्योंकि वो जब वृद्धावस्था में हो जाते हैं पूजा जी, तो वो आपके धन दौलत रुपये पैसे के भूखे नहीं होते, वो बस आपके प्यार के दो बोल अपनापन के लिए वो
1: तरस
0: तरसते हैं।
1: जाती है।
0: हाँ, उन्हें यही चाहिए, वो उसी से संतुष्ट होता है, उनका मन गदगद हो जाता है। उनसे प्यार से बातें करें, जो बोल बोले मीठी बातें करें, पूछे उनका हाल चाल, पूछे आप कैसी है, खाना खाया कि नहीं खाया, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, यही बस है। यही जो बोलेंगे ना, तो उनके लिए बहुत पर्याप्त है। लेकिन क्या है, आजकल तो जमाने में देख रहे हैं, जिस दौर से दुनिया चल रही है, तो बहुतों को के पास समय ही नहीं है। जैसे कि किसी एक एक एक छोटी सी सुनाती, छोटी सी दो लाइन की, कि एक एक पुरुष जा रहा था एक दंपति गाड़ी में अपने कुत्ते को लेकर, कुत्ते को बिठा कर ले जा रहा है घुमाने के लिए, और उसके वृद्ध माता पिता बस स्टॉप पर खड़े हैं बस के लिए, देख रहे हैं ना। तो कुत्ते के लिए जगह है गाड़ी में, लेकिन माता पिता को बिठाने के लिए जगह नहीं है। तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें परमपिता परमात्मा को जाकर जवाब देने, क्योंकि कहा जाता है जब हम अपने बड़ों को रुलाते हैं ना, तो ऊपर में भगवान भी रोते, उनका भी दिल दहल जाता है। जब माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो वो भी प्रसन्न रहते हैं, और आशीर्वाद इतना बरसता है कि आपका आंचल में समाता ही नहीं है, इतना वो आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिसकी माता चली गई है, पिताजी चले गए हैं, वे उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बरसता है। पूजा जी, मैं तो ये 100% मानती हूँ। जब आप याद करें किसी मुसीबत में हो, कभी भी

0: याद करें, उनका वरद हंस आपके सिर पर रहता है हमेशा। तो बस यही कहूंगी कि सभी को अपने माता पिता का अच्छी तरह से, सिर्फ आज ही के लिए नहीं और अगले आने वाले दिनों में भी नहीं, कि आज हो गया फिर दिन में मातृ दिवस तो फिर समाप्त हो गया, कल से फिर वही अपमानजनक बातें, वही गाली गलौज, वही दुत्कार, तो ये अच्छी बात नहीं है। सभी को फिर से मैं बोलूंगी मातृ दिवस, अतिथि दिवस बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी अपने बड़ों का कभी त्याग न करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, और आपको शुभ संध्या। चलिए एक और श्रोता को हम सुनते हैं लाइन पर। प्रणाम और नमस्कार नवीन जी। हेलो,
2: शुभ नमस्कार पूजा जी।
1: शुभ नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद आप आए हैं।
2: नहीं सुनिए, अभी गड़बड़ बहुत है, बात खाली समय में हमको फोन करना, आपको बताऊंगा।
1: चलिए चलिए मैं बताऊंगी जी।
2: अच्छा, क्योंकि मैं अभी क्या बोलूं, अच्छा जान दीजिएगा, मैं कुछ बातें करूंगा।
1: चलिए बोलिए।
2: देखिए पूजा जी, समय समय पर जानती हूँ परिवारों का हर रिश्ता बदल रहा है, पर प्यार और अपनापन सदैव बनने की कामना करते हैं, सभी लोग करते हैं। आइए मैं आपको कुछ सच जिन पर विचार करना आवश्यक है ये कहूंगा आप लोग आपसे। जन्म के तुरंत बाद एक माँ अपने बच्चे का मुख देखने हेतु व्याकुल होती है, फिर बड़े प्यार और ममता के साथ उसका पालन पोषण करती है, यहाँ तक कि अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती है बच्चे की खुशी है, उसकी पूर्ति, सब कुछ पूर्ति है, तो सब सब। लेकिन जब माँ वृद्धा हो जाती है, वही संतान उनसे केवल बात ही नहीं बल्कि माँ का मुंह देखना नहीं चाहता है। एक बात कहूंगा, इस दुनिया में एक ऐसा बालक हुआ था, जब उनको पता चला कि बेटे का मुख देखने से माता पिता अंधे हो गए, तो उस बालक ने प्रण लिया, यह निर्णय लिया कि पितृ भक्ति उसका सबसे बड़ा धर्म रहेगा। क्या किया उन्होंने? अपने माता पिता को प्रमुख स्थिर स्थानों यात्रा कराने का वादा किया। वे उस समय तो टुकड़ियां थी, पालकी थी कंधों पर डालकर, पर आज तरह तरह के वाहन की सुविधाएं होते हुए भी बच्चे अपनी माँ अपने पिता को अस्पताल तक नहीं छोड़। एक माँ ने मुझसे कहा, बेटा मैंने उनको अपनी कंगन बेचकर उनको मैनेजर बनाया, लेकिन तो मेरा दिल कितना दुख रहा था। उस रोज मैं सत्संग के लिए तैयारी कर रहा था, एक संस्था में मैं काम कर रहा था। माँ कभी भी बच्चे को बोझ नहीं समझती, पर संतानें बड़ी आसानी से माता पिता को बाहर की नजरों से देखकर घर से बाहर जाने को कहते हैं। तनिक सोचो पूजा जी, सभी लोग तनिक सोचो। देखो पूजा जी, मैं एक बात कहूंगा, पुराना सोना है ऑल इज गोल्ड, और कहूंगा ऑल इज गद, अगर उस एल को गोल से निकाल कर फेंक दे तो। मेरा तात्पर्य यह है कि हमें चाहिए कि प्राचीन शिक्षाओं को कायम रखें और सीखें, जैसे और आदर्श बने, जैसे श्रवण कुमार, जैसे श्री राम, जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव, और ऐसे इत्यादि इत्यादि बच्चे हैं। तो अंत में कहूंगा आपसे कि ऐसा करने से भगवान खाता भर देगा, और अंत में सभी को, सभी माओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। आपको कहूंगा शुभ संध्या, नमस्कार, कभी मुझे फोन करिएगा पूजा जी।
1: अवश्य अवश्य मैं फोन करूंगी आप।
2: शुभ संध्या
1: आपको। एक और श्रोता है लाइन पर, एक दो श्रोता है, मैं धैर्य की मांग करती हूँ आपसे। चलिए।

0: आप सुनते हैं। हेलो,
1: हाँ बेटी,
0: नमस्ते नानी जी, प्रणाम।
1: नमस्ते। हमारे बेटी नातिन कैसे
0: नमस्ते।
1: हवा?
0: अच्छा है, तू कैसे
1: आप
0: है?
1: तो
0: अच्छा
1: सबके
0: हुआ
1: माँ
0: ना।
1: हवा ना, आप
0: हाँ
1: सबके माँ हवा। बड़ी
0: हाँ जी।
1: खुशी के बात बा। बोलेला, माता बिना आदर कौन करे, और बरखा बिना सागर के भरे, आ पिता बिना प्यार के करे। सुना था वा ना,
0: हाँ हाँ सुना था।
1: माता बिना आदर के करे बेटी, आ बरखा बिना सागर के भरी, पिता बिना प्यार के करी। बोले, नैहर में बारे पाँच भैया पाँच भौजैया हो, नैहर में बारे पाँच भैया पाँच भौजैया हो, आहो रामा एक नाही डोलिया सोहावन, एक मरे माई बिना। अहो मैया तब अहो रामा तब हो ना डोलिया सोहावन, एक मरे माई बिना। ये सब हा बेटी, ये सब हा। ये जीवन में जीवन मिलल बा तो मिलल बा, और सब कुछ अच्छा बा। इतना माँ लोग बस सब कोई बतियात हवा जा, सबके आदर करत हवा, तू ही आदर करत हवा बेटी। बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद नानी जी, प्रणाम। एक और श्रोता है लाइन पर। अच्छा मेरी जी, प्रणाम, नमस्ते।
1: प्रणाम बहन जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: मैं अच्छी हूँ। आपको बहुत शुभकामनाएं,
0: आपको भी
1: माता के ओर से बहुत आशीर्वाद।
0: धन्यवाद।
1: बहन जी, आज बहुत शुभ दिन है। माँ का हम जितना बखान करें उतना कम है। माँ के बिना दुनिया नहीं चलती है। माँ है तो सब कुछ है। हमने भगवान को नहीं देखा, भगवान माँ को मैंने भगवान का रूप में देखा। माँ हमें जन्म दिया, माँ जननी है, माँ शक्ति है, माँ माँ बहुत उसकी हृदय इतना बड़ा है, विशाल है, कि उसका हम उसका कितना बखान भी करें बहुत कम है। हाँ बहन जी, देखिए, जो माँ का घर में उसका आदर करते हैं, माँ का आजों का पालन करते हैं, माँ का संस्कार जो देते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि माँ हमारी गुरु है, हमें सिखाते हैं कि अच्छा क्या है, क्या बुरा है, हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं। तो हमें हम जो बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य बनती है कि माँ का आज्ञाओं का पालन करें। माँ ऐसी होती है जो हमें हमेशा बुराई रास्ते से हटाकर हमें अच्छाई रास्ता दिखाती है। तो हम यही इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवान को हमने कहीं नहीं देखा, घर ही में भगवान है। ऐसे बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में है, उसके यहाँ बहुत सी ज्ञान है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो जवान लोग होते हैं ना, उसका कदर नहीं करते हैं बहन जी। ऐसे मैंने बहुत घर में देखा है। कभी पूजा पाठ हो रही है तो बड़ों का वहाँ पर उनका निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो पांव पूजन होती है ना बहन, तो बुलाते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तब भगवान तब कथा शुरू होती है। लेकिन जब पंडित जी बोलते हैं बड़े कहाँ हैं, तो बोले वो वहाँ है, वो नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है, बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, हम उसके द्वारा हम इस घर में आए हैं, उसके आशीर्वाद बिना कोई काम नहीं चलेगा बहन जी। ये तो हमें बड़ों का आशीर्वाद, कोनो कार्य काम करे, शादी ब्याह पूजा पाठ करे, तो हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़े कहते हैं क्या, बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं? ये हमारे भगवान का रूप है। हमने भगवान को नहीं देखा है, अपने बड़ों में भगवान देखा है। क्योंकि वो लोग हमने क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अच्छे बने, अच्छे मार्ग धरे, कि हमारा जीवन सफल हुए। और बहन जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे सभी लोग माँ सुने, बहन जी अभी जो युग चल रहा है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ ने तलाक ले लिया है, दूसरा विवाह कर रही है। बहन जी मैंने अपने आँखों से देखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वो बच्चे भगवान का रूप है, वो क्या जाने, वो तो माँ माँ का ममता है, वो माँ का ममता छोड़ना चाहते हैं, उनके प्यार प्रेम चाहते हैं, लेकिन वो दूसरा विवाह कर नानी यहाँ छोड़कर बच्चे को जा रही है। बहन जी मैंने अपने आँखों से देखा, इसीलिए बोल रहे हैं ऐसे माँ नहीं होना चाहिए। पहले के जमाने में बहन जी मैं

0: डट कर सामना करती है कि पति खराब है तो क्या हुआ, मैं माँ हूँ, मैं डट कर सामना करूंगा। सहल सीता बनकर अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपाकर मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूंगा, मैं अपने घर नहीं छोड़ूंगा। जब पंडित जी वहाँ पर जब भावर में घूमते हैं तो पत्थर अपने पैर में लगाते हैं कि कुछ भी हो जाए अपने घर अपने बच्चों को कभी ना छोड़ना। इसीलिए हमें दुख होती है ना बहन, वो बच्चे रो रहा है, वो डोली चढ़कर जा रही है। माँ ये कैसी है, माँ कैसी माँ होती है? माँ तो माँ होती है, पुट को पुट सुना है पर माता को माता नहीं सुना है। ये कलयुग है बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल रोता है, वर्षा हो रही है, बच्चे भींग रहे हैं। मैंने बच्चे से पूछा पिता कहाँ है, बोले पिता नौकरी गई है, अभी मैं स्कूल से आई हूँ, मैं चलिए मेरे घर। बोले नहीं पिताजी कहाँ है, यहीं पर रही। बहन जी ये सब देखकर दिल खोलता है बहन जी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं किसी को दर्द देकर नहीं चुप रह सकती हूँ। इसीलिए मैं रेडियो में बोलती हूँ अपने बच्चों को संस्कार देना। देखिए बहन जी, कभी कोई माँ चार बच्चे होती है, पति दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, पत्नी डट कर सामना करती है, खंभा बनकर खड़ा हो जाते हैं, अपने घर को गिरने नहीं देती है, अपने बच्चों का पढ़ा लिखा कर अच्छे पट पर खड़े कर देती है। ये है माँ, क्योंकि भगवान का रूप है भगवान। माँ और बच्चे में भी भगवान है, क्योंकि वह अभी छोटा है, वो कुछ नहीं जानता है, वो कोरा कागज की तरह है बहन जी, जो हम सिखाते हैं वही करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, अच्छे मार्ग दिखाओ। ये जवानी हमेशा नहीं रहता बहन जी, जब एक दिन ऐसा आएगा जब हम अभी तो दूसरा विवाह कर लिया ना बहन, जब हमारा उम्र घटेगा तब तू याद करेगा कि ये क्या जवानी था जो मैंने बच्चों को छोड़कर मैंने दूसरा विवाह क्यों किया। वो रोएगा, दिल तड़पेगा, क्रिया चुक गई खेत बहन, अब रोने धोने से क्या
1: और
0: पाएगा?
1: आपके इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चमेली जी।
0: बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत अच्छी तरह से सभी भक्त जितना लोग हमें भाग ले रहे हैं अच्छे अच्छे विचार दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और आपको आशीर्वाद देती हूँ कि हमेशा आप सुखी रहे।
1: धन्यवाद। एक और दो और श्रोता है, उनसे धैर्य की मांग है, चलिए सुनते हैं कमला जी को। हेलो
2: हेलो पूजा जी।
1: नमस्ते कमला जी, कैसी हैं आप? मातृ दिवस की शुभकामनाएं आपको।
2: आपको भी और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी तो ममतामय वातावरण चलता आज, दिल भी कोई के तो दुखा था बहुत, तो जैसे मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है आज, तो मैं एक दो छोटी छोटी लाइन बोलूंगी
1: जी,
2: जो मैंने बचपन में अपनी आरोही को सुनाई करती थी जब वो छोटी सी थी, जब उसका जन्म हुआ था, और उसको भी ये गाना बहुत ही पसंद है। हाँ ये गाना ये है, चंदनिया छुप जाना रे कंचन भर में छुप जाना रे, नींदी आंखों में आए बीतिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं गाऊं रात भर

0: ये गाना ऐसे ऐसे लोरी शायद सबने सुनी होगी बचपन में, सब लोगों ने सुनी होगी। कितनी दिल छू देने वाली लोरियां अभी कहाँ सुनने को मिलता है पूजा
1: नहीं
0: जी।
1: जी, नहीं मिलता।
0: हाँ, और जितना कोई भी बात कर लग, सब कोई अच्छा अच्छा विचार दिलाग, और वो है जैसे दिल दुखा था जिकर जिकर माँ नहीं बात, जैसे कि मेरी मामा अंजनी आज मुझे बहुत याद आ रही है, और मैं सभी को, अपने परिवार को, अपनी बेटी को, अपनी नातिन को और सीताजी को, सबको शुभ नवरात्रि दिवस।
1: आपको भी, और मैं बस यही कहूँगी, कमला जी जिनकी माँ नहीं है वो ऊपर से हमें देखती हैं और एक एंजल की तरह हमारे ऊपर अपना जो आशीर्वाद है वो बरसाती रहती है ना।
0: हाँ
1: तो
0: पूजा
1: आपको
0: जी, हाँ पूजा
1: भगवान
0: जी,
1: बहुत सारी शक्ति दे, मैं बस यही आशा करती हूँ। और आपको मातृ दिवस की शुभकामनाएं एक बार फिर से। धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: बसंती जी को हम सुनते हैं, और भी लोग हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा समय मौका दे देती हूँ। हेलो,
1: जी, हेलो, नमस्कार पूजा जी, मैं हूँ बसंती
0: नमस्कार आपको बसंती जी,
1: जी।
0: कैसी हैं
1: माता
0: आप?
1: दिवस की शुभकामनाएं सभी
0: आपको भी,
1: माताओं को मैं प्रणाम करती हूँ।
0: आपको भी।
1: जी, मातृ देवो भव अर्थात माँ भगवान है। यह एक सत्य है कि हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा है, इसीलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपनी जननी को भगवान माने। एक स्त्री न जाने कितनी भूमिकाएं निभाती है, जैसे वह कभी किसी की बेटी, बहन, पत्नी, बहू और माँ होती है, लेकिन इन सब में माँ की भूमिका निभाना सबसे जटिल होता है। और एक लाइन में गाकर सुनाऊंगी पूजा जी।
0: गाइए।
1: जी, कभी खुशी कभी गम न जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम।

0: तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी
1: क्या
0: गम।
1: बात है
0: जी,
1: बसंती
0: मैं
1: जी,
0: पूजा
1: बहुत
0: को बहुत पूजा करती हूँ।
1: बहुत
0: आप तो
1: बहुत
0: पूजा के लायक हैं पूजा जी।
1: नहीं, आप मेरी पूजा मत कीजिए, बस आप मुझे हंसाती रहे, बस जब भी मैं आपको सुनती हूँ आप हंसती हैं,
0: हंसती
1: मैं भी
0: रहती
1: हंस
0: है
1: लेती हूँ,
0: जी, यही
1: चाहे
0: तो जिन
1: कितने गम हो मैं आपकी
0: जी
1: आवाज़
0: जी
1: सुनकर हंस
0: जी
1: लेती
0: जी
1: हूँ
0: आपको खुशी
1: बहुत
0: देखना चाहिए जी पूजा जी।
1: बहुत
0: थैंक यू वेरी
1: धन्यवाद
0: मच।
1: धन्यवाद धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, दो और हैं, चलिए उनको हम सुनते हैं। हेलो,
0: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी, कैसी
0: आपको
1: हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ। जिस
1: आपको
0: माता
1: मातृ दिवस
0: की,
1: की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहन जी,
1: चलिए बताइए।
0: माता की कमी महसूस हो रही है, मैं उसके लिए एक छोटी सी गीत गाऊंगी अपनी माँ के
1: गाइए।
0: लिए, गीत जो माता पिता के याद में। सबको याद, कितने खुश नसीब है हम लोग तो बदनसीब है, लेकिन बच्चे जब आते हैं तो हम भी अपने खुश को समझ लेते हैं। तो ये है मेरी माता पिता के लिए, मेरी दो बहनों के लिए। तुमको तो करोड़ों साल हुए बतलाओ गगन गंभीर, इस प्यारी प्यारी दुनिया में क्यों अलग अलग तकदीर। और एक ऐसा जो दिया

0: बचपन उधार दे दो, जुदिया था तुमसे एक दिन। बहन जी ये गीत तो चला गया, दिन भी चला गया, वो अब कहाँ मिलेगा वो प्यार, वो संस्कार।
1: बस
0: संस्कार तो
1: यादें रह
0: जो
1: जाती
0: उन्हों
1: हैं।
0: लोग ने जो दे दिया तो हम लोग उसके पालन कर रहे हैं, लेकिन अब से जो देना उनको चाहिए था वो तो हम लोग कमी महसूस कर ही रहे। तो मैं सभी माताओं को शुभकामना देती हूँ, मातृ दिवस अभिनंदन। धन्यवाद बहन जी, आपको भी
1: बहुत बहुत
0: मंगलमय
1: धन्यवाद
0: हो।
1: आपको भी,
0: धन्यवाद, शुभ मातृ दिवस, शुभ सप्ताह,
1: आपको
0: शुभ
1: भी,
0: रात्रि भी। धन्यवाद।
1: आपको भी। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम मौका देते हैं। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्ते सुदेवी जी।
2: नमस्ते
1: नमस्ते,
2: नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आपका
1: मैं ठीक हूँ।
2: हैप्पी
1: आप,
2: मदर्स डे।
1: आपको भी।
2: मैं पूजा जी, मैं कहती हूँ कि मैं आज मैं खुश हूँ, सब माताओं खुश हैं, बेटी आई हुई हैं, फोन करती हैं विदेश से भी, सब कुछ अच्छा से चल रहा है। तो मैं कहती हूँ यही भगवान सबके दुआ करे। मैं यही कहती हूँ, एक छोटा सा गाना गाती हूँ।

0: बहुत बहुत
1: वक्त हो गया है
0: आपको भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, आखिरी श्रोता को मैं अवसर देती हूँ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते पूजा जी, हम
0: नमस्ते
1: तारा हैं।
0: तारा जी आपका स्वागत है, बताइए आपका क्या कहना
1: मासी
0: है।
1: मासी दिवस शुभकामनाएं
0: आपको भी।
1: हाँ, माँ माँ तो नहीं है, जब माँ तो है तो बहुत हम लोग खुश रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं। अभी तो नहीं माँ है।

0: ना बाप है ना भाई है। हम लोग ये दिन आते हैं तो हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत बहुत उदास। जिसको माँ है वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। अच्छे से देखभाल करने का चाहिए माँ को। बहुत दिल दुखाते हैं जब ये दिन आते हैं तो। इतने हमको बोलना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी,
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद। माँ, माँ कोई शब्द नहीं एक एहसास है, माँ कोई रिश्ता नहीं पूरी दुनिया है, माँ कोई कहानी नहीं जीवन का सबसे सुंदर अध्याय है। और सच तो यह है कि जिसके सिर पर माँ का हाथ होता है उस इंसान के पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। चलिए उनको प्यार दीजिए, उनको गले लगाइए और जितना हो सके दुनिया भर की खुशी उनकी झोली में रख दीजिए, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनके पास बस यादें ही हैं। उन यादों को के साथ ही आप रह सकते हैं और मुस्कुरा भी सकते हैं। चलिए आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे और साथ दे रही हैं इंद्रानी जी और काजल जी हालन से, अपनी सास इंद्रानी जी और अपनी सास और माँ इंद्रानी जी की याद में। और साथ में हैं सुनीता जी मेघवंती, उनकी माँ की याद में। और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए। कुछ ना हो तो बस यादें रह जाती हैं।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: सबको की नमस्ते और प्रणाम। चला जुड़ जाइया अब हमनी तनी सुन गमट कर अब सक कहे की तो हर पसंद कार्यक्रम में सकबा जहाँ हमनी के टेलीफोन करे 4028085 पर और नहीं तो सकबा जहाँ हमनी के मैसेजो भेजे 52 51 00 05 पर। तो चला अभी लाइन पर एक श्रोता बाते ओकरा जो समय नहीं मिला लेकिन अवसर नहीं मिला तनी सुन माँ पर बोले के। तो चला ओकरा हमनी सुनी रासा ओकर विचार कौन ची है और ओकर हमनी स्वागत करी रासा। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार आपका स्वागत है।
1: मैं ललिता क्यूबिव से बोल रही हूँ।
0: अच्छा ललिता जी आप बताइए आपका कौन विचार बातें माँ पर।
1: मातृ दिवस के शुभकामनाएं मैं सभी माता पिताओं को अभिनंदन करती हूँ।
0: आपको भी।
1: माँ तो है माँ, माँ का प्यार बहुत पवित्र होती है। माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। मातृ दिवस साल में एक दिन नहीं आता है, मातृ दिवस रोज मनाना चाहिए। मंदिर जाते हैं पूजा आरती करते हैं क्यों, माँ बाप के चरणों में ही सब कुछ है। जब भूखों को भोजन खिलाया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो दान देने से क्या फायदा। लोग जाते हैं चार धाम पूजा करते हैं जैसे मथुरा काशी हरिद्वार बनारस वैष्णो देवी, लेकिन माँ के माँ बाप के चरणों में ही चार धाम है। हजारों तीर्थ से अच्छा है माँ बाप की सेवा। यहाँ से चलकर भारत जाएंगे तब भी माँ की कर्ज चुका नहीं सकती। माँ बाप की खुशी बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। आगे के समय में देखो माँ बाप के माँ की 9-10 बच्चे थे, लेकिन आज बच्चों को पाल पोस कर माँ ने बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, नौकरी दी, विवाह भी किया। आज वही बच्चे अपने माता पिताओं को धर्मशालाएं में डाल दिया है कि एक सप्ताह एक महीने में उन लोगों को फुर्सत नहीं मिलते हैं अपने माता पिता को देखने के लिए। ये देखो कैसा समय आया है। माँ तो शक्ति है, माँ तो देवी है, माँ तो जननी है, जन्म देने वाली। माँ का सम्मान देना चाहिए धरती पर। कौन सी चीज है यहाँ जो नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है लेकिन माँ नहीं मिलती। मैं दो लाइन बोल सकती हूँ।
0: अच्छा बोलिए।

बहुत सुंदर आपने गाई है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ललिता जी बहुत सुंदर गाई है और आपको कहेंगे मातृ दिवस की शुभकामनाएं। और अभी तो हार पसीन में बहुत सारे लोग जो हैं लाइन पर हैं। चलिए अभी कमला जी आप प्यारी आरोही और सभी दिनों परिवार के नाम और साथ में हैं सीता जी, रिहांश जी, रिहांश बुरब और कर सब जिनहा दिनों परिवार के नाम और ख़ास तौर पर जिन जिन लोग ई गीतवा के पसंद करें नंसा और ख़ास तौर पर चित्रा जी, नवीन लक्ष्मण जी और उकर पत्नी चित्रा जी खातिर तो चला है गीत हमनी सुनी रसा गीता गजादर जी के गावल गीत और साथ में बातें काजल जी जो हमनी के सुना था वन हाईलैंड से और उषा जी हाईलैंड से और देवी जी हाईलैंड से तो चला हमनी ई सब खातिर है गीत हमनी सुनी रसा।

तो चला अभी जितना कोई हमनी के साथ देवत हवाना शांता सुकारी और साथ में बातेली लो जी इंदिरा लौटन जी हवाना

साथ में मिला जी न्यू ग्रोव से और दोनों बहन का तीर्थ स्वंती और गीता ओफिया से और साथ में सुनीता जी गांगोब से और दोनों बहन का तीर्थ

तो चला अभी दादी शांता चलाल हवा ना बोला थका अब ओकर मन बाते गो गीत सुने के सुंदर लाठी हमनी के माता पिता वे हा हमनी के जोन आई गो आसरा और देखे हमनी के ढेर सारा प्यारो देवेलन सा और जैसे हम हमेशा बोलीला और फिनो से बोला थे कि जितना सेवा करबा उतना ही मेवा मिली। तो चला ओकर सब परिवार खातिर है गीतवा हमनी सुनी रासा और खासतौर पर शोभा जी वाकवा से सुनत हवन और इंदिरा लौटन जी और साथ में कमला दीनू जी प्यारी आरोही खातिर

तो चला अभी तनी सुन हमनी दाल खाप स काहे कि अभी निर्मला फादर जी आवत हवन और गावत हवन कोनो दिन खा दाल खा के त ई गीतवा के मांग कर ले बाते सुदेवी जी और बोलत हवन काहे नहीं हमार त बड़ा मन बाते सुने के है गीतवा थोड़ा कब से सुनत है त है गीतवा हमरा बड़ी पसंद बाते और गीतवा खासतौर पर महेन जी और ओकर दीदी मान और ओकर सब परिवार खातिर जो पालमा से हमनी के सुनत हवन।

जितना कोई आप आज अपन जन्मदिन मनावत हवन एमबीसी टीम के देने से सब कोई के हैप्पी बर्थडे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खास तौर पर पतिया परिवार और दमिया परिवार की ओर से।

जन्मदिन बधाई धर्मावती जी के और ओकर बहिन देने से ओकर बहिन लीलो और ओकर बेटाओं के जन्मदिन बाते तो चला जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो चला धन्य हो माँ, जैसे बुलल जाला कि जल बिना जीवन नहीं है, वही समान एगो माँ के बिना घर सुनावे रहेला। तो चला अभी अनीता चाची जो हथियोले से हमने के सुना था ना, और बोला था कि ओकर लड़का बड़ी डिजोर्ट करा था। तो चला अभी लाफ्रांस

तो चला एक वही संगे हमनी तुहार प्रसिन कार्यक्रम के अंत तक चला हैं जा और जितना कोई साथ दिलन जा सब कोई के बुलाब जा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये आखिरी गीत जो है मीरा मोहन के गावल गीत चतनिया और गीतवा के मांग कले बाती दिरा जी और रेकरे वे संगे पूजा को अनुमति दा हमार दिने से सब कोई के नमस्ते स्वस्थ रहिया सुरक्षित रहिया।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। आज है मातृ दिवस, माँ के स्नेह ममता

0: त्याग और समर्पण को नमन करने का दिन अवसर हमें याद दिलाता है कि माँ का प्यार जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, जो चुपचाप संभालता है, हिम्मत देता है और हर मुश्किल में साथ बना रहता है। मॉरिशस के रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा नाम इवाको ग्रुप अब रिसीवरशिप के तहत कपमाहिना प्रोजेक्ट, डेरी और गंभीर आर्थिक दबावों से प्रभावित कंपनी ने कम फाइनेंसिंग, बैंक समर्थन की कमी और अस्थिर करने की कोशिशों को संकट की वजह बताया। सब्सिडी पर रखे गए आटे और चावल के अवैध निर्यात मामले के बाद सरकार नियम सख्त कर रही है, मामला फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को सुपुर्द। विदेश में दुनिया के युद्ध और संघर्ष वाले इलाकों में यौन हिंसा के बढ़ते मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता। बाहों से बच्चे को लपेटे, सीने से लगाए, हमें गर्माहट देती है माँ। कष्टों से हमें बचाती हुई, हंसती हुई हमें बहलाती है माँ। आज का दिन उन्हीं को समर्पित है जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते नहीं थकते। माँ वो अनमोल रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्यार, सुरक्षा, संस्कार देती है। दिन की शुरुआत उनसे होती है, रात का अंत उनसे होता है। उनकी ममता, त्याग और समर्पण हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैं। डांट कर, बहला पुसला कर, प्यार करके माँ हमें समझाती हैं, जीना सिखाती हैं, आगे बढ़ना सिखाती हैं। मातृ दिवस के इस विशेष अवसर पर हम सभी माताओं को नमन करते हैं, सम्मान और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने प्रेम से हमारे जीवन को संवारा है। सभी माताओं को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट पूजा सुकालू की आवाज में।
1: माँ, ओ मेरी माँ,
2: तू मेरा लाडला।
3: माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, वो उसे बोलना, चलना, अच्छे बुरे का अंतर समझाना और जीवन के मूल्यों को अपनाना सिखाती है। बच्चे के सुख दुख, सफलता असफलता और हर चुनौती में माँ हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है।
4: तू कितनी

0: परिवार में माँ की भूमिका केवल बच्चों तक सीमित नहीं होती, वो पूरे परिवार को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अपने पति के साथ मिलकर वो परिवार की नींव को मजबूत बनाती है और घर में प्रेम, सम्मान और सामंजस्य का वातावरण बनाए रखती है।
1: वो सुना हो लड़का जब बोल दे या जो का जीवन अच्छा लगता कपार दुखाता उदिन माँ के जनिया नींद नहीं लगी रात की तनी सन पोता बुआ पर हाली से पूछी कुछ खैले बेटी बेटा तनी सन कुछ खैला कपार दुखाता कोनो दवाई पीला एगो माँ के दिल होकर आवाज निकला था उफुफमाल नहीं रही हो जन्म दिल बाबू जाना था हई धरती जो ना कितना कुछ संभालेवेलन।
0: सास और ससुर के साथ एक माँ का रिश्ता भी परिवार की एकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वो उनका सम्मान करती है, उनकी देखभाल करती है और उनके अनुभवों से सीख लेकर परिवार को आगे बढ़ाती है। इसी प्रकार देवर और ननद के साथ भी माँ का व्यवहार परिवार में अपनापन बढ़ाने में सहायक होता है। ये केवल खून का रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास, सुरक्षा, त्याग और अटूट प्रेम का संबंध है।
2: चंदा ने पूजा तारों से, तारों ने पूजा हजारों है, सबसे प्यारा कौन है? मामा, मेरी मामा।
0: बच्चे बड़े हो जाए, अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, लेकिन माँ का स्नेह और चिंता कभी कम नहीं होती।
3: उड़ा गुलाल माई तेरी चून
0: मातृ दिवस हमें याद दिलाता है कि माँ का योगदान अमूल्य है। ये अवसर हमें उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक सुंदर माध्यम प्रदान करता है।

0: अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। मॉरिशस के रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा नाम एवाको ग्रुप अब रिसीवरशिप के तहत आ गया है। मामले के केंद्र में है कपमा लोहे का उसका प्रमुख प्रोजेक्ट कपमा हिना, जो देरी और गंभीर आर्थिक दबावों से प्रभावित हैं। हालांकि एवाको इससे केवल कर्ज से जुड़ी गिरावट मानने से इनकार कर रहा है। इन्हीं आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: एवाको ग्रुप वर्तमान में रिसीवरशिप के अधीन है। ये कार्रवाई सिल्वर बैंक, जो खुद वर्तमान में प्रशासन के अधीन है और SBM के अनुरोध पर की गई है। इस पूरे मामले के केंद्र में ग्रुप की प्रमुख परियोजना कप मारीना है, जो वर्तमान में देरी, वित्तीय संकट और प्रोमोटर उसके बैंकों तथा निवेशकों के बीच आपसी विश्वास की कमी से बुरी तरह प्रभावित है। एवाको के अनुसार शुरुआत में स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी। ग्रुप का दावा है कि जून 2023 तक वो एक बड़े मुनाफे में चल रहा था, लेकिन उसी वर्ष के अंत से मुश्किलें बढ़ने लगीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शिकायत में एवाको ने स्पष्ट किया है कि उसने 1.75 बिलियन रुपए जुटाने के लिए एक बीमा समूह की संस्थाओं को नियुक्त किया था। इस राशि का एक हिस्सा 2019 में जारी किए गए बॉन्ड्स के रिफाइनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाना था, जबकि बाकी बच्चे रकम का उपयोग कप मारीना परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए होना था। एवाको के अनुसार SBM को भी इस पुनर्वित्त प्रक्रिया में लगभग 400 मिलियन रुपए का योगदान देना था, लेकिन 2023 से बातचीत की गति धीमी हो गई। 2024 में जब ग्रुप की जरूरतें और बढ़ गई थीं, तब एवाको का दावा है कि उसे 1.5 बिलियन रुपए के बॉन्ड जारी करने की आवश्यकता थी। हालांकि SBM ने कथित तौर पर इस राशि को सीमित करके 650 मिलियन रुपए कर दिया। समूह के अनुसार ये रकम उसके कैश फ्लो को स्थिर करने और कप मारीना परियोजना को जारी रखने के लिए नाकाफी थी। एवाको का कहना है कि इसके बाद फंड बहुत किश्तों में और रुक रुक कर जारी किया गया, जबकि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी। ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि एवाको को 2024 में MIC से 100 मिलियन रुपए की राशि मिली थी। अपनी शिकायत में एवाको ने आंतरिक रूप से अस्थिर करने के एक पहलू का भी जिक्र किया है। समूह ने विशेष रूप से अपने एक पूर्व अधिकारी और कुछ तीसरे पक्षों पर गोपनीय जानकारी का उपयोग करने, प्रमुख कर्मचारियों को अपने पाले में करने का प्रयास करने और ग्रुप के प्रति लोगों के विश्वास को कम करने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में SBM ने कहा है कि उसने अपने जमाकर्ताओं और सभी संबंधित पक्षों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए हैं। जहां तक एवाको को रिसीवरशिप में डालने के फैसले का सवाल है, SBM का कहना है कि इसके लिए एक बेहद सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके दौरान विभिन्न विकल्पों पर बारीकी से विचार किया गया। अंत में SBM ने स्पष्ट किया है कि वो एवाको समूह की परियोजनाओं से जुड़े प्रॉपर्टी बायर्स की चिंताओं से पूरी तरह वाकिफ हैं। बैंक ने आश्वासन दिया है कि वो अपनी जिम्मेदारियों और लागू कानूनी व नियामक बाधाओं के दायरे में रहते हुए संभावित समाधानों पर विचार कर रहा है।
0: तो आज है मातृ दिवस, वो पहली धड़कन माँ जो बच्चे के आने से पहले ही उसके जुड़ जाती है, वो पहला स्पर्श है जो बच्चे को प्यार और सुरक्षा देता है। माँ प्यार का सबसे सच्चा नाम, त्याग की सबसे बड़ी मिसाल, हर मुश्किल में अपने बच्चों की सबसे बड़ी ताकत। उम्र चाहे उसके चेहरे पर झुर्रियाँ ला दें, लेकिन उसकी दुआओं में हमेशा सबसे पहले अपने बच्चों का नाम होता है। आज मातृ दिवस के इस खास अवसर पर हम मिलते हैं दो ऐसी माताओं से जिनकी कहानियां अलग हैं, लेकिन दिल में एक ही एहसास, अपने बच्चों के लिए प्यार, हिम्मत और पूरा समर्थन। आशिता रघु की रिपोर्ट।
2: कौचे की 99 वर्षीय दादी फुलवंती पैम समय की झुड़ियों में छुपी हुई एक पूरी सदी की जीवंत कहानी।
3: कोई कोई चोरी नहीं करिया, नहीं रही खाई के तो गुया बटोरे खा लिया। कोई के खेत में कुछ हो रही चोरी नहीं करिया, कबो कने कोई आई हम गोराना देवे आखिर कुछ कह दीजिए वह कंधा कुछ कबार के खेबा, ये सब नहीं नहीं रही खाई के हमके बोलिया हम तो देखा उपाय कर।

0: कुंज करब सेवा कोई के चोरी नहीं। आज ले इतना दिन हो गए बेटी, आज ले मलेगा कोई नहीं बोला चोर।
1: 13 बच्चों को जन्म देने वाली दादी के आज 7 बच्चे जीवित हैं और हर बच्चे पर उन्हें उतना ही गर्व है जितना एक माँ को अपने पहले बच्चे पर होता है। उनका हाथ अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना के लिए थकती नहीं।
0: माँ वाले मुझे घर मुबारक।
2: हम बहुत खुशी रहा, खुशी रहा, इतना दिन जिया था, मैं बहुत खुशी रहा।
3: वहाँ संगीत रहा था इतना दिन, वहाँ जब ढेर को सीख ली कैसे आदमी से बचावल जला, कैसे आदमी से जियल जला।
0: इतने करे के चाहे ला कि कोशी हो माँ, माँ का हो माँ जो है तो धरती माँ हो, तब धरती फाटेला कोई नहीं जाएगा, तू प्रकार के माँ हो। भाई धरती मेरे माता पिता तू ही हो, तू ही हो सखा, तू ही बंधु, तू ही सब कुछ हो। माटी को ओढ़ाना, माटी बिछाना, माटी करना सिराना, ये माटी की है हमने के शरीर जो कुछ हमने के सोना चांदी के नहीं बना ला, ये माटी के बना रही हमने शरीर जो बात ये माटी की है।
1: संघर्षों के बीच भी उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ रोटी नहीं संस्कार भी दिए।
0: हमारे 12 को लड़का मेरी आज कोई हमारे दुआरी पर नहीं आया बोले कि तू बेटा इसे कहीं रख, हाँ बेटा बड़ा बेटा बा, आज ले कोई हमारे लड़का को लोग नहीं बोले बा नेपोट किसान ला कि नाशो मावा आवा मामा एंड लोग

0: कहते हैं अगर देवकी माँ ने जन्म दिया तो यशोदा माँ उससे भी बड़ी पालन करने वाली, और इसी भावना को जीवंत कर दिखाई है यूनियन पॉ की शीला सिब्ले ने। वे चार बच्चों की माँ हैं, लेकिन उनके और उनके पति का हृदय सागर से भी विशाल है। 19 वर्षीय अलीशा, जो बचपन से ही पारिवारिक स्नेह व ममता से वंचित रही, आज पिछले एक साल से शीला को माँ बुलाती है।
1: Là, on trouvait comme si il y avait la joie dans la case. Oui, il y avait la joie dans la case. Comme on part rouler, on dit à le suivant cours, on fait des suivants cours, coiffeuse. Mais quand arrive là, on part trouver Alisha, on téléphone, on dit écoute, toi, fille.
0: शीला के लिए अलीशा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी घर की लक्ष्मी है। अलीशा के लिए भी माँ शब्द का सही अर्थ शीला में ही मिली है। माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो भी है जो थाम ले, सवार दे और बिना किसी शर्त के प्रेम करे।
2: जनता के लिए सब्सिडी पर रखे गए आटे और चावल के अवैध निर्यात के मामले के बाद सरकार अब नियमों को और सख्त कर रही है। संदेश साफ है, जनता की राहत के लिए दी गई सुविधा का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। मामला फाइनेंशियल क्राइम कमीशन को जांच के लिए सौंपा गया है, जबकि व्यापार मंत्रालय नए नियम तैयार कर रहा है। माँ और शिशु की देखभाल सिर्फ दवा या सलाह का विषय नहीं, ये स्पर्श, सुकून और भरोसे की बात है। इस सोच के साथ ख्रिस्टी वाइटलिंगम पौधों के गुणों और बेबी मसाज की पारंपरिक विधि को जोड़कर परिवारों के लिए एक कोमल पहल कर रही हैं। कोरिया और नेदरलैंड्स में प्रशिक्षण लेने के बाद वे अपनी देखभाल तेल खुद तैयार करती हैं, ताकि माँ और बच्चे दोनों को प्राकृतिक तरीके से आराम, सुकून और अपनापन मिल सके। जिला विस्तार रिपोर्ट में।
3: क्यूपिप में ख्रिस्टी वाइटलिंगम का अपना एक छोटा सा बगीचा है और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पौधे एवं जड़ी बूटियाँ हैं, हर एक की अपनी अहमियत। वे इन सभी का इस्तेमाल किसी खास मकसद के लिए करती हैं। मानव शरीर पर इनका असर मूल्यवान है। ख्रिस्टी ने दक्षिण कोरिया और नेदरलैंड्स में

0: हवालिज्म के क्षेत्र में पढ़ाई की। आज वे इन्हें तोड़कर इनका इस्तेमाल तेल में करती हैं। ये साधारण तेल नहीं रहा, बल्कि इससे शिशुओं को बहुत फायदा होता है और साथ में माओं को भी। शिशु को जन्म दिए जाने के बाद बहुत राहत मिलती है।
1: Avec l'expérience, je me trouvais que les mamans, même les bébés, bisaient un petit peu plus soi. Et faire les mamans retournent vers la nature, je trouve ça tellement important. Et on a un petit soin qui nous capable de faire nous-mêmes. Bien sûr, la vie médicale reste la vie médicale, mais un petit soin nous-mêmes qui nous capable d'apporter, qui peut faire nous wellness. Oui, après, les huiles sont personnalisé. C'est une des huiles très doux pour les bébés. Mettre lavande, camomille, tout pour amener le wellness du bébé. Pour la maman, les hommes font ce massage cheveux, sur la tête, ce scalp, tout ça. Moi, l'eau romarin, moi, l'eau ben, ça fait apaisante, même lavande sur les cheveux, de l'huile d'avocat. Après, elle a comme fait ce bain scrub, une bain scrub qui me prépare avec Epsom salt, Himalayan salt, une fois bain pierre qui me met dans les huiles, me préparer. La plupart du temps, quand une maman sortit ici, elle dit à moi, ça m'est un petit bizarre.
0: वे जिन लोगों की मदद करती है उनमें है मेलिना। उन्होंने हाल ही में एक शिशु को जन्म दिया है और वे क्रिस्टी को देखने आई ताकि कमजोरी दूर हो और ऊर्जा मिले, खासकर शिशु को जन्म देने के बाद थकावट दूर कर सके।
2: Pour madame quand il finit à coucher, il est important pour lui prendre soin de ce lego pour premièrement pour lui retrouver lui-même. Il a fait un petit pédicure, il a fait un semaine soin visage, un massage. Mentalement aussi, il vient aider moi parce que dans la nuit, il s'est levé pour guider bébé, faire les bois, tout ça. Mais à travers ça, madame, on retrouve moi-même.
1: Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, raconte-moi.
0: अपने इस अनुभव की बदौलत क्रिस्टी मॉरिशन परिवारों को फिर से जड़ी बूटियों और प्रकृति की ओर बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। उनके लिए प्रकृति और मानव स्पर्श सर्वोत्तम उपाय है।
3: विदेश की खबरों में, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक हादसा आया हुआ है। 7 पर्यटकों और एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई। उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से बचाव कार्रवाई चलाई। बताया जा रहा है कि ये लोग डलहौसी से बर्फ देखने जा रहे थे। फुटबॉल में यूरोप की सबसे बड़ी रात पर पेरिस सेंट जर्मेन ने फिर कमाल कर दिया। एक रोमांचक फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत हासिल की। लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग ट्रॉफी अपने नाम उसने की। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: यूरोपीय कप प्रतियोगिताओं के इतिहास में पहली बार किसी फ्रांसीसी क्लब ने लगातार दो बार चैंपियंस लीग कप अपने नाम की है। कोच लुई एनरिके को गौरवान्वित करने के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
5: De très haut niveau contre l'un des plus difficiles adversaires, spécialement s'il marque le premier but.
4: हालांकि बुदापेस्ट में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में आर्सेनल के खिलाफ पेरिस सेंट जर्मेन के लिए कुछ भी आसान नहीं था। खेल की शुरुआत में ही विरोधी टीम ने पहला गोल दाग दिया। मैच के 6 मिनट बाद ही आर्सेनल ने एक बेहतरीन जवाबी हमला किया और काय हावर्ट्ज़ ने एक चौंकाने वाला गोल कर दिया।
6: Ça a été difficile. Toute la saison a été difficile. On a dû gérer beaucoup de choses, mais finalement on est encore vainqueur de cette Champions League et on est tous heureux.
4: एक घंटे के कड़े संघर्ष के बाद उस्मान देम्बेले द्वारा पेनल्टी को गोल में बदलने की बदौलत पेरिस की टीम मैच में वापसी करने में सफल रही।
7: Huge moment in the final. Dembele sends rather away, and the champions are on terms.
4: स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने तक भी ये स्कोर नहीं बदला। पेनल्टी शूट आउट में एवरेची एजे और गैब्रियल मगालेस, जो मैच के दौरान बेहतरीन फॉर्म में थे, अपने शॉट्स को गोल में बदलने में नाकाम रहे। पेरिस की टीम ने 4-3 से जीत दर्ज की। 2006 और 2026 अब ये दो ऐसे फाइनल मुकाबले हैं जिन्हें आर्सेनल ने गंवाया है। हालांकि टीम ने हार कर भी

बेहतरीन खेल दिखाया। यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में क्रमशः एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस की जीत के बाद इस सीजन में यूरोपीय प्रतियोगिताओं में इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लबों के लिए खिताबी जीत की हैट्रिक नहीं हो सकी।

चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात उत्तर पूर्व पूर्वी इलाकों सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिर रहेंगे और हल्की बारिश होगी। कल सुबह भी हल्की बारिश के बाद दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 24, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्वोत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह सूर्योदय 6:38 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

0: जाते जाते मातृ दिवस पर उस स्नेह का नमन जो हर जीवन को चुपचाप संभाले रखता है। समाचार टीम की ओर से आप सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं। देश विदेश की खबरों के साथ ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। स्कूल लेन लावेनिया सैंपिया में 72 साल की 72 इयर्स ओल्ड की श्रीमती देवंती धनवा जो माला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान स्कूल लेन लावेनिया सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। रॉ रोड प्लेंडी पापाई में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ओमिला बिसुन पैदाशी नाम मेहंदी दिन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति रमेश बिसुन के मकान रॉ रोड प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनुस थियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। B15 NHDC रामजीत लेन बालीसन रोसपेल में नब्बे साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अंजिले नारायण असामी रेड्डी जो माइली के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी बेटी वेदिता और मुगम के मकान B15 NHDC रामजीत लेन बालीसन रोसपेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मायाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। बालगोबिन रोड मालेगा सैंपिया में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड के श्रीपुरन नक्चेदी जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और आले भैयों रोड वाकवा रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 उनके बेटे विशाल नक्चेदी के मकान बालगोबिन रोड मालेगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयों का स्थल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

周已经走到了尾声，下面就让我们来让音乐时间用一些温柔的旋律陪我们度过这个从周末走向夜晚的过渡时光。

నిరంతరం నీ చంటి పాపల్లే ఉండాలి నేను నాళకే.

0: बज ले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: समस्त श्रोतागण को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। इस प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन है। श्रोताओ, ईश्वर वही बसते हैं जहाँ सच्चाई, प्रेम और श्रद्धा का प्रकाश होता है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेंगे।

श्रोताओं, ईश्वर इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और पालनहार माने जाते हैं। वे हर जीव, हर कण और हर हृदय में विद्यमान हैं। ईश्वर का स्वरूप प्रेम, दया, सत्य और करुणा से भरा हुआ माना जाता है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे आपके चंद प्यारे प्यारे भक्तिगान इस कार्यक्रम के अंतर्गत।

श्रोताओं, मनुष्य जब सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे आत्मिक शांति और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। ईश्वर हमें अच्छे कर्म करने, सत्य के मार्ग पर चलने और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा देती है।

श्रोताओं, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। प्रार्थना और भक्ति मन को सकारात्मक बनाती है और जीवन में आशा का प्रकाश लाती है।

श्रोताओं, ईश्वर को पाने का मार्ग केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम, दया और मानवता भी है। तो चलिए श्रोताओं, भजे प्रभु का नाम कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारी तकनीकी सहायिका अंजू को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

यात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से खैर व आफियत से हैं। आइए महफिल शब की इब्तिदा इस हमद से करते हैं।

हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हाजी से मिलो तो उसे सलाम करो, उससे मुसाफ़ा करो और उससे कहो कि तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, क्योंकि वो अपने गुनाहों से बख्शा हुआ वापस आया है। इस हदीस से मालूम होता है कि हज से वापस आने वाले शख्स का मकाम बहुत बुलंद होता है। लोग उससे दुआ की दरख्वास्त करते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत हासिल करके लौटा होता है। ताहम हाजी को गुरूर से बचना चाहिए और आजजी अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि असल कामयाबी अल्लाह ताला की रज़ा है।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।

सब संगत लोग अजय प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो आज मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सब संगत लोग अपनी स्वागत करते जा। आज है दिमाग की रात 31 मई साल 2026। सब संगत लोग का स्वागत करते अभी से लेकर रात के 11 बजे प्रस्तुत बात लोग के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। ये प्रोग्राम चली दोनों चैनल पर रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। और आज हनी मनावते सब मदर्स डे मातृ दिवस हैप्पी मदर्स डे सब माता लोग के और हैप्पी फादर्स डे सब पिता लोग के भी हैप्पी मदर्स डे हैप्पी फादर्स डे। तो आशा करते हैं कि जो त्यौहार है माँ के त्यौहार अच्छी तरह से मनावत हुआ अभी फिनी नहीं होलबा अभी रात के 9 बजे बा और अभी से 11 बजे ले त्यौहार हुआ करते रहिए और साथ देते रहते जितना मामा लोग हम की सुनता जितना माता लोग सुनता जितना माँ लोग सुनता चाची दादी नानी लोग सब कोई जो माँ स्वरूपा हवन सा तब सब कोई के हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। और गीत तो लोग के नाम चले एक साथ सुने है गीतवा

और माँ बाप के दिल नहीं चाहे दुखा के कहे कि माँ बाप भगवान के दूसरा रूप है, हाँ कि नहीं। और अगला गीत जो है बहुत ही प्यारा सन गाना, माँ बाप के लाडला बेटा। हाँ तो बहुत ही प्यारा सन गीत है और है गीत तो चलावत इस माधव की ओर से, माधव की ओर से ओकर मामा तीना के बता हैप्पी मदर्स डे, ओकर पापा कवि के हैप्पी फादर्स डे और दादी माला पुपुरीना। और है गीत साइलेंट की ओर से चली ओकर माँ रीता सीतालू के हैप्पी मदर्स डे, साइलेंट बोला था अपन मामा के तो साइलेंट साइलेस रानी स्वस्ति अनुष्का परी सब सीतालू परिवार रीता सीतालू के बता हैप्पी मदर्स डे। और संगीता अमीरन वो भी रीता सीतालू के बोलता हैप्पी मदर्स डे। और संगीता अमीरन रहेरा लाहौजा ओपन माँ के बोलता हैप्पी मदर्स डे को माँ रहेरा कस्टेल तो सब मामा लोग के नाम हैप्पी मदर्स डे, माति दिवस की ढेर मना शुभकामना और प्यार। और बड़ी सी जो माँ जो है ये बहुत कदील जो है बहुत बड़ा है बहुत विशाल है, ये अपन लड़का खातिर सब कुछ सकेला करे। यही माँ जो है कभी काली और चंदी के रूप धारण करके अपन लड़का के हर मुश्किल से बचावेला। तो सब माँ लोग के बारम्बार प्रणाम बा। अच्छा चला सुनब जाए गीत माँ बाप के लाडला बेटा।

0: स्पेशल मदर्स डे।
1: हाँ तार फेत मामा बा सब कोई नाचता गावता झूमता धेर कोई पन सास ससुर लगे बा तो धेर कोई पन माँ बाप लगे बा और भी रात के जश्न हुआ था नाच गाना धूम धड़ाका क्या बात है। ऐसे नचते गई रही उनके साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और आज की रात गमत की रात प्रताप सिंह सितालू के संगे रात के 11 बजे ले हे हे। और बोले सब माँ जननी है माँ जन्म देवेला माँ पालन करेला पोषण करेला और माँ के देवी के रूप देवल करवा दुर्गा माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ हमने की हिंदू धर्म ग्रंथ में वेद उपनिषद में दिख बा तो माँ के महत्वपूर्ण स्थान बा तो एगो लड़का खातिर सबसे जरूरी है ओकर माँ अपन माँ के कबो ना भूलैया पर विडम्बना की बात यह है कि जेकर माँ बा तो उन्हें गदाना था जेकर माँ नहीं बा तो रोवे के पड़ता पर चेहला जब माँ बाप हमने की आंखों के सामने जिंदा बा तो चेहला लोग की देखभाल करेगी हाँ कि नहीं तो माँ बाप अपन लड़का के देख से देखभाल करेला लड़का लोग भी जब बड़ा हो जलन से तो उन लोगों के चाहे अपन माँ बाप की देखभाल करेगी हर लड़का के ये वो कर्तव्य है। तगला गीत माँ पर भी है नीरज गुप मधु गहले वने गीतो है गीतो चलाओ तीसा खासम खास संजय बिहारी की ओर से कल पत्नी सुरेखा पिता कुशल बहू बेटी रिंकू दामाद और सब परिवार के लिए और सब बिहारी परिवार है ऊंचा राविश मंजू कैसे भैया राविश मंजू की ओर से कर माँ की बोलता हैप्पी मदर्स डे राविश मंजू रहेला मोहताबा और है गीत चलावत ईसा संदेश लता अंजलि शिवानी और सब भैरव परिवार के नाम और है गीत खासम खास चलावत ईसा दुनिया भर में जितना माँ लोग हमने की सुनता जितना दादी लोग माँ लोग हमने की सुनता है गीत और लोग के नाम हैप्पी मदर्स डे बन फैद में बोला था एक बार फिर ढेर माना शुभकामना ढेर माना प्यार सब माँ लोग के नाम।

माँ बाप के लाडला बेटा और माँ बाप बरद बड़े ही लाड प्यार से बन लड़का लोग के पालन पोषण करेला हो कि नहीं, और बड़े प्यार से माँ बाप लोग लड़का लोग के पोसेला, लड़का लोग के बड़ा कर पढ़ावेला लिखावेला। तो परिवार सुखी परिवार रहेला जहाँ पर लड़का लोग के माँ बाप दोनों के प्यार मिलेगा। कोनो कोनो परिवार ऐसा बनी देख रहे हैं इसे समाज में कि जहाँ पर बाप नहीं बा या माँ नहीं बा, कोई के बाप मर गल बा या कोई के माँ मर गल बा, या कोनो केस में ऐसा बा कि माँ बाप जीवोसे हो गल बा, तो एक बुरा प्रभाव लड़का लोग पर पड़ेला। एगो लड़का अच्छी तरह से बढ़ेला जब ओकर माँ बाप दोनों के ओकर प्यार और सपोर्ट मिलेला। तो आज तो मदर्स डे मनावते इसे सब मामा लोग बड़ी खुश होवन सर। तो अगला गीत चलाओ सर जिमी दुखिया के ओर माँ खातिर गीत हैप्पी मदर्स डे। राजमन्ना सुदेश जसवा, सुदेश जसवा की ओर से राजकुमार युकर माता जी खातिर गीत, राजमन्ना की ओर से सब माता लोग के नाम गीत मांगत हवन बहुत बहुत प्यार के साथ। और जितना माता लोग सुनाता है मॉरिशस में दुनिया भर में, तो गीत लोग के नाम भी इंदिरा चिंतरा माता जी गीत और खातिर और तोहर सब परिवार के नाम अगेमा जी हाँ गीतवा गैलन संतोष महादेव। कुछ समय पहले गीत सुनला वो गीतवा रहल मंगल राम सिंह के गावल ठीक बा, और अब सुनबा संतोष महादेव के गावल गीत अगे माँ। बड़े प्यार से बोला था अगे माँ, बड़े दुलार से बोला था, तू भी अपन माँ के बोले अगे मो कैसे अच्छा हुई ना माँ। माँ बाप बात सब कुछ बा, माँ बाप नहीं बात दुनिया अंधार भैया।

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
2: स्पेशल मदर्स डे।
3: हर साल के मई महीना के अंत में यानी कि मई महीना के अंतिम दिवस की ये त्यौहार मनाया जाए समाती दिवस था जलित होते मेह दिवस की रात 9 से 11 बजे ले भोजपुरी चल का प्रोग्राम मदर्स डे स्पेशल और मात्र स्पेशल ही रहेगा कहे कि माँ जो न था वो एकदम महान है माँ के पैरों तरे स्वर्ग बा तब माँ के जो प्रवृत्ति

दृष्टि है इस जानवर में भी देखल गल बा। जैसे गो मुर्गी अपन चूजा लो के निमन से गरम से रखेला और कोनो जाला को चूजा के पकड़े तो मुर्गिया लाबिक से देवेला घानी। और एगो बकरी भी जब बच्चा दिलक बा तो जब बकरी के बच्चवा के देख बा छुई बा तो मयुआ हला करेला हो कि नहीं। और कुत्ता भी जब बच्चा देवेला देखिए ना कैसे जोली से अपन लड़का लोग के दूध पियावेला तो जाके बच्चवा के लिए बात वाई काटे हैं काहे के वो सोच रहे तो बच्चा के चोरी कर जाते हो ना। हो ये ममता है यही माँ के प्यार है। एगो माँ अपन लड़का के रक्षा करेला चाहे कोनो भी हो चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो वो अपन लड़का के कबू पूरा नहीं चाहेला। और हमने की धर्म ग्रंथ में देख रहे हैं इसे कैसे देवकी भी माँ कह लेलन यशोदा भी माँ कह लेलन कई कई भी माँ कह लेलन। और देवकी तो जन्म दिलक कृष्ण भगवान के पर यशोदा ओके पोस के परा कर लग। और दूसर बगल रामायण में दिखी रहा सर कई कई सुमित्रा ये लोग राम भरत के पालन पोषण कर लन सर। और कई कई चाहे कितना भी बुरा क्यों न रहल पर राम हमेशा कर आदर करता है। तो माँ और बेटा का जो रिश्ता है ना ये बहुत खास है। जब पर गो माँ अपन लड़का के बन सीना से लगा के अपन लड़का के बन दूध पियावेला या अपन एगो माँ अपन लड़का के दुलार करे रहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बहुत प्यार से आशीर्वाद देवेला। और ये जो दृश्य है जैसे यशोदा और कृष्ण भगवान के दिखब सके से कृष्णा बोलेला मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। माखन खा ले लग बा मुँह में लगल बा माँ से बोलता माँ हम माखन नहीं खेले। और माँ भी कुयो नहीं होगल बोलता हाँ तूने माखन नहीं खायो। लड़का लोग तेरे मुँह में माखन पो दिलक अरे अमर लल्ला अरे अमर लड़का। तो देखे ना ये माँ और बेटा के जो प्यार है जो अपनापन है तो बड़ी झोली है दिखे के। तो अगला गीत जो है माँ ही पर है नीरज गुप मधु के जीवन गीतवा है गीतवा आशा जानू कि माँ कुमारी खातिर शुभम है गीतवा खातिर है गीतवा में शुभम की भी नाम जोड़ ही जा। और दीदी भारती जीजाजी और नेफ्यू शिल्पा प्रशांत शिवालक अपन माँ राधा शिवालक के बोलते हैं हैप्पी मदर्स डे। चंपा और देविका राम गतिया और लोगों मदर्स डे मनावत हवन सर देवाना प्यार और आशीर्वाद। ललिता कुशल हवन त्रियोले से है गीत अनिता लाल जी खातिर जो रहन मोदल बेयर और अनिता हवन फ्रीकॉन फ्लैग से आफेज हवन सैंपिया से तो चले एक साथ सुने माँ पर गीत नीरज गुप मधु की आवाज़ में माँ।

रात के समय बाद चारों घन घोर अंधेरा छेलक बार ठंडा ठंडा हवा बहता ठंडा करता बहुत छोटी तरह का प्रोग्राम सुना था तू हमने के स्टूडियो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस से या एमबीसी के रेडियो जोन हम मौका में तेरे को हमने के साथ देवत नाचते वन गावत वन झुमते वन अब हम तोरा एगो एगो एगो एगो, एगो जोक सुना त अच्छा है हंसे के बोलने से डॉक्टर लोग बोले ला अच्छा है हंसे के जितना हंसब तो हंसते उतना अच्छा रही तो ये प्रोग्राम है भोजपुरी तर का चलेगा रोज के लेंदी से लेके दिमाग से रात के 9 से 11 बजे ले राजा दिमाग के रात अजय प्रताप सिंह सितालू के संगे एगो जोक सुनाओ पे तो एक दिन एगो छोकरा रहा तो अनपढ़ हल्का बोले कुल नहीं कर रहा तब कारो में काम करी तो ओकर घाट जोन घाट से कारो में काम करता घाट गरम हो गल एउटा आयो मर घाट के लाफिए लग गल बा उ का करला घाटवा लेके गल डॉक्टर लगे अब डॉक्टर के बताया डॉक्टर जी देखा ना मर घाट के कैसे कैसे गरम हो गल बा के लाफिए लगल बा अब डॉक्टर तो बोली का बोला भी तो अनपढ़ आदमी नहीं जाने लग कैसे स्पीक करब तब बोले जाने ला बाबू एक लाफिए लगल बा ना जाके पानी में डाल दिया ये ठंडा हो जाए ठीक हो जाए तो सच्चे के अदमिया गल घरे थे घाट के पानी में दलक तो घाट ठंडा हो गल बड़ा खुश हो गल तो और एक बार जो है दूसर बार होकर घर में कोई दादी माला धोल रात की दादी की जब बड़ा जोर लाफिए लगल बा अब छोकरा तो पारिश करे था कैसे दादी की जाए दुखते लगे तो सोचलक देखा ना हमार गात माला धल तो के पानी में अच्छा हो तो दादियों के पानी में डाल दिला तो वह अच्छा हो जाए वो का करलक और द्वारी में एगो दौपी रहल अब छोकरों का कहलक दादी की जाके दौपी में धकेल दिलक अब जब धकेल दिलक तो वहाँ लालमिया रह तो दादी के फुसदौन जो पनिया में इतने तरह का फुसदौन झलकता तो ये सोचता को दादी अच्छा हो गल लड़का का सोचला कि उस तरह घाट के पानी में डाली तो अच्छा जाए जब दादी के फुसदौन चमकता तो ये सोचता दादी मुस्कुराते हैं तो दादी के प्राण चल गए भैया हाय लड़का बुरबक्का कर दिलक हो

यज्ञ गीत चलावत है सेटोबे एसएसएस के सब स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्तों के नाम वहाँ के रेक्टर निकी नाम भी और मिसेस दीना के नाम जो अंग्रेजी पढ़ावेला और है गीत चली वीना कुपू सामी के नाम और सब लेकालो खातिर सुलमा दुखी है गीत हो रो खातिर तो सब परिवार खातिर विश्वानी बाबूलाल है गीत हो नाम और तो सब परिवार के नाम

0: तो सच के भोजपुरी भाषा बहुत जोरी बा और बहुत अच्छा लगे रहा भाषा बोले के भाषा बचाए के बड़ी जोरी है भोजपुरी भोजपुरी भाषा बचाती रही और हमने की मान और शान बढ़ाती रही और अभी रात के समय बा और ढेर कोई हमके साथ देवत है वन थ्योली से सब हर को परिवार लोग हेलो हर को परिवार कलकत्या परिवार लोग भी हमने की सुना था तगला गीत लोग के नाम ड्रैगोस्टिन ते नमस्ते और गीत गैले हवन कृषि और नांसी और जान ले सक कि रात के समय जो है रात के समय भी काम होला ढेर मना जगह में जैसे पुलिस स्टेशन में फायर सर्विसेज में कॉल सेंटर में साशोमितियों में सगरों काम हुआ था तो जितना कोई काम करता अभी बोंको आज बोला था इस ढेर कोई अभी रेपेत मामा करते बा नाच गाना धूम धड़ाका मस्ती और मामा लोग अपन निकालो खातिर अच्छा अच्छा तगारी पकड़ दे उन सज ढेर कोई अपन सास ससुर लोग भी बात बीस ऐसे हंस से गाते रहिए हमने के साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और जितना कोई नींद नहीं लगा था तो गीत तो लोग के नाम नुमा नुमा ये चल अब नाचब से संगे संगे आली एक दो तीन स्टार आई देखा ओहो आहा हाय देखा हाय देखा ओह आहा नमस्ते हो सस्ती आकार बनक कम हो
1: सलाम वालेकुम
0: सलाम वालेकुम
1: नमस्ते

और तब ऐसे ही नचते गाते रब सा ढेर कोई नाचा था गावत आदमी के संगे संगे नमस्ते हो ला ला ला ला कैसे जोड़ी की तरह ना और विषय कैसे ही नचते गाते रब सा भोजपुरी तरह का प्रोग्राम एमबीसी रेडियो पर रात के 11 बजे दी और अब अगला गीत चलाओ अब सा समधी समधी के लगल बड़ी हिचकी सौंधे मौसम में उरित के पानी खोजेरा अब सौंधे मौसम में उरित के पानी काहे खोज रही हम नहीं जानते और उरित से यादल उरित की तकारी हमने की माँ दादी लोग जब उरित की तकारी पकावे थे सन सुंधा मौके उरित के बनेरा उरित के सकब मुतर में डाल के पकाए उरित के मसाला में पकाई बोगाए में पकाई उरित के बिंदाई भी बनेरा और उड़ीद तार के बीच सकबा खाई और उड़ीद के परेरा बुई करे के झोली से बुई करते और लाल हो जला तब के तैयार करियो का सब्जी पीस डाल के हाँ कि नहीं तो चला अगला गीत सुनब जा समधी समधी के लगल बड़ी हिचकेगी तो चला दे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के हमने के सब बी हनर्स फ्रेंच के स्टूडेंट्स लोग के नाम एम ए फ्रेंच स्टूडेंट्स और पी एच डी मेमर जितना स्टूडेंट्स लोग पी एच डी में एनरोल हों से पी एच डी फ्रेंच यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस फैकल्टी ऑफ सोशल ह्यूमैनिटीज तो गीत लोग के नाम समधी के लगल हिचकी जरा बच के रहिए अभी कहने के हिचकी

कि लगातार तो सुन पानी पी लिया हो है कि तो आन चाची सोनिया खातिर हवन मदाल में से चाची सोनिया है कि तोर खातिर चल एक साथ नाचे गावे झूमे कमर वर डोलाए चाची चित्रा हवन मदाल में से कर घर उला और सबका परिवार ज्ञान हवन कर घर उला चित्रा के उसे ज्ञान के और ज्ञान के नाम

अफसाने बॉस में उर्द की पानी का एक खुजला आपका सर आपकी नशा में बाकी का तो सौने मौस में उर्द की पानी खोजता। अब एक दो दिन को चुटकुला हो जाए तो एगो महिला रहल तो अपन पति से ढेर प्यार करे तो अगर पति जो नहीं दिन ओकर देहांत हो गल तो बेचारी फूट फूट के रोता काहे अंके छोड़ के चल गई दे गे हम के कर संगे जी अब गे अके छोड़ के चल गई दे गे बर भरी जवानी में दादी नानी लोग बैठल बा दादी लोग बैठा का करब बेटी ओकर समय चला जाय द तू धीरज के संगे जिए थोड़ा सुन धीरज धर के जिए सब ठीक हो जाए। तो सब कोई रोआ था मरनी उठ कर तो दूसरा दिन छोकरी का करता वो कैबिन में घूमता तो एगो छोकरा के हाथ में हाथ डाल के घूमता तो बता दादी लोग बता हाय रे हमार माँ क्या करता कि छोकरी कर पति की देहांत हो रहा छोकरा संगे घूमता वह तो छोकरिया बोलेगा कि दादी तू ही नहीं बोले रे धीरज संगे जिए के एक धीरज के संगे घूमत नहीं दादी अब काहे आमे देते हुए एक धीरज के संगे घूमत नहीं हो तू काहे आमे देते हुआ हो।

और एक गुड जोक, देखो छोकरा पर माँ बाप के लिखी गर्ल छोकरी, आगे के जमाना में अगवा लोग जाते थे, अगवा छोकरा के माँ बाप के लिए गर्ल छोकरी लगे, तो छोकरी के माँ पूछा था छोकरा से, तोहर बेटा कौन ची करेला हो, दादी उतना पढ़ल नहीं रहल ना, पूछा कौन ची करे तोहर बेटा, तो छोकरा में हमारे बेटा ब्याह कर लगबा, दादी बोले ब्याह कर लगबा, आ आलू बैगन बेचेला, ब्याह कर लगबा, बाप रे बाप आलू बैगन बेचेला छोकरा। अब दादी का जानेरा ब्याह के मतलब को चेसोदा बैगन आलू बेचेला। तो एगो छोकरा जो ना फोमसैंग कॉम्बोज करता हल, एग्जाम में हो गए तो नतीजा सर सब में क्रेडिट निकल लगबा, तो मेरे बाप क्या के बोलता पापा दो तू चीजे में चेक क्रेडिट, हम सब चीजें में क्रेडिट मेरे पापा, तो अगर बाप अनपढ़ रह नहीं जाना था इस, तो बोले हम तो के इतना मेहनत लगन से पैसा दे के तो के पढ़ाई दी लिखाई ली, तू खेजी लेके आलो वे, हम तो सोच ली तू सब में सौ निकल तो खेजी लेके आलो वे, का कर अब सब बोल तो तू काहे खेजी लेके आलो वे। अब और बाप का जाना था क्रेडिट के मतलब कि लड़का पास हो गया नहीं मन से। और एक जोक सुना जा, तो चिंगरी लोगी माफ करिए जा, चिंगरी लोग के समुदाय में शादी होता हर मोटका पानी बरसता, ये जोक का रिजल्ट सुना नहीं इसे पर संग्रह में, तो प्रताप जी आज रात की सुना देना। तो चिंगरी की शादी हुआ था, तो चिंगरी की माँ और न और दूसरा दूसरा चिंगरी की माँ बाप, एक बार है छोकरा चिंगरी होने छोकरी चिंगरी की माँ बाप लोग बा, तो सब कोई नदी में आवा था छोकरी के शादी कराई के छोकरा के बाप हो कहते जो कहते बाढ़ डिसान होल हाउ, तो सब चिंगरी कोनो चिंगरी इधर छटक गल कोनो चिंगरी उधर छटक गल। अब चिंगरी की माँ छोकरा के आवा था परछावन कर दे आरती उतारी, तो माता जी तो आरती उतार तो वह देख देखा तो हर बेटी चिंगरी वहाँ पर कहानी कहाँ लाबू में जाता। तो ही रह चिंगरी की कहानी।

ताशा कहते तो लोग खूब हंसले जा मुस्कुरावत हुआ तो ऐसे ही हंसते गईती रही है। अब एगो गीत सुनाब से गीतवा में संगे संगे नाचब से गावब से जोली छोकरी से प्यार कईला जेकर खातिर हम रोज जीला। गीतवा के गईले वन गीतवा गईले कुणाल हिरीलाल है गीत हमने चलावत विमला के नाम और रंभा हवन राजवी सेन के साथ देवतवन अजय पूनम चिंता राम हवन ऑस्ट्रेलिया से दीपा दुखी दीपा तिवारी दुखी तो कर पति केविन और बेटा आप हवन कनाडा से और जितना कोई हमने कनाडा में सुना था गीत खासम खास के नाम जोड़ी छोकरी से प्यार करीला। अरे

சங்கியே शर्माई की ना ये सब कोई छाना गाय के नाचो के क्या क्या मदर्स डे बा जोली छोकरी से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला कैसे बदला बोके कैसे समझा बोके न कोई बताए दे।

एसएमएस करा कोई बतावा कैसे का करा फोन लगावा एसएमएस करा कोई बतावा।

तकदीर, कैसे बदला बोगे कैसे समझा बोगे कोई न कोई बताए दे हमको। शुक्री से प्यार करीला जिकर खरीर हम रोज जीर, कैसे बदला बोगे कैसे समझा बोगे कोई न कोई बताए दे हमको। सब जोली जोली छोकरी लोग जितना कोई सुना था, हमने के बटरफ्लाई, हमने के तितली लोग, हमने के लड्डू लोग है गीत तेरों के नाम। जोली छोकरी से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जीरा, कैसन बाबू छोकरिया हो।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: Seven days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.
0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
3: रात के 10:12 और 1 घंटा बाबनी के तलों के संगे। जी हाँ, रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन तुस न तो एमबीसी रेडियो हम मौका में सिताई हमने की प्रसारण चताइए से हम है माइक पे तलों के दोस्त और तलों के संगतिया और जय प्रताप सिंह सितालो अक्सर तू हमने के टिकटॉक पर देखेला और अब सुन आज टिकटॉक पर नहीं है

थोड़ा सुन आज रेडियो पर आई पर टिकटक पर जरूर आवब सर को दिन पर सप्ताह खूब टिकटक पर आई सर रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर ढेर कोई हमनी के देखलक और अपन कमेंट्स भी जाकर रहा जितना कोई हमनी के टिकटक पर देखेला लोग के बहुत बहुत धन्यवाद जितना कोई रेडियो पर हमनी के सुनेला दिल की गहराई से शुक्रिया। और अब भोजपुरी तरह का प्रोग्राम जारी बा रात के 11 और यार घंटा बा तब इंद्रासन से ढोलक मंगाओ अब सर ढोलवा बजाओ अब सर चाची नानी दादी लोग सब कोई सारी कस के आवतवन बड़ा जोर नाचे हमने के संगे संगे इंद्रासन से ढोलक मंगेली। खाली ढोलक मंगेला से काम नहीं चले बेपरी लोटा बजाए के झाल बजाए के करताल बजाए के तब न सब कोई नाचे अब सर आज फिर मामा बा काहे शर्मा तो वह हो मामा पापा लड़का लोग दादी नानी चाची मामू चाची लोग सब कोई संगे संगे नाचे तर मौदार बे हमें एगो संगत्या बीबा को नाम बा रवि रवि बतवन चचा प्रताप सिंह ये गीतवा चला देना इंद्रासन से ढोलक मंगेली चलावत हो तो और खातिर और ये गीत चली विमला खातिर विमला हवन थाबुचिक से निशान सिंह चुबा और पत्नी और बेटा पतो बेटी दामाद और सब चुबा परिवार के नाम है गीत इंद्रासन से ढोलक मंगेली। और है ये गीतवा चलावत है सर वो सब संगत आलो खाते जो अभी रात के ड्राइव कर रहा था सस्ती बनवाली कैसे दोस्त अकेले अकेले गुड़किया मार डेला हो अंक ने बुलेला का हो फिर मामा बाबा सोची तू बोले गुड़की मरती से संगे ना छोड़ दे गुड्डू सर हरा सास्त्री बनवाली अक्सर हमने के साथ देते रहना भी रात के खूब गबड़ कर रहता था ड्राइवर लेके जाते हुआ कहूँ या ड्राइवर लेके आवत हुआ धीरे धीरे बनवा चलाइया हो और एक गीतवा सुना ना इंद्रासन में का हुआ था

0: माँ।
1: माँ एक ऐसा शब्द जिसमें प्यार,
0: अपनापन और पूरा संसार बसता है।
2: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।
1: माँ की मुस्कान से घर में खुशियाँ खिल उठती हैं।
0: उनके आवाज से मन को सुकून मिलता है। इस मदर्स डे पर हमारी पूरी एमबीसी रेडियो टीम की ओर से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे।
1: मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

स्पेशल मदर्स डे। सगदा लोग आजकल बॉलीवुड में नई नई फिल्म आवता और बेशक मई महीना मई जून जुलाई में ये सब फिल्मन रिलीज हुई तो एगो फिल्म के नाम है किंग और कर में रही शाहरुख खान और है ये साल 2026 की एगो बड़ा फिल्म रही। दूसरा मूवी है अल्फा, एक में नजर आए आलिया भट्ट और शर्वरी अभिनीत। फिर बैटल ऑफ गलवान एक दूसरी फिल्म रही, कल में सलमान खान नजर आई और भूत बंगला था रिलीज हो गलबा, कल में अक्षय कुमार बार और प्रिया दर्शन की फिल्म है कॉमेडी से भरपूर। और एक फिल्म का नाम रही बंदर, कल में रही बॉलीवुड बॉबी माफ करिए अगला फिल्म है बंदर, कल में बॉबी देओल नजर आई जा। और मैं वापस आऊँगा इस फिल्म में नजर आई दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह। जी हाँ, कमाल की बात है, नसीरुद्दीन शाह अपन कम बैक करा था, ये फिल्म में वापस आऊँगा। और एक फिल्म रही गबरू, एकर में सनी देओल नजर आई है। और अभी हाल में एक फिल्म रिलीज हो बा मॉरिशस में, आजकल ये जो फिल्म है चला था सिनेमा घर में, का नाम है पत्नी पत्नी और वो दो। ये को बॉलीवुड मूवी है और ये फिल्म रिलीज हो गल बा। ये फिल्म में देखबा आयुष्मान खुराना के और फिल्म एगो कॉमेडी रोमांस कहानी है और एकर में ओकर पत्नी बा और वो यानी कि दुगो महिला बा ओकर साथ। और एकर बीच ढेर मना गलतफहमी प्यार और कॉमेडी की कहानी है। मुख्य कलाकार बाई फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गाबी, राकुल प्रीत सिंह और बेशक जो 2019 के फिल्म रहा पति पत्नी और वो, ये कर सीक्वल है। तो हाई फिल्म कहाँ कितना सक्सेसफुल रही था आने वाला दिन में बतावल जाए, पर अभी का दिन फिल्म खूब चलता है और कॉमेडी रोमांस से भरल भाई फिल्म पति पत्नी और उसके दो। अभी चलो अगला गीत सुनब जलसा लालबा, अभी जलसा तो सुरूर बा भैया, अभी जलसा रात के 11 बजे चलते रही। और श्यामा रघुनंदन हम की साथ हुआ था, हेलो जी नमस्ते, आएगी तो खातिर तो सब परिवार लोग खातिर है गीत

मॉडल की वंदिनी के नाम और घरोला और सब परिवार के नाम चलावत ऐसा और नतराज रामकोरन रहे नोबेल फ्रांस गीत और खातिर तोर माता जी तोर पिता जी तोर भाई बहन और सब रामकोरन परिवार खातिर जलसा लालबा और ही गीत चाहते सब संगत आलोक खातिर जो हमने की सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चल एक साथ हम यू जलसा करें।

ए बाबा के हाला करता इसे ओ देख बोलता लेलू हाला करता पीछे सुनी ना सोता के हाला करता इसे डर की बात नहीं बा कहे कि मॉरिशस में लेलू नहीं बा वुल्फ वुल्फ नहीं बा मॉरिशस में तो काहे डर तो सर अब देखो बोला रात के भूत लोग रहे ना हो भूत प्रेत कुछ नहीं बा काहे सब बात सोचेला वासी नहीं बात तो लोग संगे हैं कान बोलन से रात के जब अंधार रहेला तब भूत चलेला छूटे आजकल भूत से नहीं आजकल जिंदा इंसान से चला डर के भूत बेचारा मर गल तो भूत हो गल पर जिंदा इंसान है बहुत हानि पहुंचावेला आज छोटा छोटा बात में इंसान गुस्सा करके कोई के सकेला ठप्पर मार दे या कोई के खून कर दे तो जिंदा इंसान से डरिए भूत से नहीं वो भूत प्रेत कुछ नहीं है तू पन भगवान के नाम लिया और भूत प्रेत अगर लगभग भी करी तो हनुमान चालीसा करिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे और ऐसे ही हमने के संगे घमट करते रहिए हमने के साथ देते रहिए रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर अभी रात की 11 बजे तेरे के साथ देव जा और आजकल दिखा दे ढेर कोई के लाभ के लगता है सर्दी खांसी जुकाम घर में एक जना के अगर लाफिए लगता तो पहले पति के लगता फिर पत्नी के फिर लड़का लोग कहते हैं लाफिए और सर्दी खांसी जुकाम से बचे खातिर थोड़ा देव में जुकाम दे गाँव में है कुछ बोले मैं जुकाम गाँव में तो लाठी जान जैसे हरदी में जैसे हरदी के पीस के दूध में सकबा मिला के रात के सूते वक़्त पी ले बट सर्दी खांसी जुकाम दूर हो जाए या जीते पिया में थोड़ा सुन लीमों डाल दिया या सीथों या व्यागामोद आगे तक व्यागामोद दे रहा थोड़ा सुन पैसे करके और जीते पिया में गरम गरम डाल के पी लिया वो में थोड़ा सन जिमियल डाल दिया अच्छा रहा और आजकल दिखा दे बाजुआ में हर प्रकार के फल बा जैसे वाइटामिन सी वाला मौदागिन माफ करिए मोदागिन पोम जोरस कीवी पॉम्पलेमूस और जो बंगासा जो कि बंगासा बोला सो थोड़ा तीखा रहेगा तो हो सकबर ले वाइटामिन से भरल मोदागिन बंगासा पोम जोरस कीवी पॉम्पलेमूस खाइए रोज के गो जोरस खेब तो थोड़ा सौते अच्छा रही और जैसे बीमार पड़ला भैया तुरंत हो गया डॉक्टर लगे नहीं कि घर में रह ना अपन से हम कासे किन की पिए अपना कहे के है जो लाफिए लगता एक जना के तो सब कुछ लग जाता ठीक बा अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और अगला गीत सुना भोजपुरी गमत रोशन सदा सिंह की आवाज में अरे गीत आ रहा हौ साल 2025 के बढ़िया भोजपुरी गीत में क्लासे हो रहा ताई गीत हम चलावते इसे अनुपम खातिर अनुपम हवन कोतवाल से और बेस्ट फ्रेंड राजेश के नाम और है गीत संजय के ओर से और बेस्ट फ्रेंड साइलेंट के नाम चलिए संजय और साइलेंट जो बहुत बड़ी से संगतियाँ हों सर आज भी और लोग की दोस्ती बराबर बात है दोस्ती हमेशा कायम रही और हमने की और तो लोग की दोस्ती भी हमेशा कायम रही क्या है कि हमने जब से एमबीसी रहा फोकस साइड में देमिल कात से लेके आज ले देमिल

कात्सी रिमिल बेंसी चलाने से हमने की तरह के दोस्ती रहल फोकस साइड में एमबीसी फोकस साइड रहल तब और जब एमबीसी मौका मिली से यौं पर भी तलों के संगे गमन कर दी तो जितना कोई हमेशा एमबीसी रेडियो सिनेमा रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस से गीत तलों के नाम भोजपुरी गमत भोजपुरी

0: चोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: Center 95 North South.

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: इस समय तो सुनते हो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर कार्यक्रम भोजपुरी तड़का। रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज़ पर और रेडियो मनोरंजन 94.95 और 98.2 MHz पर। हम है दोनों के संगत आओ जी प्रताप सिंह से तालू हंगे तो निर्णय लगता हम तो गमट करते चलो के संगे संगे तू भी गमट करती रहिए और सब चिंता के दूर करके सब चिंता के भगा दे। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता चिता के समान है भैया। चिंता नहीं करिए कोनो बात के, अरे आराम से जिंदगी लीजिए। अब सबको बता भैया प्रताप सिंह ऐजन महंगाई के जमाना का कर भैया, दुनिया भर में महंगाई बा। जोन युद्ध होता है नौकरियों में और दूसर पे ही में इसे युद्ध होता तो खातिर सब चीज़ महंगा बा, इन्फ्लेशन भी बा, तो महंगाई तो बढ़ते रहेला का कर भैया। तो अब महंगाई बा तो खेब नहीं है बोले तो चल चेहरा खाई कि ना खेब पीब तब ना तंदुरुस्त सब काम करे। तो अगर एगो काम से तोरा उतना पैसा नहीं मिलता तो एक दो काम करिए, एगो पार्ट टाइम जॉब खोज दिया कहूँ पर या ओवर टाइम ही सब करिए ताकि ज़्यादा पैसा मिली। अब चंद्रदेव जी बोलते मतलब पैसा के नहीं पीछे भागे की का हो कैसे बोला तो सब कुछ तो पैसा खुश है पैसा बात सब कुछ भैया। आजकल पैसा के जोर पर दुनिया गोल गोल घूमता, मनी मेक्स वर्ल्ड गो राउंड। अंग्रेजी व्यक्ति वो कुछ नहीं ऐसे बोलक बा कि पैसा दुनिया के गोल गोल घुमावेला। पैसा बात सब कुछ बा भैया, पैसा नहीं बात कुछ नहीं बा, पैसा बात सब कुछ तो आगे पीछे घूमी। जौन दिन तोर पैसा फिनी हो तो सब कुछ तोरा भुला जाए। और जब पैसा नहीं रहे तो बोलते हेलो हाउ आर यू, जब पैसा रहे तो बोलते हेलो हाउ आर यू वेलकम। तो पैसा कमाते रहिए, मेहनत लगन से काम करिए, पैसा कमाइए। और हम तो बोला अगर पैसा कमाओ तो थोड़ा मन करता कौन चीज़ खाए के, कौन चीज़ पहने के, कौन चीज़ पिए के, कहूँ जाए के घूमे के, तो जी भर के जी अपन जिंदगी। हाई पैसा जो है हाथ के मेल भैया, आज बा काल ने नहीं सोचा कि सासौता हो जाए या संजीजा हो जाए तो हम पैसा से ई करब पैसा से ऊ करब के जाना था कितना दिन जी। तो जितना दिन जी अब सर पैसा अगर हाथ में बा तो गमत कर नाच गाव झूम और कमरवा डुलाव। ऐसन में है अगला गीत चली चंद्रदेव जी बोधन की आवाज़ में। हाई गीत चलावत इस विनती के नाम विनती रहे नफरी कोपलाक विनती है गीत तोहर खातिर तोहर माता जी तोहर भाई खातिर कमला दिनू मोहताबा सेवन बहुत प्यार के साथ। और रिहाना हासनानी हवन फेनिक्स से है गीत तोहर नाम तोहर भाई तोहर सब परिवार के नाम। और रिहाना हवन नतोदाम से भी हमी के साथ देवत हवन और जितना कोई अभी हमी के साथ देवत है और मन करता नाचे के कमरवा डोलाए के तो चल एक साथ नाचे पैसा के पीछे न भाग हो। अब पैसा के पीछे कैसे नहीं भागब सर, उधर भागता इधर भागता और पैसा गोल गोल घूमता। ए हे

बाप भाई पैसा खातिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाला ना। हाँ कब कब पोस्ट में ग्रुप जानी रहेला, कब कब पोस्ट में भरल पैसा रहेला। तो पैसा जो है बहुत जरूरी चीज है। लड़का से बड़ा आदमी लोग सब कोई कुछ कोई नहीं के खुशी रहेला मिलियनेयर बने की करोड़पति बने की। बोले था तोर में से कितना कोई बा साहब कोई खुशी रहेला मिलियनेयर बने के काज निकाहे से करेलन सर। पैसा चाहेला तो पैसा रही तो वालीशान घर बनेबा, बंगला गाड़ी विला रही तोहर, नौकर चाकर रही सब कोई तोहर आगे पीछे घूमी, सब कोई पैसा खुशी रहेला। और अब थोड़ा बताओ अब जो हमने की है जो करेला है जो कि मौगूज बैला से एक कितना लाभताज बा, कितना एक लाभ बा खाई के। तो करेला जो है एगो तीखा सब्जी है पर आयुर्वेद में एक प्रयोग होला। और करेला खाए खेब तोहर शुगर कंट्रोल में रही, यानी कि तोहर डायबिटीज तोहर कंट्रोल में रही और पाचन शक्ति मजबूत करेला, थोड़ा डाइजेशन सिस्टम के हेल्प करेला, वजन कम करेला। करेला खेब तो थोड़ा पतला हो जाइबा, शरीर के डिटॉक्स करेला। करेला त्वचा खातिर अच्छा है, लापो खातिर अच्छा सुंदर लापो होला और इम्यून सिस्टम की बढ़ावेला। एक में विटामिन सी भी बा और

जो शरीर के हर रोग से बचाव इला। ढेर सारा लाभ बा करेला खैला से, जैसे तोरा बोली कि करेला जो है तोहर ब्लड में जो शुगर है वो तोहर डायबिटीज के कंट्रोल में रखेला, तोहर डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प करेला। पर एक बात याद रखे, ढेर करेला खेबर तब पेट में सकेला दर्द या कमजोरी हो तब करेला चला जीस खाई के। अब करेला ढेर प्रकार से पकेला, करेला की सूखी सब्जी, करेला भुंजल जाला, करेला भुंजल जाला, करेला तारल जाला, करेला के सरसों में पकाएला सा, करेला के भुजिया हयू बनेला, करेले का जूस, करेला के जी यू बनेला। ये तीखा रहेला पर पीबर तो डायबिटीज का तीर अच्छा। करेला के आचार जासौ मोगोज, लड़का लोग नहीं खाला, ढेर बड़ा आदमी लोग नहीं खाला, पर थोड़ा सन खाई जासौ मोगोज अच्छा है। और करेला के करी बनेला, ग्रेवी सब्जी, करेला के चिप्स, भारत में जेब तो करेला के पतला पतला कैसे मी आलू के चिप्स बनाएला सर, तो वहाँ करेला के चिप्स बनेला एकदम खोखों रहेला। हमारे तो मुँह में पानी भर, हम जाएला थोड़ा सुन करेला वाला खा के आए, खा के मन बा करेला के चिप्स बनाए की, तो हम जाएला थोड़ा सुन MBC के इलाकों चिनुआ में जाएला थोड़ा सुन करेला के चिप्स बना के खाएला। तब रिधु सुन मार ताली मार, ताली मार हमार संगे, मार ताली मार, ताली मार हमार संगे। कुणाल हिरीलाल गीता गैले वन है गीत स्वीटी और स्वीनी खातिर। और जितना हमार स्टूडेंट्स लोग बा जितना कॉलेज में आके पढ़े आए, सुखदेव सिंह LSSS, फॉरेस्ट साइड बॉयज SSS, इमानुएल लॉन्गचिल SSS, बुट्टू कुमार संगी SSS, जितना हमारे जिले लोग आज बड़ा आदमी बन लग बा, हमने के हाथ में पढ़ के बड़ा आदमी लोग तो बड़ा आदमी बना लो वैसा गीत तो लोग के नाम मार ताली मार, ताली मार हमार संग, मार ताली मार, ताली मार हमार संग। खासम खास गीत आशा बेनी खातिर जो काम करे रहे इमानुएल लॉन्गचिल SSS कॉलेज में। आशा बैनी मार ताली मार, ताली मार हमारे संगी।

मार ताली मार, ताली मार, ताली मार हमर संगे, मार ताली मार, बाली मार, ताली मार हमर संगे, मार ताली मार, ताली मार, ताली मार हमर संगे, मार ताली मार, ताली मार, ताली मार हमर संगे, ताली मारा हो कमर पर डोलावा, नाचा गावा, रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन के साथ एमबीसी रेडियो तलो के नंबर वन रेडियो स्टेशन प्यार मिलते हैं यहाँ पर बाहर खेलते हैं यहाँ पर सबको नचाएंगे सबको लुभाएंगे ताली मार

सभी दोस्त बनते हैं यहाँ पर, दोस्त के साथ नाचते हैं, खाते हैं पीते हैं, एहे मार ताली मार।

मार ताली मार ताली मार हमार संगी, और थपड़ी बजाए के एगो एक्सरसाइज है। थपड़ी जब बजेबा तब तोर हाथ के जितना लावेन बा जितना मसल बा सब लागे रहेला। हाँ, और बेशक और 15 मिनट में प्रोग्राम समाप्त हो जाए, पर अभी अभी तो है तो लोग के संगे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और यहाँ मुका में भी बड़ी ठंडा कर रहता है, बुझा था 16 डिग्री या 14 डिग्री कर रहता है, इतना ठंडा करता तो कर ठंडा के मौसम बना तो का कर बौसा मोहताई बनी तो उड़िया जाती सर। पीटर बोफ माउंटेन या सर मुका माउंटेन रेंज EBS कर ले हुआ ना। अब सर हम बात करब सर एगो वफादार जानवर के बारे में। तो ये दुनिया के सबसे वफादार जानवर एक नाम है कुत्ता। कुत्ता इंसान से गहरा जुड़ाव रखेला और हजारों साल से इंसान के साथ देते आल और आज भी साथ देवेला, और वो परिवार के एगो सदस्य देखाओ के मानीला सर। तो ओकर में सुरक्षा करने की प्रवृत्ति बा। कुत्तापन मालिक के पन कुत्तापन मालिक और घर की रक्षा करेला। खतरा जब महसूस करेला तो भौंक के चेतावनी देवेला कि कोई आवा था। और कुत्ता इंसान के खुशी गुस्सा और दुख समझेला। ऊपर मालिक के जब ओकर मालिक उदास होला तो कुत्ता ओकर भीड़ी पास बैठ के ओके ताकेला। और कुत्ता जो है आसानी से परीक्षित हो सकेला। पुलिस सेना और बचाव कार्यों में भी कुत्ता के प्रयोग होला। और ढेर मना कुत्ता बा जैसे कि लाब्राडोर रिट्रीवर जर्मन शेफर्ड लाब्राडोर रिट्रीवर हस्की पोमेरियन और इंडियन पारिया। और कुत्ता वफादारी के उदाहरण है और ऊपर मालिक खातिर उसकी अपन जान दे दे, इतना वफादार है कुत्ता। और कुत्ता सिर्फ एगो पालतू जानवर नहीं है बल्कि एगो सच्चा साथी और वफादार मित्र भी है जो अपन इंसान के साथ देवेला अंत समय तक। तो कुत्ता के एगो रोटी देबा वो जिंदगी भर थोड़ा याद करी, इंसान के एगो रोटी देबा वो थोड़ा दो दिन में भुला दे। तो कौन जस्ती वफादार बा, इंसान या कुत्ता? जरा चिंतन मनन करिए, सोचर हमने के बताइया। अगला गीत जिले जिले जिले प्यार से जिले खुशी से जिले में डोहू की आवाज़ में आएगी। चलावते ही सर जितना कोई अपन कुत्ता के अपन जानवर के प्यार करे ना। कुत्ता जो है जीवन भर अपन मालिक से प्यार कर रहा है। कुत्ता के जीवन थे नहीं है वो सैंक अजीजों 5 या 10 साल जिए रहा, पर जब तक वो जिएला अपन मालिक से अपन जान से भी ज़्यादा प्यार करेला, इतना वफादार है ये हमने की प्यारा सन कुत्ता जानवर।

संगतिया लोग बोल रहा कि जो मनुष्य शरीर है एगो मशीन नहीं है एगो होबो नहीं है तो दिन के काम करेरा पर एक चेहरा थोड़ा सुन आराम भी और आराम करे के हमने के हिंदू धर्म ग्रंथ में बोल दिला निद्रा देवी। तो निद्रा देवी के है भारतीय परंपरा और आध्यात्मिक मान्यता ई है कि नींद की देवी है

निद्रा देवी तो जे कोई के नींद नहीं लगेला वो लोग के चेहरा निद्रा देवी की पूजा करे के यूट्यूब पर जेब तो ढेर मारा मंत्र बा हे मंत्र बा बोल बा तो तोहरा नींद चलाई। तो निद्रा के अर्थ है नींद और विश्राम या चेतना या शांत करे के और देवी के अर्थ है शक्ति या दिव्य ऊर्जा। इस प्रकार से ये दिव्य शक्ति जो है इस सब को के आराम पहुँचावेला वो चाहे इंसान हो वो चाहे जानवर हो जंतु हो या प्लांट हो। तो रात के प्लांट वो लोग सुते रहे जैसे हमने सुची रहा सर। और हिंदू ग्रंथ में नींद के केवल नींद जो है हमने के शरीर के थकान के दूर करेगा दिन भर पाची के बाद रात के आराम करबा तो अच्छा से थोड़ा नींद लगी। तो एगो कथा जुड़ल बा भगवान विष्णु जब योग निद्रा में रहल तब संसार संतुलन बनल रहल। तो ये अवस्था के योग निद्रा बोलल जला और ये भी मानल जला कि दुर्गा जो शक्ति के रूप है वो भी हमने के विश्राम पहुँचावेला दुर्गा माँ। और योग और आध्यात्मिक दृष्टि से देख बोलल जला नींद शरीर और मन के पुनर्जीवित करेला ई चेतना के संतुलित करेला और गहरी नींद जो है हमने के सुषुप्ति अवस्था में ले जाला। निद्रा देवी के संतुलन निद्रा देवी हमने के शरीर के संतुलन में आने ला। निद्रा देवी का प्रतीक ई है कि जीवन नींद जीवन के लिए आवश्यक है। बिना विश्राम के शरीर कमजोर हो जाला। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद जरूरी है। ये खातिर निद्रा देवी के पूजा चाहला करे के तो यूट्यूब पर जाइए और देखिए कितना मंत्र बा आइए निद्रा देवी के पूजा कर बधेर कोई की प्रॉब्लम हो रहा रात की नींद नहीं लगेगा कोई डिप्रेशन में रहेगा स्ट्रेस में रहेगा तो खातिर लोग के नींद नहीं लगेगा। तो जाइए यूट्यूब पर टापी करिए मंत्रास टू चांट टू गेट स्लीप बाय निद्रा देवी टू ऑब्टेन निद्रा देवीज ब्लेसिंग्स। तो दिख यूट्यूब में कितना माना मंत्र बा ढेर माना मंत्र बा है और निद्रा देवी जो है कर मंत्र ढेर माना बा यूट्यूब पर सब जाके देखे। तो ये मंत्र बा जब बोल बा तो दिख बा थोड़ा आराम से नींद आए। ओम शांति शांति शांति ये मंत्र है और ओम नमो नारायण हयु मंत्र सब या ओम हिंग शांति हिंग नमः। तो हय मंत्र वा 20 बार बोल बा रात के तो थोड़ा अच्छा नींद आई। हमेशा याद रखिए ओम शांति शांति शांति या फिर हय मंत्र बोलिए ओम हिम शांति हिम नमः। और जब हय मंत्र वा बोल बा तो तू देख बा धीरे धीरे थोड़ा पल और जिन पलके हैं वो धीरे धीरे बंद हो ले जाए और थोड़ा अच्छा नींद लगी। अगर अच्छा नींद लगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा।

संगत्या लोग हई गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम ये पलिस समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से हबीदेव के साथ दिलाजा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 11 बजे सुन बजा अगला प्रोग्राम सुनने पर और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे ले सुन बजा नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तलों की मुलाकात हो अब बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में। एक बार फिर सब माँ लोग के हैप्पी मदर्स डे, सब पापा लोग के हैप्पी फादर्स डे। हमने की तलों की मुलाकात यानी रहा मन तक रहता है इसे ही तलों खातिर गीत बजाते रह के पर चहला प्रोग्राम समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमने की आवाज़ के अपन घर में स्वागत कर ला, हमने की प्रोग्राम सुन ला, हमने की गीत सुन ला, बहुत धन्यवाद। और एक मुलाकात तक हमने की इजाजत दा। अजय प्रताप सिंह सीतालू की ओर से सब कोई के प्यार भरा नमस्ते और सलाम।

0: 819 kilohertz. This is Radio Marches.
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ
2: निशा फिर से आ गई है आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, पुराने गीतों का जादू ही कुछ और होता है, एक पल में दिल को सालों पुरानी यादों तक ले जाता है। स्वागत है आप सभी लोगों का इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम।

हर रात को एक खूबसूरत गाना चाहिए और वो गाना है पुराने बॉलीवुड के एवरग्रीन गाने, तो स्टे ट्यून टू सुनहरे पर एंड लेट द मेमोरीज सिंग अलोंग। बिल्कुल जी, हम तो चाहते हैं कि आपका दिल भी गाए हमारे साथ। बिल्कुल जी, इन योर सुनहरे पल ऐसे ऐसे गीतों को हम चुन चुन कर लेकर आते हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि हम आपका दिल खुश कर सकें और आपकी यादों को भी दोबारा से ताज़ा कर सकें।

म्यूजिक लवर्स के लिए रात का सबसे प्यारा साथी होता है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, जहां हर गीत में है प्यार, हर गीत में है सुकून और हर गीत में है आपकी यादों की मिठास। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए आप और अगला नगमा को आप दिल से महसूस कीजिए।

वक्त जो है बदल जाता है, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में बस जाते हैं। आइए उन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ बिताते हैं एक यादों भरी रात, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर आपके सुनहरे पल में। मैं हूँ गिनिशा जो आपका साथ निभा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हर एक गाने को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो चलिए ये अगला नगमा सारे म्यूजिक लवर्स के लिए।

हर रात कुछ यादें लेकर आती हैं और हर याद का अपना एक गीत होता है। इसी एहसास के साथ सुनहरे पर ऑन रेडियो मॉरिशस पर हमने

लेकर आए हैं गिने चुने नगमे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जहां बजेंगे बॉलीवुड के पुराने गाने, वो एवरग्रीन गाने जो दिल को आज भी उतनी ही मोहब्बत से छू जाते हैं। तो चलिए जी, ये अगला गाना खासकर हमारे सारे म्यूजिक लवर्स के नाम, जो बड़े शिद्दत से गिनिशा का साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

वेल मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, रात जो है धीरे धीरे और हसीन हो रही है और साथ में बज रहे हैं पुराने बॉलीवुड के दिल छू लेने वाले नगमे। यही है आपका सुनहरे पल का मैजिक, म्यूजिकल मैजिक बोलते हैं इसको। तो चलिए जी, टू ऑल दोस्त हु आर वर्किंग राइट नाउ, कुराज टू यू। अगर आप घर पे हो, आराम फरमा रहे हो, पूरा दिन काम करके आप थक गए हो, तो चलिए आपकी इस थकान को हम दूर भगाएंगे इस नगमे के साथ। ये रहा आपके नाम।

सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। ये है एक ऐसा सफर जो बस चलता ही जाता है और हम आपके दिल को बस सुकून और राहत देकर ही जाते हैं। इस एक घंटे की सफर में उम्मीद करते हैं कि हमने आपके कोई सा भी एक मनपसंद गाने को चलाया है और वो आपके नाम हमने ज़रूर डेडिकेट किया होगा, क्योंकि जितने भी गानों को हम लेकर आते हैं बड़े खास टाइम लगाकर चुन चुन कर लेकर आते हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स। दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो आप बड़े प्यार से शिद्दत से हमारा साथ दे रहे हो।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू। उम्मीद करते हैं कि आपने सुनहरे पल के इस खूबसूरत से शो को दिल से एंजॉय किया है। अभी के लिए इजाजत चाहेंगे आपसे, मिलेंगे फिर से एक बार एक और सुनहरे पल में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहाँ तक कि।
2: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
1: डरता हूँ कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और तुम्हारा चोट खाने की हिम्मत।
2: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

You're listening RM Free Radio.